मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप

0: वो दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्य दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिया।

0: जुलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशी को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

हमारा मन कभी भी अंदर से शांति नहीं पा सकता है जब तक हमारा मन बाहरी दुनिया में कभी भी शांति नहीं पा सकता है जब तक हमारा मन अंदर से शांत ना हो। और हमारा मन अंदर से तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान प्रभु की आराधना में लगाते हैं।

0: अभी आप अनूप जलोटा, पंडित राजन साजन मिश्र, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित राजन और साजन मिश्र के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। माफ करिएगा, पंडित जसराज के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं काव्य का चरम लक्ष्य महादेवी वर्मा के विचार।
3: हमारा देश विशाल है, समुद्र से लेकर के हिमालय तक आप देखिए, सारी विविधता आपको मिल जाएगी। सब ओर से समुद्रों से घेरे है, पर अपनी मर्यादा रखता है, उसे डुबाता नहीं, बहाता नहीं। दूसरी ओर उसके मस्तक की तरह हिमालय उठा हुआ है, आकाश को छूता है परंतु धरती को संभाले हुए। इतने विशाल देश में जहां इतनी हरितिमा है, इतने इतने फूल हैं, इतने फल हैं, इतनी उर्वरता है, इतना सौंदर्य है, उस धरती से हमने जन्म पाया है, वो हमारी धरती है। इस धरती को एक रखना, अखंड रखना भी साहित्य का कार्य है, काव्य का कार्य है। अनंत युगों से कवि ने ये कर्तव्य संभाला है। इतने विशाल देश में यदि सांस्कृतिक एकता है, यदि पूरे देश में संस्कृति की दृष्टि से, सौंदर्य बोध की दृष्टि से, कर्तव्य की दर्शन की दृष्टि से एक ही उद्वेलन है, एक ही स्पंदन है, तो आपको समझना चाहिए कि कितने अधिक कवियों ने अपने स्वप्न समर्पित किए होंगे, अपने हृदय का स्पंदन मिलाया होगा, कितना प्रयत्न किया होगा कि विशाल देश को एक रखा। आज हमारे सामने विज्ञान की कठिन चुनौती है, जिसने प्रत्येक देश को दूसरे के निकट कर दिया है। जहां हम अनेक वर्षों में पहुंचते थे, वहां हम कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। पूरा विश्व निकटता की दृष्टि से एक परिवार है और दूरी की दृष्टि से सर्वथा अपरिचित। विज्ञान हमें शक्ति देता है, विज्ञान हमें चंद्रमा तक पहुंचा देता है, परंतु विज्ञान ने उस हंसने रोने वाले मनुष्य को कुछ और नहीं दिया है। धीरे धीरे उसका हंसना रोना दोनों समाप्त कर दिया। हंसना उसका क्रूर हो गया है, आंसू उसके सूख गए। हर दशा में वो तर्क करता है, हर दृष्टि से तर्क करता है, लेकिन जीवन का समाधान केवल तर्क में नहीं है, आत्मदान में है। अनेक युगों में मनुष्य आत्मदान करके ही एक दूसरे के निकट आया, स्नेह से एक दूसरे से मिला है, परंतु आज वो स्थिति बदलती जा रही है। आज के कवि के निकट ये सबसे बड़ी चुनौती है, इस सबसे बड़ी चुनौती को उसे स्वीकार करना। यदि वो स्वीकार नहीं करता तो आने वाला युग समझेगा कि उसने अपना कर्तव्य अपूर्ण छोड़ दिया, उसकी यात्रा बीच में खंडित हो गई, उसका तप बीच में भंग हो गया। कोई कवि नहीं चाहता है कि अपने युग को अधिक सुंदर न बनाए, बिना सुंदर बनाए हुए चला जाए। हम में से प्रत्येक चाहता है कि हमारा स्वप्न अनंत अनंत आंखों में देखा जाए, क्योंकि कवि के स्वप्न की सार्थकता यही है कि सब आंखें उसे देखने लगे। उसके हृदय के सत्य की यही शपथ है कि हर हृदय उसे अनुभव करने लगे, हर स्पंदन में वो बोलने लगे, मुखर हो जाए। उसकी प्रेरणा, उसका सौंदर्य बोध सबका है, अकेले उसका नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे काव्य का चरम लक्ष्य, महादेवी वर्मा के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कृषि एवं वनोत्पादन विषय पर डॉक्टर रामचंद्र से हृतेश कुमार की बातचीत।

0: किसान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने कार्यक्रम में जेकर नाम बा कृषि जगत। और भैया देखा, कृषि जगत का यही एक परंपरा चली आवत बा कि भाई तमाम तरह के जोन कृषि वैज्ञानिक भैया और कृषि विशेषज्ञ भैया रहते हैं क्षेत्र के, उनके बुलावा जाता अपने स्टूडियो में और उनसे जानकारी साझा की जाता। तो भैया आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रामचंद्र जी, जे कि कृषि अर्थशास्त्र विभाग शुवाट्स प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। और आज हम सभी इनसे जानब कृषि एवं वन उत्पादन के बारे में, साथ ही साथ यह जाना जाए कि भाई कैसे अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकत है वन उत्पादन के जरिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत बा आपका। पहले डॉक्टर साहब हम यही जानना चाहब कि कृषि वानिकी होत का है।
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कृषि वानिकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि मतलब खेती और वन दोनों मिला करके जो क्रिया की जाती है वो कृषि वानिकी कहलाती है।
0: जी,
1: और कृषि वानिकी हमें इसलिए ज़रूरी हो गया है, हमारे जो मौसम का बदलाव है वो हर 1.5 साल में देखिए आपका तापमान बढ़ता जा रहा है, और हर 2 से 3 साल में हमारे यहाँ या तो बाढ़ आ जा रही है या तो हर वर्ष 5वें वर्ष हमारे यहाँ सूखा हो जा रहा है। तो ये जो मौसम का बदलाव हो रहा है, इस व्यवस्था में हमारे किसान भाई बहुत ही घाटे का सौदा करते हैं। कहते हैं किसानी में या खेती में लागत नहीं निकल रही है, हम लोग बिल्कुल अपना जो लागत है वो भी डूब जा रहा है। इस संभावना को देखते हुए ये कृषि वानिकी पद्धति को शुरू किया।
0: तो भैया कुछ अगर आप जानकारी देवा चाहें कि का लाभ ले सकते हैं किसान भाई कृषि वानिकी से।
1: कृषि वानिकी जो पद्धति है इसमें आपको पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, हम हर योजनाओं को विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे स्वभाव भाव कारण, लेकिन हम ये बताना चाह देंगे कि मुख्य मुख्य क्या आप कर सकते हैं। जैसे सरकार की एक योजना है हर मेड़ पे पेड़, और उस योजना के तहत किसानों को पेड़ लगाने की लागत का पूरा पूरा पैसा सरकार देती है। और इस योजना के अंतर्गत आपको अच्छे से वृक्ष जो आप समझते हैं कि हमारी बलुई दोमट है या मटियार है, नदी के किनारे ऐसे जमीन है या ऊसर पापड़ जैसी जमीन है, तो ऐसी व्यवस्था में हर तरह के आपको पेड़ों का चुनाव करना है। जैसे आप देखिए, हम इमारती लकड़ी से लेकर के और जलाऊ लकड़ी तक का जो है हम कृषि वानिकी पद्धति में उपयोग करते हैं। तो हमारे जो ये योजनाएं हैं इसमें हम चाहते हैं या गवर्नमेंट चाहती है कि पर्यावरण भी संरक्षित रहे, और आपका जो घाटे का सौदा कहते हैं उसमें अगर विषम परिस्थितियां कभी आ जाएं, जैसे हमारे जो भौतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो हमारे जो ये पेड़ हैं उससे हमारा एक तरह से समझिए हम आज फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और वो फिक्स डिपॉजिट हमको जो है 8 साल से लेकर के और 15 साल में उसका 4 गुना रिटर्न देता है।
0: अरे वाह।
1: और इसमें जो आप पेड़ों का चुनाव कर रहे हैं उसके बीच में ये पद्धतियाँ कृषि पद्धति

0: हैं जिसमें आप खेती कर सकते हैं, जिसमें आप मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, मतलब औषधि पौधे लगा सकते हैं, जिसमें आप जो है फूलों का खेती कर सकते हैं, इसमें आप जो है हर तरह का फलदार भी वृक्ष ले सकते हैं, फूलों का ले सकते हैं, इसमें आप चारे की फसल ले सकते हैं। इस तरह से जो पद्धतियां हैं उसको आप अच्छा से कर सकते हैं और इसमें आपके फसल पे कोई भी घाटा नहीं होगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जोन सवाल हम पूछे चाहब आपसे कि जोन किसान भाई बागवानी करते हैं साथ ही साथ किसी खेती किसानी के साथ साथ, ओमन और कृषि वानिकी में का अंतर बाटे?
0: देखिए, अब आपने बहुत अच्छा कहा है कि बागवानी और कृषि वानिकी। देखिए, बागवानी जो है इसमें जितने फूलों के पौधे हैं, जो जो फूल हैं, जो मान जे जिसमें फूल भी होते हैं और इसमें इंडोर प्लांट होते हैं जो हम घर के अंदर भी रखते हैं, वो भी बागवानी में आता है। और उसमें दोनों तरीके पौधे होते हैं, इसमें कहते हैं फ्लावर और फोलियज।
1: अच्छा।
0: एक तरह का। और जहाँ तक रही हमारी कृषि वानिकी पद्धति, तो इस पद्धति में हम लाइन से लाइन खेतों में पेड़ के हिसाब से कि पेड़ कौन सी हम चुनाव कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बता रहे हैं कि हमें अगर सागवान का वृक्ष लगाना है तो सागवान की वृक्ष की जो पेड़ से पेड़ की दूरी है वो 15 फीट पे हमें लगाना है और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 10 फीट पे रखना है। तो ऐसे में जो है हमें जो है 1 हेक्टेयर में कम से कम 200 से 250 जो है पेड़ लग जाएंगे। और उसको एक तरह से, जैसे पहले हमने कहा कि ये आपका फिक्स डिपॉजिट है, जैसे आप बैंक में अपना पैसा ले जाके जमा कर देते हैं, इंतजार करते हैं कि 8 साल बाद 10 साल बाद हमारा दुगुना हो जाएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उस तरह से ये आपका फिक्स डिपॉजिट है। और ये फिक्स डिपॉजिट आपको 15 साल में, मैक्सिमम 15 साल है, 15 साल में आपको 10 गुना ये आपका पैसा वापस कर देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप एक शब्द कहें कि भाई फिक्स डिपॉजिट होता है, तो भैया देखा डॉक्टर साहब कि भाई 15 साल का समय जोन होता है, वो लंबा समय होता है। तो एक हम आपसे पूछा चाहब कि भाई भाई इतना समय अगर किसान भाई अरे अपन देते हैं तो भाई का का सावधानी रखी जाए, का का वानिकी में ऐसी कौन कौन सी तरीका अपनावा जाए, कौन कौन पद्धति अपनाई जाए कि भाई हमें जोन पेड़ हम लगाए हैं ओकर नुकसान ना हो।
0: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, जब तक हम सोचते हैं कि हमारे पेड़ जब तक बड़े हो रहे हैं तब तक हम उसमें क्या सावधानी रखना है, जैसे एक जो पेड़ की शाखाएं हैं,
1: जी जी,
0: जैसे सागवान को हम ले लेते हैं, सागवान की पेड़ की छटाई हर समय हर साल करना चाहिए और उसको छटाई करके आपका पेड़ सीधा जाना चाहिए, उसमें शाखाएँ नहीं निकलना चाहिए।
1: जी जी।
0: दूसरी बात, जो गर्मी का समय होता है उसमें 1 से 2 साल तक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो नया नवेला पौधा होता है वो मरने का उसकी आशंका बनी रहती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: अच्छा दूसरी बात यह है कि जो हम सागवान के पौधे लगाए हुए हैं उसमें जो आप कृषि खेती मतलब करते हैं, उस खेती में जो आप न्यूट्रिएंट, जो फर्टिलाइजर देते हैं, जो खाद देते हैं, जो आप उसमें पोषक तत्व देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, वो सब अपने आप ले लेता है, आपको अलग से कोई भी आपको खाद या फर्टिलाइजर या दवाएं कुछ भी नहीं देना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आप समझिए यूं कि आम के आम गुठलियों के दाम है, आप फ्री में उस पौधा लगा के भूल जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: बाकी आप जितने भी, जैसे आप मान लीजिए एक हम और उस कृषि का उपयोग बता रहे हैं आपकी, 1 इंच भी जमीन खाली नहीं होना चाहिए।
1: जी जी,
0: जैसे आपने मान जाइए सागवान लगा दिए हैं और उसमें जो है रस्सियां बांध दीजिए, उसके सहारे से आप चढ़ने वाली सब्जियां,
1: अच्छा
0: चढ़ने वाली सब्जी जैसे करेला है, नेनुआ है, तरोई है, परवल है,
1: जी जी,
0: जितना आप चढ़ने वाली सब्जियों को उसमें चढ़ा के फल लेंगे उतना आप जो रेंग कर फड़ने वाले सब्जियों में उसमें फलत कम आएगी।
1: जी जी,
0: और
1: जी,
0: आपका वो पौधा बहुत तेज बढ़ेगा। दूसरी बात, आपकी सब्जियां हर हफ्ते निकलना शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा पैदावार होगी। लटक के फलने वाली सब्जियों में भार अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जल्द से जल्द जो है इसमें फलत आ जाती है और उसमें भार पैदा होता है जिससे वजन बढ़ जाता है।
1: जी,
0: इस वजह से आपको

0: हर जो है सब्जी में दुगना लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतनी बढ़िया जानकारी दी है ना आपकी, भाई आपका जो पेड़ बढ़त बा उसके साथ साथ आप जो सब्जी हैं ना, आपके जो मौसमी सब्जी हैं वो के आप उगाई सकते हैं। आप आए ना हमारे स्टूडियो में और कृषि और वन उत्पादन के बारे में इतना बढ़िया जानकारी दी है, निश्चित तौर पे किसान भाई ऐसे सीख ले ही और लाभ ले ही। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं वनोत्पादन विषय पर डॉक्टर रामचंद्र से हितेश कुमार शुक्ल की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता, दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीक।
1: विभिन्न क्षेत्रों की तरह दंत चिकित्सा में भी आधुनिक नवीन पद्धतियां आती रहती हैं। विज्ञान के इस क्षेत्र में कोई भी नवीन पद्धति तब तक साधारण रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती जब तक पूर्ण रूप से विभिन्न परीक्षण में पास ही नहीं बल्कि इलाज के उपरांत किसी तरह का कोई दुष्परिणाम मनुष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि दूरगामी परिणाम सफल हों। परीक्षण विभिन्न स्तर से गुजरता है, इसलिए नवीन पद्धतियाँ हों या उपकरण, मनुष्य जाति का अंततोगत्वा लाभ ही होता है। दंत चिकित्सा में सटीक और दूरगामी परिणाम प्राप्त करने हेतु नवीन उपकरण जनसाधारण के लिए उपलब्ध होते जा रहे हैं। साथ ही मुंह में प्रयोग होने वाले मटेरियल अब ज्यादा दिन तक मुंह में टिकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के। इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति और उपकरण की संक्षेप में बताना चाहूंगा। एक्सरे, अब हमें एक्सरे खींच के फिल्म सुखाने की जरूरत नहीं बल्कि आरवीजी नामक मशीन के द्वारा तुरंत ही हम दांत का एक्सरे खींच सकते हैं। इसे न केवल समय बचता है बल्कि कई एंगल से एक्सरे जल्दी जल्दी लेकर इलाज की सटीकता का अनुमान लगा सकते हैं। एक्सरे साफ और सटीक आता है। कई बार दांत उखाड़ते वक्त जड़ अगर टूट जाए तो एक्सरे के माध्यम से जड़ को निकालना आसान हो जाता है, या किसी जटिल प्रक्रिया जैसे डेंटल इम्प्लांट आदि प्रक्रिया के दौरान जल्दी जल्दी सटीक एक्सरे प्राप्त करने से समय की बचत और इलाज अच्छा होता है। एक्सरे की दुनिया में अब 3D एक्सरे भी मौजूद हैं जिससे हम बारीक से बारीक बातों को मुंह में अंदर दांत की जड़, इम्प्लांट के लिए कितनी और किस हड्डी कितनी का हड्डी उपलब्ध है, साइनस का भली भांति समस्या को जानना आदि सम्मिलित है। दांतों की बीमारी को सही तरह से समझने के लिए पल्प टेस्टर है जिसे दांत की नसों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दांतों में जो कालापन है वो कीड़े हैं या किसी बदरंग दांत, इसके लिए कैरिस डिटेक्टर उपलब्ध है। पहले दांतों में चांदी फिलिंग की जाती थी पर अब दांतों की कलर की ही फिलिंग होती है जिसे पता है ही नहीं चलता कि दांत में कोई इलाज भी हुआ है। जब दांतों में कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं तो हम दांतों में फिलिंग नहीं कर सकते। अगर दांत बचाने लायक है तो दांतों के नसों का इलाज किया जाता है। दांतों की नसों के इलाज में जो सबसे ज़्यादा जरूरी प्रक्रिया है वो ये कि पता लगाना कि दांत की जड़ कितनी लंबी है, अर्थात हमें कितने अंदर तक जाकर दांतों की सफाई करनी है, जो कि एक्सरे के माध्यम से सटीक रूप से नहीं जाना जा सकता क्योंकि साधारण रूप से RVG 2D होता है और 3D एक्सरे महंगा भी पड़ता है और सुविधाजनक भी नहीं। ऐसे में एपेक्स लोकेटर नाम की मशीन के द्वारा दांत की जड़ की लंबाई नापी जाती है जिसकी वजह से दांत की नसों का इलाज या रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सफलतापूर्वक 95% तक चला जाता है। और भी नए मटेरियल के द्वारा सीलिंग आदि की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। डेंटल माइक्रोस्कोप एक ऐसा आधुनिक उपकरण है जिसके माध्यम से दांत के अंदर की बारीक से भी बारीक जानकारी को प्राप्त किया जाता है और इलाज की सटीकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। डेंटल स्कैनर आज के समय की ऐसी आधुनिक मशीन है जो मुंह के अंदर का बारीक से बारीक एनाटॉमी का स्कैन कर लेती है। इसका उपयोग मुंह में नकली दांत लगाने के लिए नाप के लिए उपयोग किया जाता है। पहले दंत चिकित्सक को मुंह के नाप लेने के लिए ट्रे आदि के माध्यम से लेना पड़ता था। कई बार मरीज को मिचली या उल्टी होने की भी संभावना बनी रहती थी, मगर अब आसानी से एक पतला कैमरा के द्वारा पूरा मुंह स्कैन कर लिया जाता है और पहले से ज्यादा सटीक दांत का कैप आदि बनवाया जा सकता है। 3D डेंटल मिलिंग मशीन, डेंटल स्कैनर द्वारा ली गई दांत के स्कैन को डेंटल मिलिंग मशीन में भेजा जाता है जिसकी मदद से अब और सटीक और

0: कम समय में ही डेंटल कैप को प्राप्त किया जा सकता है। डेंटल इम्प्लांट जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसे में सटीक तरह से इम्प्लांट मरीज की हड्डी में जाए तो आजकल 3D एक्सरे आदि की मदद से हम प्री फैब्रिकेटेड स्प्लिन मिलता है, जिससे हम डेंटल इम्प्लांट को सही सटीक तरह से प्रत्यापित कर पाते हैं और दूरगामी परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। डेंटल लेज़र एक ऐसी आधुनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल सर्जरी, रूट किनाल आदि में किया जाता है। डेंटल लेज़र के द्वारा सर्जरी आसानी से हो पाती है, जिसमें खून कम बहता है। साथ ही अगर मुंह में अल्सर हो, किसी तरह का प्री कैंसरस लीजन हो या किसी घाव को जल्दी सुखाना हो एवं मुंह की सर्जरी में भी किया जाता है। हार्ट टिश्यू लेज़र भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा टूथ कटिंग भी लेज़र से की जा सकती है। रूट केनाल को डिसइन्फेक्ट करने के लिए भी लेज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आधुनिक समय में निरंतर नई नई मशीन और पद्धतियां सामने आती रहती हैं, जो दंत चिकित्सक और मरीज दोनों के लिए जरूरी हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीक, डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की ये वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमी फाइनल वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं रात 10:30 से, और शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और दिन में 12:15 पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे सोमनाथ बरन से भजन और गीत। सुबह 10:05 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में आश्रय द्विवेदी और राम सूरत के स्वर में लोकगीत सुनेगा, और 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे लहरी लाल जी यादव, शशिबाला जैन और अखिलेश कुमार यादव और साथी। सुबह 11 बजे सुनेगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर बोलते नगमे स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी परिचर्चा सामाजिक कुरीतियां टोना टोटका, प्रतिभागी होंगी माधुरी श्रीवास्तव, रेखा सिंह और सुशीला देवी। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। युवा श्रोता सुनेंगे युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मेरी खेती मेरी बात में ज्ञान सिंह और हिंचलाल से किसान चर्चा। शाम 7:31 पर काव्य कौमुदी कार्यक्रम में कवि होंगे अभिषेक केसरवानी और प्रीता वाजपेयी। रात 8 बजे चित्रपट संगीत। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानिता काईशी इत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाईची इति तस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

एक दिन काकभुशुंडे सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे बैठे लोमश ऋषि के पास जा पहुंचे। उनकी विनम्रता देख और दीन वचन सुनकर ऋषि ने उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण रूप काकभुशुंडे ने ऋषिवर से सगुण ब्रह्म की आराधना का ज्ञान देने की प्रार्थना की। मुनिवर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। कई उपमा उपमेयों द्वारा लोमश ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया, फिर भी निर्गुण ब्रह्म मत काकभुशुंडी के हृदय में नहीं बैठ पाया।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से

सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन, लीजिए सुनिए नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

अभी आप फिल्मों से भजन सुन रहे थे। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और

0: रामपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
2: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है, वह केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेश व्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
1: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा, विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं। तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है ललित।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग था ललित। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर

0: स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, E-पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्त

0: कर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता

में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरन कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत।

0: मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several

0: अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सानाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकिरात करेंगे। सरबरा सतह के मुजाकिरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वजीर आजम मोदी और वजीर आजम ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वजीर आजम भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वजीर आजम ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वजारत खारजा ने कहा कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इकतसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इकतसादी सलामती मुजाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इत्तलात और मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वजीर आजम के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकत दारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वजीर आजम सानाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को मजीद वसत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वजीर आजम के भारत दौरे पर उनकी मेजबानी करना उनके लिए बायस मसरत होगा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान, भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमनो इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जराए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूजर नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूजर नेम फीचर के फाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा राबता करने वाले शख्स को नजर नहीं आएगा और इख्तियारी यूजर नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। जराए ने बताया कि इस बारे में तशवीश है कि यूजर नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तशवीश है कि यूजर नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और खुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। जराए ने मजीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत खत्म होने से पहले यूजर नेम फीचर की शुरुआत ना करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई

0: कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदामात को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नज़रसानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जब्तों के मुताबिक मजाज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। CCTV कैमरे और RFID ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। CBI ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को 2 मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। CBI ने आवाम को

0: मुशवरा दिया है कि वो धोखाधड़ी पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज़ करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात कल दोहा में ख़त्म हो गए। कतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुज़ाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जे डी वेंस ने बताया कि दोहा मुज़ाकरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुज़ाकरात एक मुस्तहकम मौक़िफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्ज़ेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाई तकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है, बैनुल अक्वामी बाजार में गैस की कीमतों में तखफीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनी खेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी सुनने वाले श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है बजट में करें शादी। आजकल शादी में बहुत खर्चे होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि लोग सोचते हैं अरे उसने इतना खर्च किया, हम क्यों ना ऐसा करें, या फिर सामने वाला ऐसा चाहता है। शादी में महंगे साज सजावट, महंगा रिजॉर्ट, हो, हर चीजें एक से बढ़कर एक हों, ये अच्छा है, पर कभी कभी ये

सारी चीज़ें उन लोगों पर भारी पड़ती हैं जो शायद इतना खर्च करने में असमर्थ हैं। तो अगर हम शादी के खर्चों का बजट कम रखेंगे तो हमारे समाज में लोगों का नज़रिया बदल सकता है और हम अपने बजट के अनुसार शादी कर सकते हैं। बजट में शादी करना एक बेहतरीन फैसला है। आप समझदारी से खर्च करके आधुनिक विकल्पों को चुनकर बिना किसी आर्थिक तनाव के शादी को यादगार बना सकते हैं। श्रोताओं, जो समय चल रहा है हम देख रहे हैं लोग शादियों में इतना खर्च करते हैं कि हर चीज़ पर, चाहे वो खाने का आइटम हो या कपड़े हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी महंगे से महंगा रिजॉर्ट बुक करते हैं ताकि हमारा मतलब बहुत अच्छा हो, वहाँ के रिश्तेदार आएं और जो लोग देखें वो भी बहुत बड़ाई करें। क्या ये सही है इतना करना, इतना खर्च करना? लौटते हैं कार्यक्रम में इस गीत के बाद।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बजट में करें शादी। लोग एक दूसरे को देखकर भी आज कल शादियों में बहुत खर्च कर रहे हैं। खाने में इतने आइटम होते हैं कि लोग खाते तो थोड़ा है लेकिन बर्बाद ज़्यादा करते हैं। श्रोताओं, अच्छा है, लेकिन इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो इतनी महंगी शादी और खाने से लेकर सजावट और अन्य चीज़ों पर इतना खर्च नहीं कर पाते हैं। अगर हम शादी में कम खर्च करेंगे तो शायद लोगों पर इसका प्रभाव होगा और हम फालतू के खर्च से भी बच पाएंगे। कम बजट में शादी करने का सबसे अच्छा तरीका है एक जगह पर सभी रस्में आयोजित की जाएं, महंगे वेन्यू और कैटरिंग के खर्चों में कटौती करके और डिजिटल इन्विटेशन का उपयोग करके आप अपने बजट में एक शानदार शादी प्लान कर सकते हैं। महंगे मैरिज हॉल होटल ना बुक करें, अपने घर से शादी करें तो आपका खर्च कम होगा। श्रोताओं, हर कोई धूमधाम से शादी करना चाहता है, ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा और प्लानिंग। आप प्लानिंग करके शादी करेंगे तो आपका खर्च कम होगा और शादी में कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आपको अपने मेहमानों की लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत है। आप एक लक्ष्य बनाकर चलें ताकि आप हर खर्चों के लिए बजट बनाएं। अगर आप ऐसा बजट तैयार नहीं करते हैं तो हो सकता है आप किसी जगह ज़्यादा खर्च कर दें और किसी जगह आपको कम खर्च करना पड़ सके। आप अपने बजट में के हिसाब से शादी करें। आपको हमेशा अपनी सेविंग को ध्यान में रखना चाहिए। शादी में कई तरह के खर्चे होते हैं, ऐसे में अगर आप अपने सेविंग के अनुसार खर्च करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शादी के फंक्शन के खर्चों के लिए लोकल वेंडर को सिलेक्ट करना चाहिए या आपको सही कीमतें पेश करते हैं। अगर आप हमारे पास जितना बजट होगा उसी हिसाब से हम शादी करेंगे तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी।

श्रोताओं, बजट में भी कम बजट में भी एक शानदार शादी की योजना बनाना संभव है। याद रखना भी ज़रूरी है कि शादियों का मकसद अपनी दौलत का प्रदर्शन करना या दूसरों की शादियों की तुलना करना नहीं होता। परंपरागत रूप से शादियां दो परिवारों के मिलन और अपनों के साथ समय बिताने का प्रतीक होती हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

0: श्रोताओं, आज नमस्कार प्रयागराज में आज का हमारा विषय था बजट में करें शादी, और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह!
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और पहला गीत आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में, फिल्म थी दीवाना। संगीत दिया था नदीम शौन ने और रचना थी समीर की। लीजिए अब सुनिए प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत। शान और साथियों की आवाज़ें हैं, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और रचना है इरशाद कामिल की।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए पैडमैन फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह की आवाज में संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और रचना है कौशल मुनीर की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पैडमैन फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने गिघासु गंगा पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पुल पर कराए गए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पर शेष तकनीकी परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। गिघासु गंगा पुल के पुनः संचालित होने से रायबरेली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
3: 1970 के दशक का जो निर्मित पुल है वो काफी दिनों से बंद था, जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा था। अब अभी वो लाइट व्हीकल्स के लिए खोला गया है और जल्द ही उसको 10 से 15 जुलाई के बीच में हेवी व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया जाएगा।
2: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दौतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से

0: 12 तक के कुल 14,75,000 समय सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दौतरा, विकास क्षेत्र महाराजगंज, जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 91 रैंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रत्येक विजेता हेतु जुलाई माह में नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। हेडमास्टर को शैक्षिक एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दौतरा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम समुदाय एवं जनपद रायबरेली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनपद दौतरा से दिल्ली तक गूंजा नाम राष्ट्रीय जीत ने रायबरेली व उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर डलमऊ स्थित वीआईपी गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश अचान ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए माँ गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में बड़ा मठ के देवेंद्रानंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। माँ गंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद केएल शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जांच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप ही संचालित हों। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकार द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर और बिल्डिंग का अवलोकन करते हुए निर्माण गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने भवनों के बाहरी एवं आंतरिक हिस्सों का निरीक्षण करते हुए पाया कि कुछ कार्य अभी भी अवशेष हैं।
1: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालौन में आयोजित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूरघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

0: में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा, हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डों से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आइए सुनते हैं सेहतनामा। सेहतनामा में शरीके गुफ्तगु हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, आपसे बातचीत की है शम्स आरफीन ने, पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: सामिन, कुदरत ने इंसान को एक खूबसूरत सांचे में ढाला है, उसको तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है, और जिस्म को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर दिमाग, दुनिया को देखने के लिए खूबसूरत आंखें, चलने के लिए दो पैर और खून की गर्दिश और रफ्तार देने के लिए दिल, इन सब से मिलकर बनता है एक खूबसूरत जिस्म। लेकिन इस जिस्म की जब हम हिफाजत करना छोड़ देते हैं तो न जाने कितने अमराज इसी खूबसूरत जिस्म से वाबस्ता हो जाते हैं, इसलिए आज का प्रोग्राम जिस्म के नाम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ की खास पेशकश सेहत नामा। मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। आज के खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगु हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, जनरल फिजिशियन तिब्बे यूनानी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखसूस सेहतनामा में खैर मकदम है।
2: अस्सलाम वालेकुम
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोलेस्ट्रॉल, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको आम जबान में क्या कहेंगे और इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या घरेलू नुस्खे से अगर हम इलाज करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
2: देखिए, आज की जो जिंदगी हम लोगों की है, जो भी चीज़ हम

0: नॉर्मल जिंदगी में खाते पीते हैं
1: जी
0: उसके अंदर मोस्टली जो चार चीजें जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए होती हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया,
1: राइट,
0: दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, तीसरा आपका विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, चौथा आपका लिपिड यानी के
1: जी
0: फैट हो गया।
1: फैट हो गया,
0: ये भी एक तरीके चर्बी की एक किस्म है जो खाने से ही हमें मिलती है
1: जी।
0: इसमें यह है इक्विलिब्रियम जो होता है वो शरीर को बनाना पड़ता है उसके हिसाब से, जिसमें अल्लाह पाक ने जो भी चीजें दी हैं सबका कोई ना कोई काम है।
1: यकीनन।
0: ऐसा नहीं किसी को कोई चीज बढ़ी हुई है या किसी चीज घटी हुई है, बस जो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पाता उसकी वजह से कुछ डिजीज वगैरह लाहक हो जाती है।
1: मतलब जो आप बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल आम जबान में से हम चर्बी की शक्ल कह
0: चर्बी की
1: सकते
0: शक्ल कह सकते हैं,
1: राइट डॉक्टर साहब। बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरीड, या ये सब क्या चीज है और इनके क्या मुख्तलिफ काम है, इनके बारे में जरा रोशनी डालें तो हमारे सामने ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे।
0: देखिए ये भी हमने बताया कि ये किस्म है
1: जी
0: चर्बी की,
1: जी
0: जैसे आपने बताया कि LDL ये भी एक तरह की चर्बी होती है, और बेसिकली जो भी चीजें जिसमें होती हैं उसका कोई ना कोई काम होता है। जो LDL होता है इसका जो मेन काम होता है कि ये हमारे हार्मोन्स को बनाने के लिए और हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए या बहुत से एंजाइम्स होते हैं उन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ये, और अगर ये सही मात्रा में शरीर में ब्लड में पाई जा रही है तो ये फंक्शन काम
1: बेहतर
0: करती है,
1: करेंगे।
0: और अगर ये इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो फिर ये डिसरेगुलेशन में डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाती है।
1: अच्छा,
0: जी जी
1: क्या ऐसा भी होता है कि किसी के ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो तो उसको ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, ऐसा सही है?
0: देखिए इसमें जो आपने बताया कि ट्राइग्लिसराइड जो होता
1: जी
0: है वो एक मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज होता है।
1: ओके,
0: इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक डायबिटीज का मेन वजह है इसकी।
1: जी तो डॉक्टर साहब अगर मान लेते हैं हमारे सामने जो सुन रहे हैं इस वक्त, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, 200 से ऊपर निकल गया, 250, 270, 300, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले उन्हें के अपने घरेलू कौन से नुस्खे जो आसानी से मिल सके हम उसके इस्तेमाल करें? आमतौर पर लोग इस वक्त एस्ट्रोवास्टाटिन, रोसुवास्टाटिन तो ये कॉमन है और जिस डॉक्टर को भी दिखाएंगे वो लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामने अपने घर पर इसका इलाज करें लेकिन एक माहिर तिब्बे यूनानी से मशवरा लेके।
0: देखिए मेन जो होता है जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल की करते हैं, देखिए हमारी बॉडी में सबसे मेन ऑर्गन्स जो होता है हमारा लीवर होता है जो कि किचन होता है मेरा।
1: हाँ हाँ।
0: अगर उसमें कुछ डिसफंक्शन हो रहा है तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, इसमें मेन है कि जब लीवर में हरारत बढ़ती है, हम लोग के यूनानी टिप के हिसाब से हम लोगों को चार चीजों में कैटेगराइज किया गया है।
1: ओके।
0: एक तो एक सफरा है, सौदा है, बलगम है और दम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है,
1: बिल्कुल।
0: तो उसके हिसाब से ये देखना होता है कि किसकी मात्रा कम या किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है। अगर बॉडी में बलगमियत बढ़ती, बलगमियत का मतलब ये होता है कि आदमी की जो फंक्शन है वो स्लो हो रहा है, जब प्रोसेस स्लो होता है यानी कि लीवर जो होता है थोड़ा सा कम फंक्शन में आता है तो ये सब चीजों की मात्रा बढ़ने लगती है खून में, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है इन चीजों को मेटाबलाइज करके और उसके रीनल यानी कि गुर्दे के जरिए उसको शरीर के बाहर निकाल
1: देना। बिल्कुल,
0: अगर वो चीज कम काम कर रहा है इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो धीरे धीरे ब्लड में आके जमने लगती है। तो मेन वजह हमें कि जो मेरा लीवर है उसको सबसे पहले हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा लीवर सही होगा तो उम्मीद है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होगा धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। तो मेन लीवर को करने के लिए बहुत से दवाएं हम लोग के पास होती है, इसमें हम लोग जो होता है मेन दवाएं जो होती है वो गर्म खुश्क दवाएं देते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये सब जो होती है पेशेंट के मिजाज के ऊपर डिपेंड करती है, पेशेंट के मिजाज अगर गर्म है तो उसको हम ठंडी दवाएं देते हैं। ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल के मिजाज हम लोग देखते हैं कि वो उस किस लेवल का हो रहा है तो उसी के हिसाब से उसकी दवाएं हम लोग तजवीज करते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें सबसे मेन चीज हमारे पास बहुत अच्छी ड्रग है अफसंतीन। अफसंतीन जो होता है उसको हम लोग उसका जुशादा बना के उबाल के उसको पेशेंट को पिलवाते हैं।
1: सब ये ब्रांड नेम तो नहीं है अफसंतीन?
0: अफसंतीन एक मुफरत दवा है, अफसंतीन सिंगल ड्रग है, बहुत अच्छी है ये, और अर्क कासनी होती है, कास्निक तरीके की मुफरत दवा हम लोगों की होती है, बहुत अच्छी ड्रग है।
1: डॉक्टर साहब अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उन्हें अर्जुन छाल, लहसुन का इस्तेमाल करना, अदरक, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम है बिलखसूस वो पलाकी है या एक अर्क मकोह है इनका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके बारे में जरा रोशनी डालें।
0: देखिए हमने बताया कि हम लोग का जो पेशेंट जो होता है इंडिविजुअलाइज होता है, जो ट्रीटमेंट जो होता है हर पेशेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके मिजाज के हिसाब से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
1: जी जी,
0: अगर हमने आपसे पहले ही कहा कि लीवर में हम देखते हैं कि लीवर में लीवर की हरारत बढ़ी हुई है या लीवर में बरूदत बढ़ी हुई यानी कि उसका डिसफंक्शन थोड़ा कम स्लो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से दवाओं की तजवीज हम लोग करते हैं।
1: अच्छा
0: जी जी
1: डॉक्टर साहब, एक तो ये परसेप्शन बना हुआ है कि सेहत किसी की देख लिए, पेट निकला हुआ देख लिया, ओबेसिटी उसकी है, अब हम पहले ही से गेस कर लेंगे कि ये बंदा इसका तो कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ा होगा, लेकिन क्या पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा आपने देखा है? क्या हो सकता है ऐसा? क्या इसके चांसेस रहते हैं?
0: बिल्कुल रहते हैं। मेन जो वजूहत हमने बताई है कि भाई जो लाइफ स्टाइल हमारा आज हो रहा है उसकी वजह से मेन एक वजूहत, लेकिन एक इसका जेनेटिक कॉज भी होता है जिसको मौरूसी बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट जो आप दुबले बता रहे हैं कि दुबले पेशेंट में ये चीज होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि वो हो सकता है जेनेटिक हो उनका, वो उनके पेरेंट्स में या उनके पूर्वज में वो चीज रही हो, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर उसमें रहता है।
1: अगर जेनेटिक नहीं है तो?
0: अगर जेनेटिक नहीं है तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। एक हम लोग का ये एक नॉर्म्स होता है कि भाई अगर ओबेसिटी किसी को है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि ज्यादा चांसेस रहते हैं, होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी।

0: अगर ये पतले लोगों में चीजें हो रही हैं, जब तब तो समझ में आ रहा है कि उसके कोलेस्ट्रॉल हो गया है भाई, उसकी ट्रीटमेंट जैसा कि अभी आपने तिब्बे यूनानी के हवाले से बताया। अगर हमारे साथ जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सेहतमंद लोग हैं, उनको दिन भर में कितने मिनट या कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे उनका जो फैट है वो कम हो सके, खत्म हो जाए, और उनका सुबह और शाम की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, शाम का खाना कितने बजे, इन सब पर भी जरूर रोशनी डालें।
1: देखिए, ओबेसिटी का अगर देखें कि ये एक सिंगल बीमारी नहीं है,
0: जी
1: इसको हम लोग पूरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप बोलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ओबेसिटी में बेसिकली एक जो आप देखेंगे तो अगर ऊपर से आप शुरू करेंगे, दिमाग एक उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा दिमाग जो होता है, एक इसका मेन हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये वो भी एक फैक्टर होता है उसका।
0: जी
1: और सेकंड पे आपका आता है कि आपका जो रहन सहन है, कि ये बिल्कुल डल आपकी लाइफ हो रही है, आप आराम से अपना उठते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, जो आपका ये चीजें हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और आपका तीसरा आपका खान पान हो गया, कि आप
0: ओके
1: किस तरीके की चीजों को खान पान आप ले रहे हैं, किस तरीके नाश्ता कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, मतलब उस डाइट की भी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है। और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट किस टाइम खाना खा रहा है, कितना खा रहा है और क्या चीज खा रहा है।
0: जी, डॉक्टर साहब हम डे वन शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए मैं आपके सामने पेशेंट हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे सुबह का नाश्ते में सबसे पहले क्या लेना है और कितने बजे नाश्ता करना है।
1: देखिए, सुबह का बेहतर है कि नाश्ता अराउंड 7 से 8 बजे तक हो जाना
0: ओके
1: चाहिए, और मॉर्निंग की शुरुआत जो होना चाहिए आपको प्रोटीन डाइट से करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइट हमारे लिए, प्रोटीन ऐसी चीज होती है जो कि मेरी सारी रिपेयरिंग के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनको रिपेयरिंग का काम करती है, बॉडी बिल्डअप करती है ये। तो हमें सबसे पहले प्रोटीन डाइट से शुरू करना चाहिए।
0: ठीक है।
1: प्रोटीन में स्पेशली आपका हो गया स्प्राउट्स हो गए आपकी, और आपके चने हो गए, चने में स्पेशली काबली चना हो गया आपका, और मूंग दाल हो गई आपकी, ये अंकुरित चीजें जो होती है सुबह की मॉर्निंग डाइट में आपको लेना बेहतर है।
0: ओके, क्या हम सुबह के नाश्ते में अंडा ले सकते हैं?
1: अंडा ले सकते हैं, बिल्कुल, प्रोटीन डाइट उसमें बढ़िया हो एक सोर्स
0: सुबह
1: है।
0: के
1: देखिए,
0: नाश्ते में और दोपहर के खाने के बीच में तकरीबन कितने घंटे का फर्क होना चाहिए?
1: कोई भी खाना हजम करने के कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें लगते हैं, पूरा उसको मेटाबलाइज होके एक नॉर्मल उसमें खाना। आप जनरली आप मॉर्निंग में ये है कि आप 12 बजे तक की 11 बजे तक खाना ले सकते हैं।
0: एक परसेप्शन और यहाँ मेरे सामने आ रहा है, अक्सर ये कहा जाता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या जो मोटे होते हैं, कहा जाता है कि भाई आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते। ये परसेप्शन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक सही है?
1: देखिए, खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना चाहिए। एक चीज रखिए, पहले या खाना खाइए या पानी पीजिए।
0: अच्छा,
1: तो खाने एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा, 40 मिनट से 1 घंटे तक की, उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए।
0: चलिए सुबह के नाश्ते में डॉक्टर साहब आपने हमें बता दिया, अब हम आते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने के में किस तरह की डाइट होनी चाहिए?
1: देखिए, दोपहर में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं,
0: ओके।
1: आप दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, जो एक नॉर्मल डाइट है वो आपको लेनी चाहिए।
0: ठीक है।
1: दोपहर का खाना तो आप स्ट्रॉन्ग थोड़ा ले सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा छूट है।
0: अब रात के खाने पर बात करते हैं कि रात का खाना कितने बजे होना चाहिए और क्या होना चाहिए।
1: देखिए, हम लोग में एक यूनानी और आयुर्वेद दोनों चीजों में ये कॉन्सेप्ट है कि सूरज ढलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए।
0: ये इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे ख्याल से आजकल 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं मेरे ख्याल से, कि
1: जी जी
0: वो रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं खाना खाते हुए। डॉक्टर साहब अब इन चीजों का जो असर होता है, एक और चीज सामने आ रही है, बिलखसूस नौजवानों में हमारे हम सब में देखा जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है? कई 20 से 30 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो नौजवान तबका है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है?
1: देखिए, ब्लड प्रेशर की वजह पे आ जाए तो आज भी मॉडर्न साइंस या जो भी वो कह रहे हैं कि 80% जो होती है वो जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है वो नॉन इडियोपैथिक कॉज होता है उसका। हाँ, 20% में कुछ वजूहत होती है आपका, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक वजह हो सकती है, इसके अलावा ओबेसिटी एक वजह हो सकती है, कुछ रीनल कॉजेस भी होते हैं उसके अंदर। तो एसेंशियल, लेकिन हम लोग जो यूनानी मेडिसिन है उसका एक ये कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है एक उसकी बड़ी वजह हो गई है। हमने बताया स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है कि स्ट्रेस की वजह से आजकल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: जो हमारी सोच है हमारी, वो है कि हर वक्त हम उसी में मुब्तला रहते हैं कि भाई रात में सो रहे हैं तो भी हम इजी नहीं है, जो डीप स्लीप हमारी नहीं हो रही।
0: बिल्कुल।
1: जो हमारा रात में रिपेयरिंग का काम होता है, बॉडी सोने के टाइम सब रिपेयरिंग का काम करती है, वो बॉडी पूरी तरीके से नहीं आती है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लगता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक वजह ये भी है कि हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है।
0: अच्छा, ये जो सूजन हो रही है उसकी वजह से हाइपरटेंशन?
1: बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है।
0: ओके, ये एक नई चीज हमारे सामने के लिए सामने आई है कि जो इंटरनल सूजन है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है।
1: जी जी
0: जी जी डॉक्टर साहब, आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बात आ रही है, तो सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है?
1: देखिए, मेरे पास जो मेन मेरा हार्ट है वो एक बड़ा ऑर्गन, मतलब एक जो प्राइम ऑर्गन कहलाता है उसको, ठीक है, उसमें चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, सभी को पता है वो। और उसमें एक काम होता है कि बॉडी को पूरा ब्लड जो होता है शरीर तक पहुंचाना।
0: बिल्कुल।
1: और एक उसमें एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है कि जब वो रिलैक्स करता है, जब वो हार्ट जो होता है हमारा सिकुड़ता है यानी कंट्रक्शन करता है, तो पूरा हार्ट ब्लड जो होता है पूरे शरीर को जाता है।
0: हाँ।
1: तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कंट्रक्शन के टाइम पे, आर्टरीज में जो बढ़ता है, वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और उसके बाद में जब वो रिलैक्स होता है यानी कि अपने रिलैक्स

0: मोमेंट पे था, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग।
1: हाँ, हाँ, मतलब जो दबाव के वक्त जिस्म के अंदर फ्लो बढ़ रहा है उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो जो सिस्टोलिक हो गया, और वापस जो आराम की पोजीशन में आ रहा है वो हमारा डायस्टोलिक हो गया। अगर मान लीजिए किसी का सिस्टोलिक नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक बढ़ रहा है, ये सूरत हाल किस चीज के इंडिकेट करती है?
0: देखिए डायस्टोलिक हमने बताया जब रिलैक्सिंग होता है हार्ट, कोई भी चीज अगर रुकेगी ज्यादा देर तक की शरीर में, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं जा रही है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उस पर, इसको देखना जरूरी होता है कि ये एक मेजर वजह होती है कॉम्प्लिकेशन की।
1: ओके,
0: तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए।
1: अभी हमने एक साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका 122 और 95 ये आया, यानी कि डायस्टोलिक उसका 95 था, तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है।
0: जी जी, वो अलार्मिंग साइन है हमारे लिए,
1: अलार्मिंग साइन है। तो उसको हम किस तरह से, उसको कैसे मतलब एग्जामिन करें कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टेस्ट करें उसके लिए हम?
0: देखिए जनरलाइज जो ब्लड प्रेशर या इसके लिए हम लोग कराते हैं लिपिड प्रोफाइल,
1: होगी
0: और आपकी एफटी करा लेते हैं उसमें, यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपी करा लेते हैं कि उसमें देख लेते हैं प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही है, कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो नहीं है।
1: जी,
0: मेन वजूहत यही होता है, इसको इसको देखते हैं पहले हम लोग।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी का ये डायस्टोलिक बढ़ रहा है, ये 95 और 99 और 100 के आसपास हो गया है, तो क्या उसको मेडिसिन लेनी चाहिए?
0: जी देखिए, उसको वेट एंड वॉच करने के लिए उसको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करानी चाहिए
1: जी,
0: और साथ में उसको एक्सरसाइज प्रमोट करना चाहिए और उसकी स्लीप वगैरह को प्रॉपर करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तो हल्का हम लोग मुदिरात वगैरह, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें हम लोग मुदिरात देते हैं, तो उससे उम्मीद है इंशाल्लाह वो चीज कंट्रोल हो जाती है।
1: ऐसे कोई मसाले मौजूद हैं जिनसे इस तरह का ब्लड प्रेशर घर में हम काढ़ा बना लें या कुछ बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है?
0: देखिए जो आप बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी जो हम लोग को रेमेडीज है वो आपका चुकंदर, जो नाम सुना
1: होगा। अच्छा, चुकंदर, जी जी जी बिल्कुल।
0: उसमें NO2NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है।
1: ओके,
0: तो बेहतर है उसको या तो एज ए सलाद या उसकी सब्जी बना के या इवन उसका जूस बना के आप उसको लेंगे तो उम्मीद है उससे फर्क पड़ जाता है
1: चुकंदर को।
0: और उसमें मेन डाइटरी में उसका आपका पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम होगा, इन चीजों को प्रमोट करते हैं, इन मिनरल्स को प्रमोट करते हैं, जिससे कि इनकी जो आर्टरीज होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं हम लोग हैं।
1: अच्छा,
0: कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो प्रेशर कम पड़ेगा उसको।
1: जी जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है?
0: देखिए स्ट्रेस, हम एक हार्मोन आपका बेर भाई नाम ले रहे हैं, कॉर्टिसोल बहुत बड़ी चीज है, आदमी इसको अब उस पर मॉडर्न साइंस भी काम कर रही है, उसको लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें मैनेज करना चाहिए।
1: जी जी,
0: देखिए एक सबसे अच्छी चीज है जो ब्रिस्क वॉक आपकी है, सुबह उठ के कम से कम 30-45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक सुबह मॉर्निंग में करनी चाहिए, उससे आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और आपका वो लेवल थोड़ा सा बेहतर होता है स्ट्रेस के लिए।
1: जी, क्या आजकल जो लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं जिससे रात के 2 बज जाते 3 बज जाते और फिर उनको जो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन में भी स्ट्रेस और इसका जिस्म पर क्या असर पड़ता है? हमारे नौजवान तबके जो है उस तबके को आप खासतौर से ये पैगाम दीजिए कि क्या कर सकते हैं उसको।
0: देखिए हमने एक चीज आपको पहले बताई कि भाई जो रात का टाइम ऊपर ने बनाया वो सोने के लिए बनाया,
1: बिल्कुल,
0: उसमें कुछ हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन, ये बैलेंसिंग हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, और ये हमने कहा बॉडी रिपेयरिंग का काम जो होती है रात ही में करती है।
1: ओके,
0: तो रिपेयरिंग का जो काम रात में होता है अगर हम उस टाइम पे अपना एक्टिविटी करते रहेंगे, जाहिर है वो रिपेयरिंग बॉडी की नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फिर वही कॉज होगा, इन्फ्लेमेशन आएगा तो इन्फ्लेमेशन में बीपी है, शुगर है, आपको ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी।
1: बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान लंग्स पर हम बात करना जरूरी समझते हैं कि लंग्स की एक्सरसाइज के लिए जो हम क्या कर सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाए और वो पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाए, आप उसके बारे में जरूर हमारे सामने को बताएं कि फेफड़े की ऑक्सीजन को कंप्लीट ऑक्सीजन लेने के लिए क्या किया जा सकता है।
0: देखिए सुबह का जो मॉर्निंग वॉक बता रहे हैं आपको, सुबह में जो ताजगी होती है जो चीजों में होती है उसमें आप केवल जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ लंग्स की एक्सरसाइज होती है और कुछ ऐसे सिंपल अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसका आपका जो लंग फंक्शन होगा बेहतर होगा उससे।
1: अच्छा, कहते हैं कि आप सांस खींच के एक बार छोड़ दीजिए और आप उसके बाद वेट करते रहिए सेकंड की तरह की कितने सेकंड आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई है, आप खुद जब थक जाते हैं अपने खुद के शेड्यूल से, रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी से, तो रिलैक्स करने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
0: देखिए हर आदमी का एक अपना शौक होता है,
1: बिल्कुल वही मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली।
0: जी, एक शौक होना चाहिए और बेहतर है कि उसमें आउटडोर गेम आप जरूर शामिल करें।
1: जी,
0: आप आधे घंटे के लिए ऐसी चीज रखें कि आप जाके उस टाइम अपने सारे काम को भूल गए, अपना एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए आप,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो उसमें आप रिलैक्सिंग एक फील करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, एक वो अलग एक माहौल एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश करें उसको, और अपने दोस्तों के साथ और एक टाइम एक जरूर फिक्स करें, वो एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बहुत सारी चीजों को दूर करेगी।
1: मतलब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, हंसी मजाक होता है इस दौरान और बाहर घूमते हैं फिरते हैं, उससे बॉडी पे काफी बेहतर असर पड़ता है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमारे दोस्त लोग जैसे डॉक्टर सईद अख्तर साहब बैठे हैं या हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्रिकेट मैच खेलने निकल जाते हैं और जाके 1-2 घंटा पसीना हमने बहा लिया और उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो यकीनन एक अलग ही उसका मजा होता है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे कुछ सामयिन को पैगाम देना चाहेंगे?
0: देखिए आज की लाइफ हम लोग की बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग

0: खुद बना रखी है उसको,
1: बिल्कुल,
0: तो थोड़ा सा उसको इजी कर लीजिए। इजी का मतलब इन सेंस ये हो गया कि भाई सुबह उठिए तो कम से कुछ टाइम अपने लिए आप जरूर रखिए।
1: हाँ हाँ,
0: भाई सेहत ऊपर वाले ने सबसे बड़ी नेमत दी है, ये तो मान के चलिए आप। जब तक आपके पास सेहत तभी आप सबके लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने देश के लिए, आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: ठीक है, तो उसके लिए एक टाइम बना लीजिए भाई, एक्सरसाइज जरूर आप कम से कम 30-45 मिनट्स की एक मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक जरूर रखिए।
1: ओके,
0: और इसके लिए डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइट को बहुत सेलेक्टेड, बहुत क्वांटिटी क्वालिटी ये सब मेंटेन रखिए डाइट की, क्योंकि जो चीज हमारे जिस्म में जाएगी जाहिर है उसके असरात मेरे ऊपर होंगे, तो अगर उसको हम सही से रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चीज सही।
1: कहते हैं कि डाइट में नॉनवेज ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या सही है? हफ्ते में एक बार लेना चाहिए आपको, ये सारी चीजें डॉक्टर साहब सही है?
0: देखिए अति किसी चीज की भी नुकसान देती
1: है, ये तो है।
0: और हर बॉडी का देखिए, हमने बताया था कि हम लोग यूनानी मेडिसिन के हिसाब से या अपना कॉन्सेप्ट जो होता है कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल मिजाज होता है और उसकी इंडिविजुअल डाइट होती है।
1: बिल्कुल,
0: सब आदमी के लिए जरूरी कि वही चीज हमको हो सकता है फायदा करे, नहीं सूट करे,
1: ये बात तो है।
0: तो ये इन चीजों का हम लोग तो उस तरीके से टेलर डाइट भी देते हैं उसी तरीके सब लोगों की अलग अलग।
1: डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसके लिए, इसके इलाज के लिए कोई घरेलू नुस्खा जो हो वो आप हमारे सामने को बताएं जो घर पर इस्तेमाल करें।
0: जी जी, देखिए आपका सौंफ हो गई, आप बादियान जिसको कहते हैं हम लोग, सौंफ हो गई और आपकी इलायची हो गई,
1: जी
0: ये बहुत अच्छी मुदरी बॉल दवा होती है। इनको सिंपल सिर्फ बॉयल करके आप सुबह डेली नहर मुल लीजिए तो उससे ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल
1: ये बॉयल करके और इसका जो पानी होता है उसको साइड कर देंगे या कैसे?
0: इसको आपने
1: बॉयल किया,
0: बॉयल कर लिया,
1: हाँ।
0: एक चम्मच सौंफ हो गई आपकी, हाँ। चार पांच पीस आपकी
1: इलायची हो गई,
0: इलायची होगी, उसको बॉयल कर लीजिए, उसको छान के पी लीजिए आप।
1: पानी पीना है उसका,
0: पानी पीना है उसका,
1: हाँ, यानी कि वो काढ़ा एक तरह एक शक्ल में हो गया।
0: जी जी जी,
1: हाँ, ये एक अच्छी चीज है जो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमारे सामईन हैं जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया इसको आप इस पर अमल कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी डॉक्टर से लगातार ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर कराते रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, आपकी जो शिरकत रही वो हमारे सामईन के लिए बहुत मुफीद है, और इस खूबसूरत और खैरामत गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन, ये था हमारा आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम सेहतनामा, जिसमें शिरकत करने वाले मेहमान थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप करने चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए अपने मेजबान शम्सुल आरफीन को। आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सेहतनामा के अंदर शरीके गुफ्तगु थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, इनसे बातचीत की थी शम्सुल आरफीन ने, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। 747 किलोहर्ट्ज पर
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, लीजिए सुनिए सोमनाथ बरन के स्वर में भजन।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के

0: भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं आश्रय द्विवेदी और राम सूरत और साथी। आइए सुनते हैं आश्रय द्विवेदी के स्वर में ये गुरुपद।

श्रोताओं, अभी आप राम सूरत और साथियों के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोक मात्री कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए आशिकी 2 फिल्म का ये गीत अंकित तिवारी की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए केदारनाथ फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने सुना चेन्नई एक्सप्रेस एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत। चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ थी, संगीत दिया था विशाल शेखर ने और रचना थी अमिताभ भट्टाचार्य की। लीजिए अब सुनिए सुल्तान फिल्म का ये गीत सलमान खान की आवाज़ में, संगीत विशाल शेखर का, रचना है इरशाद कामिल की।

लीजिए अब सुनिए राजी फिल्म का ये गीत, हर्षदीप कौर, विभा श्रॉफ और शंकर महादेवन की आवाज़ों में। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और रचना है गुलजार की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राजी फिल्म का ये गीत, और अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। मैं अकेला ही चला था जानिबे ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

ये मशहूर शेर जिस शायर का है वो है मजरू सुल्तानपुरी। उनका असली नाम असरार उल हसन खान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। शुरुआत में उन्होंने यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई की और हकीम के रूप में भी काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी शायरी और गीतों ने बनाई। एक मुशायरे में उनकी प्रतिभा की पहचान मिली और वहीं से उनके साहित्यिक सफ़र की शुरुआत हुई। मजरू सुल्तानपुरी केवल गीतकार नहीं थे, बल्कि वे ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रेम, दर्द, उम्मीद और ज़िंदगी के हर रंग को अपने शब्दों में उतारा। उन्होंने लगभग 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी खासियत यह थी कि वे हर दौर के संगीतकारों और अभिनेताओं के साथ खुद को ढाल लेते थे।

उनकी खासियत यह थी कि वे हर दौर के संगीतकारों और अभिनेताओं के साथ खुद को ढाल लेते थे, चाहे मोहम्मद रफ़ी हो या किशोर कुमार का स्वर्णिम दौर हो या बाद में नई पीढ़ी के कलाकार। उनके गीत हर समय के लोगों की जुबान पर रहे। उनका जीवन संघर्षों से भी भरा रहा, प्रगतिशील विचारों के कारण, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। यही साहस उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। 1965 में उन्हें चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। वर्ष 1993 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गीतकार बने। यही सम्मान उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। मजरू साहब के गीतों में सरलता भी है और गहराई भी है। ओ मेरे दिल के चैन, इसमें प्रेम की मिठास है।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इस फिल्मी रोमांस की खूबसूरती है।

पहला नशा इस गीत में पहली मोहब्बत की मासूमियत और पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा में युवाओं के सपनों की उड़ान। यही कारण है कि उनकी रचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आज मजरू सुल्तानपुरी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके शब्द आज भी हर महफिल, हर रेडियो और हर संगीत प्रेमी के दिलों में जिंदा है। उन्होंने साबित कर दिया कि महान गीत वही होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर जाएं। भारतीय सिनेमा और उर्दू शायरी के इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिया जाए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे मजरू सुल्तानपुरी। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर है नेहा गुप्ता का और वंदना राठौर का। प्रस्तुति है नेहा गुप्ता की।

0: बोलते नगमे। दोस्तों श्रोताओं नमस्कार, वंदना जी नमस्कार,
1: नमस्कार नेहा जी, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को हमारा
0: और साथ में नगमे भी आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं दोस्तों। और वंदना जी मैंने और कहा ना,
1: हाँ,
0: और मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ और करीब करीब वर्ष बता देती हूँ, मैं देखती हूँ है ना। सुधीर श्रोताओं देखिए कुछ शब्द हैं इस गाने में, जैसे कि बेरुखी और इंतज़ार, जानिसार।
1: क्या बात है, जानिसार, जो चीज़ पहले आपको कहनी चाहिए थी नेहा जी वो शब्द आपने बाद में दिया। तीसरा जो शब्द आया है जानिसार, यही गीत का मुखड़ा है। और करीब करीब मैं गीत क्या फिल्म तक पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि ये फिल्म मैंने देखी थी
0: जी।
1: बड़ी ही मर्मस्पर्शी फिल्म थी ये
2: जी, केदारनाथ,
1: और जो उत्तराखंड में 2013 में जो एक त्रासदी हुई थी भूस्खलन के द्वारा, उसकी पृष्ठभूमि पर जो एक प्रेम पनपा, अभिषेक कपूर ने इसकी कहानी लिखी और निर्देशन भी उन्हीं का रहा है। और पहले हम गाना सुन लें जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, जिसे मैंने आपके क्लू देते ही पहचान लिया है लेकिन पिछली बार कहीं कुछ मिस हो गया था मुझसे क्योंकि आपने सही तरीका नहीं अपनाया था
0: तरीका नहीं, ये कहिए कि आप फेल हो गई थी
1: चलिए अगर आपको इसमें खुशी मिलती है फेल होने में मेरे तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं सच में हार गई थी उस दिन, तो लेकिन आज तो जीत गई हूँ ना,
0: हिसाब बराबर हुआ,
1: हिसाब बराबर हुआ। तो क्या ये गीत यही है जिसका मैं अब बुखड़ा प्ले करने जा रही हूँ, सुनिए बताइए।

0: अमिताभ भट्टाचार्य ने जो शब्द उन्होंने चुने हैं इस गीत के लिए कमाल हैं। कैसे प्यार को उन्होंने बयां किया है कि दीवानापन भी ठीक है, प्रेम भी ठीक है, लेकिन ये जो नाराज़गी है उसमें बहुत बड़ी ताकत है। बात ना हो तो भी चलेगा, बात करें तो भी चलेगा, लेकिन ये जो नाराज़ होने का भाव है इन सब भावों से ऊपर हो गया है। और इस फिल्म में जब हम सारा अली खान को, सुशांत सिंह राजपूत को, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जब उनकी एक्टिंग देखते हैं तो लगता है कि बहुत सुंदर परिपक्व एक्टिंग की है दोनों ने, है
1: ना? सच करिए नेहा जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये फिल्म पर्दे पर आई और इसमें जब डेब्यू किया है सारा अली खान ने, तो किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी मैच्योर एक्टिंग एक नवोदित कलाकार कर सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से पर्दे में इतने सशक्त रूप में उभर कर आती हैं। और साथ ही साथ ये याद, एक ताज़ा हवा का जो झोंका होता है उसकी तरह से तो आई हैं, लेकिन याद ये दिला गई अपनी माँ की, अमृता सिंह की।
0: अरिजीत सिंह ने जैसे गाया है, ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज़ मदहोश करने वाली, मैं कहूँ एक खास तरह का जादू है। जब आप उनकी आवाज़ सुनते जाते हैं और जब तक ये गाना अपने पड़ाव तक नहीं पहुँच जाता, आप उनके जादू में कैद हो जाते हैं।

0: अमिताभ भट्टाचार्य जब ये लिखते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते मैंने ठुकरा दिए तुम्हारे लिए, न जाने कितने रिश्ते होते हैं एक इंसान के, पड़ोस का धर्म होता है, कार्यस्थल का होता है, घर का है, बहुत सारे, उसकी दुनिया बहुत बड़ी होती है और उस पूरी बड़ी दुनिया में एक इंसान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो नाराज़ हो जाए तो सोचिए वो पूरी डवाडोल सी दुनिया लगती है, तो ये बड़ी बात है।
1: सच बात है, और नाराज़गी तो ये रंग दिखाती ही है अपना, और नाराज़गी ही वहाँ जाहिर की जाती है नेहा जी, जहाँ पर बहुत प्यार होता है,
0: अपनापन होता है,
1: अपनापन होता है और अपार श्रद्धा भी होती है प्रेम के प्रति, क्योंकि हम बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, मांगना कोई भौतिक रूप में नहीं होता है, वो एक समय की मांग होती है और एक कहते हैं ना कि जो एक कमिटमेंट किया जाता है एक दूसरे के प्रति, उस कमिटमेंट को अगर कोई पूरा नहीं करता है तब भी कहीं ना कहीं एक उजागर नाराज़गी उसकी झलक दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि नाराज़ होने पर दोनों ही नाखुश हैं। और इसी गीत का एक फीमेल वर्जन भी है जिसे गाया है असीस कौर।

0: कदम आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, तो एक वो भी समय आता है जब हम किसी की कमी बेसी जो भी उसके बावजूद हम उसे अपने होठों पर सजाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कलाकारी है सामने वाले में तो है ही, लेकिन जो सजाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कलाकार और साहसी व्यक्ति, और मैं कहूँ कि ईश्वर ने उसे बहुत सुंदर भावों से नवाजा है ना।
1: सच कह रही है नेहा जी, उनकी आवाज़ जब जब सुनाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जब हम बार बार कैद होने की बात कर रहे हैं, जादू की बात कर रहे हैं, तो ये जादू और ये कैद हो जाना तिलिस्म में, वो आवाज़ का ही एक तरह से कमाल होता है। और ये आवाज़ है गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी की।
0: आपको याद आया किसने लिखा?
1: बिल्कुल, कतील शिफाई जी की ये गज़ल है। मानवतावादी एक शायर माने जाते हैं, और जो प्रेम की भावना होती है, रुमानियत से भरपूर उनके लफ्ज़ होते हैं जो सीधे हमारे दिल तक पहुंचते हैं।
0: जानती हैं क्यों ऐसा होता है? आप ये जो कह रही हैं कि ये मानवतावादी शायर रहे, एक बात और आपने कही रूहानी
1: जी,
0: है ना, कि इन्होंने प्रेम को बहुत बड़े रूप में देखा। जब हम लोग नाराज़गी और रूठने से भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो शायद यही प्यार का जो मीठापन है, उसका जो रूप है, वो दिखाई पड़ता है। और जब वो कहते हैं कि तुम्हें होठों पर सजाना चाहता हूँ, मतलब आप जो भी बोलेंगे शायद उस शब्द में, उन बोलों में वो रूप आएगा, वो आवाज़ आएगी जिसको हम अंदर सहेजे हुए हैं ना।
1: तो चलिए, जो अंदर कतील शिफाई ने लफ्ज़ों के ज़रिए सहेजा और आवाज़ के ज़रिए जिसे फिज़ाओं में अनगुंजित किया जगजीत सिंह जी ने, तो उसको हम अपने श्रोताओं तक भी पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं। तो इसका हम मुखड़ा सुनते चलें गज़ल का।

0: जब कहते हैं कि पूरी बस्ती में अंधेरा है लेकिन मैं रोशनी जलाना चाहता हूँ, हो सकता है कि पूरे जहाँ में किसी को इश्क से अभी उसकी मुलाकात ना हो लेकिन मैं करना चाहता हूँ वो हिम्मत क्योंकि कहते थे कि शायद जो इश्क की रोशनी होती है वो फैलती सी जाती है और इस कदर फैलती है कि सबको वो, आपने पटाखा वो वाला देखा है ना कभी बचपन में छुड़ाया हो
1: जी,
0: उसको
1: जी.
0: क्या बोलते थे हम लोग, एक में आग लगाई तो कई उसके धागे से कई पटाखे छूटते चले जाते
1: हाँ,
0: थे,
1: मिर्ची पटाखा जो होता है चटाई बम कहते हैं
0: वैसे शायद प्रेम और करुणा भी है ना
1: जी.
0: कि आपने एक बार उसकी लौ रोशन की तो शायद वो लौ की लड़ियाँ बनती चली जाती हैं.
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरती के साथ में आपने इस बात को रखा है नेहा जी, और उतनी खूबसूरती के साथ गज़ल हमारे सामने नज़र आ रही है जिसे हम सुन रहे हैं, और आगे की जो बातें हैं वो गुफ्तगू क्या होगी, कितनी दिलकश है और किस तरह से कोई आंसू मोती बन जाता है उसकी बात होगी, वो अब हम सुनते हैं आगे.

ये भी खूब है कि एक आंसू अपने ही तुम्हारे दामन में टांग दूंगा और टांगने के बाद वो आंसू मोती बना दूंगा। ये बड़ी बात है ना, दोनों ही चीज़ें बहुत कीमती हैं, आंसू भी।

0: और मोती भी। आंसू शायद टिक जाए इसलिए मोती बना देंगे।
1: नहीं जी, बात यह होती कि खासियत तो उस दामन की है जिस दामन पर आंसू बहाया जा रहा है, जहां पर उस आंसू की कद्र और कीमत कितनी बढ़ जाएगी जो मोतियों से तोली जाएगी। तो ये तो वही होता है जहां पर प्यार बहुत गहरा रंग दिखाता है। और जब इस तरह की बातें आती हैं और शायर जब इस तरह की बात कहीं लिखता है तो इतना मानी खेज होता है वो कि जिसे समझना पल भर में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंतर्निहित जो और सारे जो अर्थ होते हैं वो भी हमें खोजने होते हैं, जिसके लिए हमें ठहराव की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा ठहरना पड़ता है, इत्मीनान सुकून की दरकार होती है कि हम बैठें और इन गज़लों को सुनें और ये सोचें कि एक एक लफ्ज़ जो शायर ने कलमबद्ध किया है वो कितना असर रखता है, कितना ज़बरदस्त हमारे अंदर भीतर हलचल पैदा करता है, विचारों की क्रांति पैदा होती है एक तरह से, चाहे वो प्यार की बात करी जाए या समाज के बदलाव की क्यों ना बात हो।

0: अभी जब ये गज़ल चल ही रही थी, उसका अगला जो पड़ाव है, उसकी पंक्तियाँ हैं, जब हम लोग सुन रहे थे, तो उसमें एक बात कतल शफाई जी ने जब कही कि आखिरी हिचकी तेरे जानों पर आए, मतलब ये जो अदब है ना तुम्हारी, अगर सांस का एक टुकड़ा भी बचा है तो वो शायद तुम्हारी अदब में ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये बात कहें कि कितनी जो छवि है आपकी वो गहरे तौर पर बैठी हुई है।
1: नेहा जी, इसे बढ़कर किसी प्रेम के लिए क्या बात होगी कि वो प्रेम की गोद में, जानू मतलब गोद होता है, वो उसमें आखिरी सांस अपनी खर्च करना चाह रहे हैं। इच्छा इस तरह की रखना, ख्वाहिश रखना कितनी बड़ी बात है, और अपने प्यार के प्रति कितनी वफादारी है और समर्पण यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जब हम इसको सुन रहे हैं तो मन बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित हो रहा है, और जो कुछ कहना चाहते हैं वो शायद शब्दों में हम बांध नहीं पाएंगे, बहुत कुछ छूट भी रहा है पीछे, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

0: सलाम अली जी की आवाज़ जब वो गाते रहे हैं स्टेज पर भी स्टूडियो में भी, तो वो कहते ना उनका चुटीला अंदाज़ भी होता था। मतलब गाते रहे हैं और बीच में कहते थे अब ज़रा देखिए, इस पर गौर फरमाइए, तो ऐसा लगता था कि उनके साथ ही बहे चले जा रहे हैं। कई बार मखमली सी गुदगुदी लगती है और पता नहीं उस मखमली सी गुदगुदी के साथ गहराई में कब उन्होंने उतार दिया वो पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल सच करी है नेहा जी, और उनका अंदाज़े बयां तो बड़ा ही पुरलुत्फ होता है, क्योंकि वो बताते हैं जो दर्शक सामने बैठे होते हैं या श्रोता होते हैं कि किस तरह से, किस अंदाज़ में गज़ल को सुना जाना चाहिए, इसके जो शब्द हैं वो शब्द क्या कह रहे हैं, उसका तरीका कैसा होना चाहिए सुनने का, वो श्रोताओं को उस रूप तक ले जाते हैं, वहाँ तक लेकर जाते हैं और फिर वो बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जब वो कह रहे हैं कि तेज़ हवा ने हमसे पूछा, तो वो तेज़ हवा जो कि तेज़ है उसकी तेज। अनगूंज कैसी होगी, उसकी लयकारी कैसी होगी, उसमें स्वर किस तरह से आरोह अवरोह के साथ आगे बढ़ेगा या घटेगा, वो सब कुछ वो गायन के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, चलिए हम आगे क्या ही बात करें, उन्हीं के मुख से सुनते हैं।
2: लफ्ज़ हैं, तेज़ हवा ने मुझसे पूछा, तो हवा का फैक्ट तेज़ का, सिर्फ हवा का नहीं, तेज़ हवा का।

0: मोहसिन नकवी साहब, जब कहते हैं कि आखिर तुम इतने अच्छे क्यों लगते हो, कई बार उन अदाओं में गुम सा हो जाता हूँ, खो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि आखिर अच्छे क्यों लगते हो। दिन भर सोच के बाद सोचता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, हवाएं बिगाड़ती हैं, दिन ढल जाता है, रात आती है, चांद निकल आता है इसी तलाश में, लेकिन फिर से रात ढलती है और दिन निकलता है, फिर से तलाश शुरू हो जाती है। तो जिनको भी इस तरह की अदायगी बख्शी होगी वो ऐसा ही होता है।
1: नेहा जी, जब आप तलाश की बात करी कि जो तलाश या खोज अनवरत चलती रहती है, तो सच मायने में प्रेम ही वो एक ऐसा रूप है, स्वरूप है, जो मंजिल की बात नहीं करता है, वो सिर्फ रास्तों की खूबसूरती की बात बयां करता है, चाहे उसमें कितने दर्द मिले, कांटे हों, उदासियां हों, गम हों, आहें हों, आंसू हों, या तमाम खुशियां ही क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ सफ़र तय करता रहता है, क्योंकि हर एक पड़ाव जो आता है इस सफ़र में वो इतना खूबसूरत होता है, इतना दिल नशीं होता है कि मन बस उसी प्रेम में, पूरी तरह से प्रेम के फूल के इर्द गिर्द भौरे के समान घूमता रहता है, डोलता रहता है।

0: जरा इसकी आखिरी बोलों पर गौर फरमाएं। वो कहते हैं कि मेरे हिजर की बात छोड़ो, इसका मतलब मेरे बिछड़न को, मेरे दुख को, मेरे
1: जुदाई
0: दर्द को, जुदाई को छोड़ो, आप अपनी बयानगी करो, क्योंकि जब आप मेरे हिजर पर नज़र डालेंगे, बात करेंगे, तो शायद वो जो बात हम तलाश ही कर रहे थे, वो बात बहुत गहरी, बात एक ही है कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, फिर कहाँ गुम हो। तभी उन्होंने हवा ही नहीं कहा, तेज़ हवा कहा, कि कई बार हमको गहराई नापने की ज़रूरत पड़ती है।
1: जी हाँ, लेकिन समझने की ज़रूरत नेहा जी अब हमें भी है, क्योंकि समय इजाज़त की बात कर रहा है।
0: सुधी श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि पसंद आया होगा।
1: पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया 8004926250 जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिए। और अब विदा की बेला आ चुकी है दोस्तों, तो दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्ते।

بولتے نغمے अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति

0: स्थानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Tanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and armed

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम विवरण। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2026 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 बजे से 11 बजे तक और 11:10 से मैच की समाप्ति। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:15 पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे। 12:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम होगा, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी मोहिनी श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत और परिचर्चा होगी सामाजिक कुरीतियां टोना टोटका। प्रतिभागी होंगी माधुरी श्रीवास्तव, रेखा सिंह और सुशीला देवी। 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 4:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 5:15 पर युवजन का अपना कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में लहरी लाल जी यादव और साथी के स्वर में लोकगीत के अलावा मेरी खेती मेरी बात में किसान चर्चा होगी। किसान होगी ज्ञान सिंह और हिच लाल। साथ 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा काव्य कौमुदी। कवि होंगे अभिषेक किशोर और प्रीता वाजपेयी। 7:45 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे अनिल कुमार। इनके गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। 9:30 कहकशा कार्यक्रम होगा जो कि गज

पर आधारित होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग वृंदावनी सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग वृंदावनी सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की आनंदो चटर्जी ने और बांसुरी पर रूपक कुलकर्णी ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आजकल हम सब बड़े ही आधुनिक हो गए हैं। जैसे जैसे हम लोग के पास नई नई सुविधाएं आती जा रही हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को एक मजाक भी बना दिया है। आप सोचेंगे ये कौन सी बात है भाई, सुविधाएं जब ज़्यादा हो जाती हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो जीवन तो सुखद और आरामदायक हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, हमारी ज़िंदगी का एक मजाक सा बन गया है। जानते हैं कैसे? हमारे मोबाइल में हज़ारों नंबर होते हैं, लेकिन परेशानी में किसे कॉल करना है ये सोचने में वक्त लग जाता है। कनेक्शन तो बढ़ गए हैं पर रिश्ते नहीं। बात बिल्कुल सच्ची और खरी है। अब आपको वही याद आएगा जो सच में आपके साथ हो, वरना तो बातचीत करने वाले सहकर्मी हैं आपके पास, रिश्तेदार हैं, लेकिन सच में कौन है ये आपको सोचना पड़ता है। क्योंकि वक्त ही कुछ ऐसा है, जब आप पे कोई ऐसा वक्त आता है जिस समय आपको ज़रूरत होती है किसी की, तो उस समय आपको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो सलाह देने वालों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन साथ खड़े होने वालों की संख्या इक्की दुक्की रह जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में हमारे साथ हैं। इसीलिए कहा गया है कि आजकल की दुनिया में हर चीज़ की कीमत है। लोग घर तो खरीद लेते हैं मगर सुकून नहीं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं मगर संतोष नहीं, हजारों लोगों से जुड़ जाते हैं पर अपना कोई नहीं मिलता। फिर कहते हैं जीवन में कुछ कमी है। कमी चीज़ों की नहीं, कमी है आपके अंदर के सुकून की, कमी है उन लोगों की जो सच में आपके साथ है। तो भाई, हम तो आपके साथ हैं, तभी तो ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं जिसका नाम है आपकी पसंद। तो चलते हैं पहले गाने की ओर। बड़ा ही मधुर गाना है, फिल्म का नाम है ABC 2 और इस गाने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, गोविंदपुरा से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के अन्य सदस्य, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

तो दोस्तों बात ये चल रही है कि आज के इस अत्याधुनिक जीवन में हमने क्या खोया क्या पाया, हम खुद कहाँ पर हैं। सुविधाएं बहुत हैं मगर सुकून नहीं है। कहते हैं ना कि बदले तो हम हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि संडे का इंतज़ार करते थे कि कब संडे आएगा, कब हम घूमने जाएंगे, कब हम अपने मनपसंद चीज़ें बनाएंगे। अब छुट्टी में सोचते हैं कि संडे आ गया है, काम क्या क्या बाकी हैं। किसी को अपना मोबाइल ठीक कराना है, किसी को अपनी मिक्सी ठीक करानी है, किसी ने एसी की सर्विसिंग करानी है, तो संडे हमारा कामों में निकल जाता है। और पहले सुनते थे हम लोग दादी की कहानी, जिनको सुनते सुनते हम एक अच्छी मीठी नींद में पहुंच जाते थे। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मोबाइल की रोशनी में अपनी नींद ढूंढते हैं, क्योंकि आलम तो ये हो गया है कि बिना मोबाइल चलाए रात को नींद भी नहीं आती। और हम कहते हैं कि ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। अरे भाई, ज़िंदगी तो वही है, हमने अपने इर्द गिर्द ये जो झूठी दुनिया बना ली है कि इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, उससे निकलने की ज़रूरत है। और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है लव। भाई क्या हो गया है, हमारे श्रोताओं ने आज एक से बढ़कर एक गाने चुने हैं। गाने बहुत मशहूर नहीं हैं लेकिन मधुर बहुत हैं। तो इस फिल्म के गाने की

फरमाइश हमें की है, सहारनपुर जनकपुरी से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो, सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि, भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल अजित और नंदिनी, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 800-492-6250, 800-492-6250। और अगले गीत की फरमाइश की है दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, पंकज, सीमा, काजल, तन्वी, सोनी, लोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, बरकाकाना से शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहानी, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। और गीत आ रहा है, फिल्म का नाम है चलते चलते। और इस गीत को सुनवाने से पहले कुछ बातें भी हो जाए, तो गीत सुनवाने से पहले हम आते हैं अपने विषय पर। और विषय चल रहा है आधुनिकता की दौड़ में खोया हमारा सुकून। तो दोस्तों, बचपन में पहले हम लोग मिट्टी से खेलते थे, माँ डांटती रहती थी लेकिन मिट्टी में लौटते रहते थे, मिट्टी अपने मुंह में लगाते थे और कुछ शैतान बच्चे तो खा भी लेते थे। लेकिन आजकल का बचपन आप देखिए तो वो नन्ही नन्ही उंगलियां जो हैं स्क्रीन पे चल रही हैं, इसको स्क्रॉल करती रहती हैं, रील्स देखती रहती हैं। और पहले हमारी माँ खाना खिलाने के लिए बुलाती थी, अब आती हैं पहले मोबाइल छीनती हैं फिर खाना खिलाती हैं। लेकिन कभी कभी आज के दौर में ये भी हो रहा है कि माँ बाप को खाना खिलाने के लिए बच्चों को पहले मोबाइल में उनके मनपसंद कार्टून लगाने पड़ते हैं, तब जाके बच्चे मुँह खोलते हैं खाना खाने के लिए। इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है बच्चों को खाना खिलाने में। खिलौने अब बदल गए हैं, बचपन धीमे धीमे गायब हो गया है। तो इसे कहते हैं ना, आधुनिकता ने हमारा बहुत कुछ छीना भी है। तो देखिए ना, बचपन की वो खूबसूरत यादें जो थी वो आज के दौर में किस तरह की यादें बन गई हैं। तो पहले चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, चलते चलते फिल्म का ये गाना लीजिए, सुनिए।

अर्ज किया है। शिकायतें बहुत थीं, शिकायतें बहुत थीं, पर मैंने खामोश रहना सीख लिया। तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे ही दूर रहना सीख लिया। तुम मसरूफ हो अपनी महफिलों में, ये जानते हैं हम, इसलिए मैंने भी अब तुम्हारी दुनिया में दस्तक देना छोड़ दिया। लेकिन एक गाना जो है वो दस्तक दे रहा है कि आपकी पसंद कार्यक्रम में कब हमारा नंबर आएगा। ये देखिए, ये आ गया है आपकी पसंद का ये गाना। राजनीति और इस फिल्म के गाने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत और गुरु शब्द सिंह। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। तो चलिए सुनते हैं राजनीति फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी।

0: आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इस सिलसिले में शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के दरमियान बगैर रिजर्वेशन वाली इम्तहान खसूसी 2 ट्रेनें चला रहा है। इस ट्रेन में 12 बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे होंगे। रियासती हुकूमत ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के इल्ज़ाम की जांच करने वाली खसूसी तफ्तीश टीम SIT को मजीद 15 दिन की मोहलत दी है। 15 जून को तश्कील दी गई इस SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आखिरी तारीख 30 जून को ख़त्म हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब बहने अपना कार्यक्रम सुनेंगी पनघट।

0: पनघट कार्यक्रम सुनाए बैठी सब श्रोता बहनी हरन के चंपा और
1: जमुना बहनी के
0: राम राम।
1: और बतावा चंपा, घरे दुआरे का का हाल चाल बा?
0: जमुना बहनी, घरे दुआरे का हाल चाल तो सब ठीक है।
1: हाँ हाँ।
0: मुना का बताए जमुना बहनी?
1: का बहनी का
0: आज ते गर्मी बाए की पूछा ना।
1: हाँ
0: हाँ। दऊ राजा कतहु बरसे था इन।
1: हाँ हाँ।
0: और कतहु ऐसा लागत है ना कि लोटा में पानी भर के छिड़क देते हैं।
1: सही कहा तो,
0: और जब
1: ऐसा लगा था कि मक्का में पानी ले रहा था, रचके से छिचकार देते।
0: हाँ, और जब तक खूब बरसिए ना तब तक ये अपन धरती जुड़ाई ना।
1: बिल्कुल सही कहो था जॉन बटे चंपा, कि जब थोड़ा थोड़ा पानी बरसत है ना, तो ऐसा लागत है कि जैसे जमीनिया में से आज निकलत है। पर किहा का जा सकत है चंपा? अब देखा एक कहावत बटे ना कि भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। अब जब देखा बिना उनके चले एक पाती ना हिले वाली।
0: बिल्कुल सही कहा तू बनी।
1: जब उनका जहाँ चले, अब देखा कतों लोग कहा थे ना भगवानों दुई रंग हो गया है। कतो जौन बाटे खूब पानी बरसावत है,
0: धूप कह देते हैं,
1: कतो धूप कह देते हैं, कतो मनाई ऐसे बदरी घेरता है और ऐसे ऊपर मनाई ताकत है, पता चला बादर दूर दूरिया दूरिया से चला जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तू बहनी। और देखा जमुना बहनी, कबू कबू ना तो ऐसा लागत है कि कहाँ चला जाए कि मन के थोड़ा शांति मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जमुना बहनी इस समय देखा खेत कियारी काम भी बढ़िया है।
1: अरे पूछा माँ बहनी की लोग देखा खेते में जौन बटे बेहन डाल डाल के और वहीं ऊपर ताकत है कि कैसो भगवान पानी बरसे। अब देखा चंपा कि ट्यूबवेल से पंपिंग से कितना और समरसेबुल से कितना भी पानी जौन बा खेते में भरा जाए, मूल जौन बा जेकर उनकर पानी तो उन्हीं का पानी दऊ राजा का होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: पानी अथाह होता है, ओका कोनो मोल नहीं बटे।
0: बिल्कुल। और देखा जमुना बहनी, हम तो यही का किसान भैया हरन से बहनी हरन से कि वो सब उदास ना हुए।
1: हाँ हाँ।
0: चिंता ना करें और खुश रहे।
1: हाँ।
0: दऊ राजा बरसिए जरूर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सबर के फल मीठा होता
1: है। सबर का फल मीठा होता है।
0: सबर रखा है।
1: हाँ, सबर करें। अब देखा समय तो देखा आइन गया बटे और पानी बरस भर करी है, लेकिन थोड़ा सा भग भैया बहनी हरे हमार बस थोड़ा सा इंतजार करें। हाँ, कि दऊ राजा पानी जौन बरस भर करी है।
0: देखा जमुना बहनी।
1: हाँ।
0: खुशी से हमें एक चीज आवत है, कहानी याद आवत है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: कि एक व्यक्ति रहा।
1: हाँ, हाँ।
0: वो हमेशा दुखी रहत रहा।
1: अच्छा।
0: उका लागत रहा कि उसके पास कुछ नहीं बा।
1: हाँ, हाँ।
0: तो काभवा की एक बार ऐसा जाता है रास्ते से।
1: हाँ, हाँ।
0: गदेल रहा नान के।
1: अच्छा,
0: खेलत रहा।
1: अच्छा। हाँ। खेलत रहा
0: तो का देखिस कहा तो उके पास गए गदेल के पास।
1: हाँ, हाँ,
0: व्यक्ति जोन रहा।
1: हाँ, हाँ।
0: तो पूछा तू तो का इतना खुश कैसे है, तेरे पास देखा थी कोनो खिलौना ना आई बा? हाँ। ऐसा कुछ सामान इधर उधर पड़ा सामान लेके
1: लड़किया खेलत रहा,
0: टूटा फूटा सामान या गिट्टी उट्टी लेके से खेलत रहा। देख के वो कहा तू इतना खुश कैसे है यार? तू कहा लड़का जोन रहा गदेल छोट, कहा कि खुश होए करती कोनो बड़ा चीज के ना ही जरूरत होता, कि कुछ हमें बड़ा रहा है, अच्छा अच्छा खिलौना रहा है, बढ़िया बढ़िया।

0: हाँ
1: वही।
0: तब हम खुश होए, खुश होए बड़े कुछ होए वही में, अगर आदमी खेलत बा खात बा वही से खुश रहा है
1: बिल्कुल
0: तो मन अपन एकदम खुश हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनत इत तू सही कहूँ जौन बा चंपा, कि आदमी के जरूरी नहीं बा कि हाँ बहुत कुछ रहे तब है वो खुश रहे। आदमी अगर चाहे तो छोटी छोटी चीज में खुशी पाई सकत है,
0: हाँ ढूंढ सकत है उन्हें खुशी।
1: हाँ ढूंढ सकत है।
0: और जो व्यक्ति रहा, जब वो लड़का इतना बात कहीस तू कहीस आज से हम दुखी ना रहे, वो
1: हाँ
0: दूसरे देखे ना कि फलाने तो इनके पास इतना सामान भी बहुत खुश हुई है, इना
1: हाँ
0: जाने अगर वो खुश हैं तो, अगर वो धन से खुश हैं लेकिन शरीर से वे खुश नहीं रही
1: खुश
0: हैं।
1: नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही कहो। और चंपा तो जब ये सब हम सब बात कही करत है तो हम सोचा कि कसना जौन बा आज की बात में ये छोटी छोटी खुशियों का महत्व हो, तो चलो एकरे बारे में हम सब बहनियर से बतिया ले जाए। काहे कि देखा केवल हम तू या और बहनी हरे हैं तो ई नाई बाटे कि सबके संगे ही समस्या बा कि जौन बाटे कहती अरे हमारे पास ई नाई बा ऊ नाई बा, अगर ये होते तो हम खुश रही, तो हमारे पास
0: हाँ
1: मैंने कहे कि मतलब कि मैंने कुछ ना कुछ कमी खोजत रहती।
0: बिल्कुल
1: तो देखा चंपा छोटी छोटी खुशियों का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। हाँ,
0: बिल्कुल।
1: और अक्सर लोग देखा बड़ी सफलता अधिक धन या कोनो विशेष उपलब्धि के कारण ही खुशी का कारण मानत हैं,
0: बिल्कुल
1: जौन की वास्तव में देखा जाए तो जीवन का जौन चंपा सच्ची खुशी होत है वो रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभवों में छिपी होत है। और
0: बिल्कुल
1: ये छोटी खुशियां हमारे मन के शांति देथिन, तनाव कम करथिन और जीवन के अधिक सुंदर और संतुलित बनावथिन।
0: बिल्कुल सही कहा तू जमुना बहनी। देखा सुबह के जो ताजी हवा होत है उनमें टहलब, और परिवार के साथ बैठ के
1: भोजन
0: भोजन
1: करो।
0: करब, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करब, या फिर कोनो अपन मित्र हो दोस्त हो
1: जैसे हम तू
0: उस,
1: भाई अपने दिल का
0: हाँ
1: बात कह
0: दिल के
1: लेते
0: बात खुल के
1: कह
0: एकदम बात करा,
1: लेते।
0: और फिर अब बच्चन के चेहरा पे मुस्कान देख ले, और अपन मनपसंद गाना सुने। और जब ऐसा देखो बारिश का मौसम है ना, तो वो फुहारा के बीच में भीग के थोड़ा थोड़ा आनंद ले,
1: आनंद लें,
0: और
1: फिर
0: कोनो
1: खूब फर्स्ट क्लास जौन बाटे पकौड़ी खाएं चाय
0: बिल्कुल। और
1: पिएं।
0: देखा रास्ता चलत है, या फिर अगली बगली है कोनो बुजुर्ग है बूढ़ा है, फिर कोई युवा भी
1: जरूरतमंद
0: है जरूरतमंद के है, ओकर थोड़ा सा
1: सहायता
0: सहायता कर दे, तो कितना मन के खुशी मिलत है
1: बहुत
0: अपने।
1: खुशी मिलत है। और जानत हूँ चंपा ये सब छोटी छोटी बातें मन के गहरा संतोष देतीन,
0: बिल्कुल।
1: और इनकर आर्थिक मूल्य भले ही न होए मूल मानसिक और भावात्मक मूल्य बहुत अधिक होते। चंपा
0: बिल्कुल सही
1: देखा
0: कहा
1: चंपा
0: तूने।
1: आज के तेज रफ्तार जीवन शैली में लोग भविष्य के बड़ी उपलब्धियों के पीछे इतना
0: भागत है।
1: ज्यादा माने भागत हैं, इतना ज्यादा व्यस्त हो गया हैं कि वो अपने वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों के जौन बार नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब एक परिणाम देखा तो चंपा का होता है कि सफलता मिले के बाद भी जीवन जैसे उनकर
0: अधूरा
1: अधूरा
0: अधूरा
1: और
0: हो जाए।
1: तनावपूर्ण महसूस उनके होता है। अगर आदमी चाहे ना चंपा
0: हाँ
1: तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ सकत है।
0: बिल्कुल सही कहा तू। और ये जो छोटी छोटी खुशी होता है हमारे रिश्ता के और मजबूत बनावत है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: परिवार के साथ बितावा का जो समय होता है, केहू के से हाल चाल पूछ ले, और केहू के प्रशंसा कह दे,
1: हाँ, माने भले वो
0: हाँ
1: आदमी
0: बिना
1: प्रशंसा लायक
0: स्वार्थवश,
1: ना रहे
0: हाँ
1: लेकिन नहीं नहीं तू बहुत अच्छा लगत है।
0: बिना स्वार्थवश, या फिर या छोटे छोटे जो कार्य होते हैं प्रेम और विश्वास के, विश्वास जो होते हैं का होता है मैं उका
1: अपना
0: अपना
1: अपन
0: अपन बढ़ावत हो में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एकरे अलावा छोटी छोटी खुशियां चंपा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं और ये चिंता तनाव और निराशा के भी दूर
0: दूर
1: करत
0: करत
1: हैं।
0: है। और देखा जमुना बहनी, जीवन केवल बड़ी उपलब्धि के नाम नहीं होते है, बल्कि हर दिन मिलने वाला जो छोटा छोटा सुखद अनुभव होता है ओकरु संग्रह होता
1: संग्रह
0: है।
1: होता। और बिल्कुल, और जानत हूँ चंपा जी व्यक्ति इन छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझत है वही
0: हाँ
1: सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेते है
0: बिल्कुल।
1: ना। तो अगर भैया बहनी अरे चाहें तो जौन बा कितना भी उनके पास कष्ट हो लेकिन अगर वो चाहें तो छोटी छोटी चीजन में बहुत कुछ पाई
0: और
1: सकत
0: जब
1: हैं।
0: खुश रही है तो उनके अंदर तनाव नहीं आई,
1: तनाव ना
0: और
1: है, अगर
0: तनाव
1: तनाव
0: नहीं
1: है तो कोनो
0: तो उनको
1: बीमारी ना
0: बीमारी नहीं
1: है।
0: हुई,
1: हाँ,
0: अगर आदमी तनाव लेता तो बीमारी भी उसका घेर लेता
1: घेर
0: है।
1: लेता है। तो अगर जैसे वो की बीमारी भी बा तो वो ये कह दे कि नहीं हम
0: हम लोग
1: बिल्कुल
0: कौन,
1: फिट है।
0: हाँ हम
1: हाँ,
0: खुश है
1: हम खुश
0: एकदम।
1: है, हमें कुछ नहीं बा। जैसे कि वो कहे कि नहीं का तुम्हारा तबीयत खराब बा का, नहीं नहीं तबीयत हमारा नहीं खराब बा, हम तो
0: हम तो एकदम
1: बिल्कुल
0: ठीक
1: सही
0: है।
1: है, हम तो टहरा थे घूमा थे खा थे पिया थे। तो यही में जौन बाटे यही सब खुशी होता छोटी छोटी। तो देखा
0: बिल्कुल।
1: बातचीत

0: जमुना बहनी तो
1: हाँ
0: इतना नीक हमारे गाँव नहीं सुना, हमारा एकदम मन खुश हो गए।
1: हम देखत रहे कि तू थोड़ा सा जैसे झूमत रहू,
0: हाँ
1: तो हमें लगा कि जौन बा हमरे चंपा के जौन बा गौ नहीं लगा, तो एकदम दिल से छू गए।
0: बिल्कुल
1: तो देखा गौ नहीं तो तुम्हें अच्छी लगी।
0: हाँ
1: और देखा एक बात और कहे चाहत रहे कि
0: का
1: देखा अपने सबके समाज में तरह तरह का कुरीति है। तो ओमे एक कुरीति है और टोना टुटका।
0: हाँ
1: जैसे अगर लड़किया बीमार हो गया बा तो लोग कहें कि लागत हमरे गदेलवा के क्यों टोना कर दिए, क्यों
0: हाँ
1: नजर
0: नजर
1: कर
0: लग
1: दिए।
0: गए।
1: हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं होते चंपा भाई, कोनो बीमारी होता तो आदमी लड़किया बीमार होता है ना, आदमी बीमार होता है तो क्यों के टोना टुटका से थोड़ी ना आदमी बीमार हो जाता है। तो
0: बिल्कुल
1: वही से संबंधित एक आज अपने कार्यक्रम में परिचर्चा है, सामाजिक कुरीतियाँ टोना टुटका। और भागीदार बहनी अरे माधुरी श्रीवास्तव, रेखा सिंह और सुशीला देवी, तो चलो सुन लिया जाए।
0: चला सुन लिया जाए।
2: देखा बहनी आपन समाज में कईयों तरह के लोग रहते हैं, कछु पढ़े लिखे बा, कछु ऐसे लोग रहते हैं जौन की समाज में होवे वाले कईयों तरह की कुरीति फैली बा उमा विश्वास करते हैं, जैसे कि कबहू परेशानी में पड़ जाते हैं। तो सामाजिक कुरीति में टोना टोटका का बा, कैसे समाज में फैला बा, इसे कैसे नुकसान बा और कैसे इनका दूर किया जा सकत है, तो यही बतावे के बदे आपन प्रघटे पर बहनी आईन हैं, माधुरी श्रीवास्तव बहनी, रेखा सिंह बहनी। तो बहनी हरिन का सबसे पहले तो हम प्रघटे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो रेखा सिंह बहनी आप टोना टटका के बारे में का बतावे चाहते हैं बताऊं।
3: बहनों आज हम वैज्ञानिक युग में रहते हैं, यदि हम अपने पुराने समाज के बारे में सोचें तो ना तो पढ़ाई के साधन थे ना ही संचार के साधन। ऐसे में किसी को कोई समाचार भेजना हो तो महीनों हफ्तों लग जाते थे। और बहनों एक कहावत है कि बुराई आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। आज हम नारियां प्रगतिशील तो हैं, नए विचारों वाली भी हैं और नए समाज में भी रह रहे हैं, और जो पिछड़ा है वह अशिक्षित भी है। तो यह हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास और पूर्वाग्रहों में आज भी जकड़े हुए हैं।
4: बिल्कुल ठीक कहें रेखा बहनी। और देखा अंधविश्वास इस शब्द ऐसा बाजकर विचार किया जाए तो जनाई पड़ी बहनी हरन के कि अंधा विश्वास, माना कि आंख होत भय भी, समझ होत भय भी, आंखी बंद कई के आंखी मूंद के अगर विश्वास कई ले कि हाँ यही ठीक बा, दूसर कोई कहात बा यही ठीक बा, तो वही के अंधा विश्वास कहा था है कि नहीं।
1: अच्छा माधुरी बहनी आप जो नहीं कहत हैं कि जौन बा आंख मूंद के जौन बा विश्वास करब यही अंधविश्वास होता है, ती अंधविश्वास के अंतर्गत ही का आवत है एकरे बारे में हमके जौन बा रेखा बहनी आप बतावें।
3: बहनों टोना टोटका से के नाम से हम सभी परिचित हैं, मगर इसको कई प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे सड़क के बीचों बीच में पूजा पाठ कर देते हैं लोग,
1: अच्छा,
3: फूल उतार कर डाल देते हैं, कभी कभी बल चढ़ा देते हैं, झाड़ फूक करते हैं, तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हुए देखा गया है। बहनों कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर हमें संतान नहीं हो रही है तो दूसरे को बच्चों को हम बलि चढ़ा देते हैं, सच में उनके माँ बाप से पूछे उनके दिल पर क्या बीतती है। इस तरह की कुरीतियां अंधविश्वास हमें कहाँ ले जाएंगी यह विचारणीय प्रश्न है।
2: रेखा सिंह मैंने देखा जो तू बतायो ना कि अपन संतान नहीं हो तो दूसरे की मतलब बच्चन कलाए के बलि दे देते हैं। देखा कहो दिमाग से सोचा कि अगर यही स्थित अगर हमरे लड़का का कोनो ले जाए कि बल दे दे तो हमरे ऊपर का बीती। अगर बहनी हरे देखा इतना तो जागरूक है, इतना तो बहनी समझदार है, इतना अंधविश्वास मनना पड़े, इतना दूसरे के कहे पे ना पड़े कि देखा कोनो दूसरे के कोखे उतार दें, कोखे का सुनी कह दें। ये माँ अपनी बहनी हरे के देखा सोच विचार के अपने अपने बुद्धि विवेक से, जैसे कि माधुरी बहने पहले कह चुकी हैं, ओका सोच समझ के तब कोनो देखा कदम जो है आगे बढ़ावा।
4: देखा बहनी हम इहो कहे चाहब कि बलि परंपरा तो अंधविश्वास है ये है ओके।

0: लो, जैसे कि आज का हमारा खास विषय है टोना टोटका,
1: हम्म,
0: है ना। तो जैसे लड़का बचपन से ना ही बोलत, कोनो बच्चा पैदा भा, अब ओका कहीं पहले तो कहीं बोले नहीं पावत, कोनो तरह तरह के नाम रख देते हैं ओका, कोनो तरह तरह के उपाधि से बुलावे लगत हैं। और उसके बाद जो है फिर कहीं दो चार बूढ़ पुरनिया कहें, अरे बच्चा इतना बड़ा होगा अभी बोलबे ना करते, अच्छा ऐसा करा कि तनी गिलास में पानी ले लो, ओका चाकू से काट दा, और काट के फिर एक पियाई दा, तो पियाई दे तो लड़का बोले लगे।
1: अच्छा देखो वादी बनी, आप जो
0: हाँ
1: नहीं कहते हैं कि चाकू से काट के पिया दे, देखा जाता है कि जब से लड़कियां ना ही बोला था तो बहुत लोग कहीं ये बहनी तोहरे यहाँ दे जो सुग्गा जी आए हो, और जैसे वो टर टर बोला था, अगर जौन पर सुग्गा का झूठ अगर तू एक खिया देबू तो यह तोहार बिटुआ वैसे लिया
0: हाँ बिल्कुल। तो देखा इस तरह के और भी समस्या है, जैसे अब क्योंकि बुखार आएगा, हाँ, या लड़का बहुत रोवत है,
1: है। हाँ
0: तो मान लो को पेट में दर्द ही होता,
1: बिल्कुल
0: अब मगर उसका कोई समझ तो पावत नहीं क्योंकि लड़का बोल नहीं पावत है, नान के बच्चा बा तो बोल नहीं पावत
1: तो
0: है।
1: हाँ, तो जाना तू अब वो नहीं बोल पावता, तो वो जौन बाटे सोचत हैं कि जौन बा लागत है जौन कि हमरे घरे जौन बा कि फलनवा मनाई आई रहा और खूब खिलाया सुलाया चला, लागत हमने उसका
0: नजरिया
1: नजर
0: आएगा,
1: लगाई दी।
0: नजरिया आएगा।
1: हाँ
0: हाँ आओ के उपाय करे लगी हैं, कहूँ
1: हाँ
0: जल उतारे लगी हैं, कहूँ मिर्चा सुलगावे लगी हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: कहूँ चोकर उतारे लगी हैं। और शहर में देखा जैसे कि कहा थे बहनी कहन कि खाली गांवन में ही
1: ना
0: समस्या
1: ना
0: है,
1: ना ना
0: तो
1: ना।
0: ऐसा नहीं ना कि शहर में भी उसे बढ़ के लोग आगे बढ़ के दो चार हाथ आगे
1: अरे
0: चलत
1: अब
0: हैं।
1: देखा अपने सब की, आप गांवन में तो देखा जोन बा कतौ चकरोट बाटे कतौ जोन बा ऐसे खड़ंजा ईटा बिछावा मुला, देखा अपने शहरन में देखा जाता है माधुरी बहनी की जगह जगह देखा चौराहा हो, तो बहनी हरे कहीं कि अरे जो बहनी ज्यादा परेशान हो गई कि जरूरत नहीं बाटे ऐसा करे, खिलोटा में जल ले लें ओमे जोन बा फूल माला डाल दे, तेल डाल दे और लौंग डाल दे, हल्दी डाल दे, ले जाए चौराहा पे जोन बा डाल देबू, अगर जोन बा क्यों डांक उग जाए तो हर जोन बा लड़किया उसे सही हो जाए। हाँ
0: आ कहूँ रुई की बाती जलई है कहीं
1: हाँ
0: एक देखत रहा एक टक, है
1: हाँ
0: ना, जब तक रुई की बाती से तेल टपकत
1: टपकी
0: रहे तब तक
1: वो
0: नजर के प्रभाव धीरे धीरे
1: रे
0: वही
1: कम हो
0: तरह से
1: जाए।
0: कम हो
1: हाँ
0: जाए।
1: हाँ हाँ
0: हाँ और शहर में जाना थे, और बड़ी हंसी आवत थी सुन के बहनी कि शहर में जैसे कहीं चमड़ा का जूता लावा, चमड़ा का जूता लावा, और जूता घुमा के ओका पटक दई है चार दाई, तरह तरह के परंपरा मने मन में गांठ बांधे हैं, जौन की बहनी हरन के आगे ना ही
1: अब देखा
0: बढ़ाव
1: एक
0: देन
1: तो से
0: है।
1: अब एक कहानी और हम तो से बताओ थी अपने बगले का कि जौन बा बहनी एक जनी का बियाह रहा। हाँ
0: हाँ
1: और जौन बा जाना तो शादी पड़ा रहा, खात पियत ना ही रहीन, और जब वो अपने ससुरे गईन और सहेली वहेली आ रही सब भेटी नकवारिन, और जब अपने घरे गई बेचारी खाए पीनाई बीमारी हो गई, तो अब उनके घरे वाले का कहते हैं कि लागत तो उन्होंने भेटे बकवारे रहे यही सब
0: ला
1: बीमारी हो गई। हाँ
0: होइगा। सच बहनों विश्वास नहीं होता कि हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं। सच माने तो इस टोना टोटका जैसी बातों का कोई आधार ही नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक पिछड़ापन और पूर्वाग्रह है जो हमें कुरीतियों की तरफ हिले जा रहा है। यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है। अगर बहनों हम देखें तो मुख्य रूप से ये गांव देहात में ज्यादा प्रचलित है, मगर हमारी माधुरी बहन जैसे बता रही है कि शहर में भी लोग इसको मानते हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कहीं गांव मोहल्ले में लोग पूजा पाठ किए रहते सड़क पे, और ज्यादातर अशिक्षित लोग इसका मतलब पालन करते हैं, और कभी कभी यह भी देखते हैं कि हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग कुछ बातों में विश्वास करते हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा लेते
1: बहनी
0: हैं।
1: देखा आप जोन रेखा बहनी कहत हैं कि जोन बाटे जोन बा जोन बहनी अशिक्षित हैं कहत हैं, तो ऐसा बात नहीं बा, यहाँ जोन लोग पढ़े लिखे हैं उन्हों सब भी जोन बा
0: कबो
1: ही
0: कबो
1: बहुत ही ज्यादा
0: देख के
1: अहम
0: सुन
1: भूमिका
0: के
1: निभावत
0: हाँ।
1: हैं।
0: और
1: समझ कर
0: देखा एक कारण बहुत बड़ा एक करीबा कि बहनी हरे आजकल टीवी बहुत देखत
1: लिया
0: है, और टीवी में देखा धारावाहिक भी ऐसा ऐसा आवत है, कहूँ भुताहा सीरियल देखत रही है, अब मन में बैठ गए डर, है ना। अब वो मन जो दिखावत है कि तांत्रिक के पास जा तो ये मन जा तो हुआ जा तो वो नदी के तो वो पहाड़ के तीरे, तो ऐसा जोन बहनी देखा तो वही दिमाग में नाचत रहा है, और वही छाया बन के उनका परेशान करत है। अब कहिए कि ला हमरे घरे भूत लागे लगा, तो हमरे घरे चुड़ैल लागे लगा, तो हमरे घरे डायन लागे लगे, दुनिया के पचड़ा जो है खाली जिनके दिमाग के उपज है और कछु ना है।
1: अरे माधुरी बहनी देखा ऐसे होते हैं कि कबो कबो देखा बुखार जो है दिमागे में चढ़ जाते हैं,
0: हाँ
1: और दिमागे में चढ़े से ये होते हैं कि लड़का हो चाहे सयान हो चाहे बूढ़
0: भाई
1: पुरनिया
0: बुखार तो
1: हो
0: सभी के
1: है
0: होते
1: कि नहीं
0: हैं।
1: जरूर, तो बनी देखा बुखार के कारण जो है वो
2: उल्टा सीधा पकड़े लगा थे, कबो कहा थे कि देखा हमका वो दिखात है, वो पकड़त है और हमारे को सामान उठा ले जात है। तो जो है घरे में जो बूढ़ पुरानी हो, चाहे देखा गांव में हो चाहे शहर में हो, कबो कबो ऐसे हो जाते कि नहीं देखा एक को पकड़ लिए से, और पकड़े से जो है देखा उल्टा सीधा ही बकत है।
0: देखा मैंने एकर कारण अगर देखा पढ़े लिखे मनोवैज्ञानिकन का ही कहना है मैन कि हमारे दिमाग के तीन

0: स्तर होत है, चेतन स्तर अलग होत है, अर्धचेतन स्तर अलग होत है ना, और अचेतन स्तर अलग होत है। तो तीनों जब हम सभी जागृत रहे थे, तो जागृत अवस्था में जो है हमार बातचीत हमार व्यवहार कुछ और होत है, और अगर जब हम सोवत रहे थे तो उकर व्यवहार बातचीत सब अचेतन और अर्धचेतन से संचालित होते। तो जितना चीज हम देखे सुने रहे थे वो सब कहीं ना कहीं हमारे याददाश्त में रहा था, और जब बुखार चढ़ा दिमाग में तो वह चीज बड़बड़ बड़बड़ हो के निकले लगा। तो एक बहनी हरन के समझे के पड़ी कि जौन कारण है वो कारण के पीछे ओका विचार करें, और विचार करके तब ओके सोच समझ से ही ओका निदान करें।
1: नहीं, अच्छा, खुद आजमा कर देखें भाई, अगर कोई बच्चा बीमार है तो हम एक बार उसको तंत्र मंत्र में ले जाए, मगर डॉक्टर के पास भी ले जाए, हम ये देखें कि कहाँ से उसका फायदा हो रहा है।
2: अच्छा ठीक है बहनी, लेकिन ये तो बात आप हम सब इतनी बात किया, लेकिन ये सबके जौन बा विचार पर हमें सबके करे के पड़े कि आखिर एक निदान का हो, का चीज हम ऐसा करी कि एपर जौन रोक लगे।
0: बिल्कुल, ये तो काम के बात कहो। देखा बहनी ऐसा बाकी कारण समझ ले तो निदानो हो जाए।
2: बिल्कुल,
0: अब जैसे हम कहा कि भाई टीवी कम देखें, तो भले कम ना देखें देखें, मगर टीवी में बहुत तरह की जानकारी दी जाते हैं, कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रम भी दिए जाते हैं, उनमें तरह तरह के जड़ी बूटी बताई जाती, तरह तरह के उपाय बतावा जाते कि भाई डॉक्टर के दिखावे बिना चिकित्सक के सलाह के कोनो काम न करें,
1: और हम दूसरों की बात में ना आए,
0: दूसरों के बात
1: जैसे कभी हमारे यहाँ कोई बात हो गई, किसी ने हमको बहला फुसला लिया, तो हम आत्मविश्वासी बने, समझदार बने, हम सोचे कि नहीं हमारी भलाई किसमें है, किस तरह से उस समस्या का निदान कर सकते हैं, तब हम इससे पार पा सकते हैं।
0: और एक लिए बहनी भय से निकले पड़े, भयभीत जो बहन हो जाती कि भाई अब हमारे यहाँ पीढ़ी से ही होतावतवा भाई, हमार दादी आजी यही करत आई हैं, अरे हमारे जमाने में ऐसा होत रहा ऐसा होत रहा, अब वही हम अपने लड़कन बच्चन के साथ करे लगे।
2: देखिए लेकिन माधुरी बहन, देखा जमाने की बात की आप जैसे कहते हैं कि हाँ जौन कहते रहे कि वह जमाने में होत रहा, लेकिन देखा जमाने जमाने की बात हो, लेकिन अब समय बदल चुका बा। अब देखा हमारे जौन बा घर में परिवार में देश समाज में सभी जौन बा धीरे धीरे पढ़ाई के पीछे जौन बा भागत हैं और पढ़ लिख के उनके अपन जौन बा सोच जौन बा काफी मजबूत करेगी पड़े।
0: और का अब देखा बहनी हरे मोबाइलो चलावत है, तो मोबाइल में अगर इंटरनेट की सुविधा है तो उनका अगर कोनो बच्चा के कुछ तकलीफ है तो इंटरनेट से भी खोज सकते हैं कि आखिर बीमारी के का तुरंत
1: और पढ़े लिखे नहीं है तो किसी से पूछ सकते हैं,
0: पूछो सकते हैं। और ये तो कोनो बातें ना है ना कि हमारे यहाँ जमाने से होता हुआ तो आगे हो भाई, पहले टीवी नहीं रहा अब टीवी देखा जाता, पहले मोबाइल नहीं रहा मोबाइल चलावा जाता, पहले फ्रिज नहीं रहा तो घड़े से पानी पियत रहा, अब फ्रिज आएगे तो फ्रिज के पानी पिए लगा। तो परिवर्तन बदलाव तो समय की मांग है।
2: देखा कहे के मतलब ये बात है कि हमार बड़ा बुजुर्ग हैं, वो तब हमरे घरे के धुरी हैं, वो हमरे लिए अच्छा ही कहीं, लेकिन हमें ई जौन बा इस ई बात पे ज्यादा ध्यान देवे के जरूरत बाटे कि वो जो कहत हैं उनकर बात मानी, लेकिन ओकरे बाद भी हम जौन बा हट की जौन बा आपन जौन बा मन आपन विचार जौन बाटे अपने विचार से सोचिए, वो हम अपन कदम आगे बढ़ाई।
1: और मेरा तो अपनी बहनों से ये कहना है कि हम किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह मन में ना पाले, किसी के लिए कोई बात कोई कह देता है वो ऐसा है, कोई कह देता है वो कुलक्षिण है, कोई कहता है वो टोना टोटका करता है, तो उसको परखें, उसमें विश्वास ना करें।
3: विश्वास करें माधुरी बहन, और एक बात यू है कि अगर ये टोना टोटका है हाँ, तो वो तो अगर माना था तो चलो वो अपने हद तक ठीक है, मुला देखा अभी गांवन में भी जो है स्वास्थ्य केंद्र बा, तो एक बार वो ले जाए कि डॉक्टर का तो दिखा सका था।
0: बिल्कुल दिखा हाँ,
3: कि देखा हम ये तो दवा तो करते दवा कर ली, दुआ तो हम किया, दुआ से हमें लाभ नहीं मिला और लाभ के जगह पर नुकसान हुआ, तो अगर हमें डॉक्टर भैया हमका आसानी से मिलत है गांवन गांवन में एक सुविधा बा, तो भाई देखा हम इतना अनजान ना बने हाँ, कि जो उन्हें जो जो कोई बतावा थे वो हम विश्वास
0: हाँ, करें। देखा बहनी जौन टोना टोटका के बात है, कुरीति जो है ये ज्यादातर या तो बहनी हरे अपने बच्चन लड़कन के बारी आओ थे तबो के चक्कर में फेर में पड़ जाती, और या तो फिर उनकर कोनो बहुत बड़ा स्वार्थ होते तभी चक्कर।
1: और एक बात और, इससे बड़ा आर्थिक नुकसान भी है।
0: बिल्कुल,
1: वो कभी हम झाड़ फूक वाले के पास जाए तो कभी सोना मांगता है, कभी चांदी मांगता है, कभी तरह तरह की चीजें मांगता है, वो भी एक कलंक है।
2: बिल्कुल रेखा बहनी, आप कहा था ही ना कि जैसे सामान मांगत है तो जौन बा इतना तो जरूर आदमी का अपन विचार सोच रखे चाहे कि हाँ जौन ये आदमी जौन सही कहता था ये सही बाकी नहीं।

0: मिला के बनी देखा। कहे के बात यह है कि जौनी टोना टोटका है, अंधविश्वास है, एकर सामना करे के जरूरत है, समझदारी से, शिक्षा से,
1: आत्मविश्वास
0: निर्भीकता
1: से।
0: से, और स्वार्थ से ऊपर उठ के तनी अपने बारे में तो सोचें, अपने बारे में सोचे के साथ साथ सबके बारे में सोचें,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: तभी ही समाज से ई कुरीति के दूर किया जा सकत
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो देखा, रेखा सिंह बहने, माधुरी श्रीवास्तव बहने, हमारे पहनौती माएन और हमारे बहनी हरन का इतनी निक निक जानकारी दीन, एकरे बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा जमुना बहनी,
1: हाँ बहनी,
2: माधुरी श्रीवास्तव बहनी, रेखा सिंह बहनी, सुशीला देवी, रीता रानी बहनी, परिचर्चा के माध्यम से सामाजिक कुरीति और टोना टोटका के बारे में कितना बढ़िया से फरियाए फरियाए बताई। और देखा, हम सब भी अब ज्यादा इस सब में विश्वास विश्वास नहीं करब।
3: हाँ
2: हम
3: बिल्कुल,
2: सब भी कोनो दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास
3: डॉक्टर
2: तुरंत जाए।
3: के अगर हमारे सबके मन में कोनो भ्रांति
2: हाँ,
3: रही
2: कुछ
3: तो ओके अपने
2: लागत
3: मन
2: हमने
3: से,
2: का दिल कही होगी
3: हाँ,
2: बाटे
3: तो मन से बाहर निकाल के ओके
2: हाँ,
3: फिर डॉक्टर
2: डॉक्टर
3: के
2: के
3: पास
2: दिखाए।
3: जाए। तो देखा इतनी अच्छी जौन पर परिचर्चा जौन पर सुनी गई। तो अब चले एक ठे जौन बटे तराना फिल्म से जौन बा लता मंगेशकर जी की आवाज में एक गीत सुना जाए।
2: चला सुन लिया जाए।

0: हाँ वो चंपा,
1: हाँ जमुना बहनी,
0: गौ नहीं तो बड़ा बढ़िया जरूर
1: बिल्कुल
0: सुना ना।
1: जोरदार रही गौ नहीं।
0: हाँ गौ नहीं जोरदार रही। मुल्ला हम देखा था ही
1: हाँ
0: कि तू अपने बगले जो बोतल में का भर के लाए के बाटू।
1: अच्छा जब तू देख लिए है तो हम तुम्हें बता दे
0: तू छुपावे चाहत रहो लेकिन हम देख लिया।
1: कि हम का लाए बाटी।
0: हाँ हाँ
1: देखा हमारे गांव से आए रहा ढेर के जामुन।
0: अच्छा हाँ गर्मी में जामुन तो होते ही बैठे।
1: तो हम कहे इतना ढेर सारा जामुन हम का करी।
0: हाँ हाँ
1: तो हम कहा कि लाओ जामुन का शरबत बनाई ले।
0: अच्छा
1: तो हम वे बोतले में भर के तोरे परे लाए है।
0: अच्छा तो एक
1: हम कहे तुम्हें हम बताई फिर तुम्हें हम दे, लेकिन तू पहले देख ले
0: देख लो तो
1: तो
0: तू हमें
1: तू
0: बोतल अपन पकड़ाई दे और तू बतावा कि
1: हाँ,
0: जौन
1: तू पिया हम बताई दी कैसे
0: कैसे
1: बने।
0: बनाए रहो शरबत देकर। हाँ
1: हाँ तो
0: हाँ
1: देखा जमुना बनी सामग्री है एक
0: हाँ हाँ
1: जामुन ले लें 500 ग्राम
0: हाँ हाँ
1: और 4-5 बड़ा चम्मच चीनी ले लें स्वाद
0: अच्छा
1: के अनुसार, और जेका गुड़ खाए को वो
0: वो
1: गुड़ भी
0: गुड़
1: ले
0: ले ले।
1: सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: और 1 चम्मच काला नमक
0: अच्छा
1: और 1 चम्मच भुना जीरा।

0: पाउडर,
1: अच्छा,
0: एक ठू नींबू ले रहे,
1: हाँ,
0: उसका रस निकाल लें,
1: हाँ, हाँ,
0: और 3 से 4 गिलास ठंडा पानी,
1: अच्छा,
0: अब बर्फ का कुछ टुकड़ा ले लें,
1: ताकि उसमें और ठंडाई आए,
0: हाँ, और पुदीना की पत्ती ले लें, उसका सजावे करती
1: कापू का बात हो,
0: और देखा बनावे के तरीका एकर,
1: हाँ,
0: सबसे पहले जामुन के अच्छी तरह से धो लें,
1: अच्छा,
0: आप धोए के बाद हल्का सा उबाल लें, और उबाल के
1: हल्का भफाई दें जैसे,
0: हाँ, और उबाल के क्या करें, उसका मसल दे हाथे से, जैसे बीज अलगे हो जाए, गुदा अलगे हो जाए, हाँ, उसका गुदा के मिक्सर में पीस लें,
1: हाँ,
0: अब यहाँ चीनी या गुड़ जोन डाले को,
1: हाँ, हाँ,
0: डाल के,
1: हाँ, हाँ,
0: काला नमक, भुना जीरा, नींबू का रस मिला लें,
1: अच्छा अच्छा
0: फिर ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह मिला लें,
1: अच्छा,
0: चाहे तो एक छान भी सकते हैं,
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: अब एक गिलास में बर्फ डाल के, शरबत डाल के,
1: अच्छा,
0: ऊपर से पुदीना की पत्ती से सजाई के ठंडा ठंडा पिए,
1: हाँ,
0: अपने घर वालों के भी पिया में,
1: अब देखा
0: तू
1: तो
0: सब भी खुश हो जाइए,
1: हाँ,
0: अपन मन तो खुश हो पी के,
1: अब तू देखा बताओ था और हमारे मुंह में पानी आवा था, हम पिए तो ना ही है, लेकिन अब देखा जब हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाए तो हम पिए, लेकिन देखा ये जो तू बताऊ है जौन बटे पुदीना का जामुन का शरबत, तो एक ऐसे जौन बटे चंपा फायदा भी बहुत बा, इसमें कहा बा कि देखा ये शरीर के जौन बट ठंडक और ताजगी देता है,
0: बिल्कुल,
1: और एक साथ साथ पाचन क्रिया के बेहतर बनावे में बहुत सहायक होता है, ठीक है, और एक बाद एंटी ऑक्सीडेंट हुए के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता के ही समर्थन देता है, और अगर गर्मी में पानी की कमी अगर जैसे तो है महसूस होता ना,
0: हाँ,
1: तो ई जौन बा जी ताजगी दे वाला जौन बा ई पेय पदार्थ है,
0: बिल्कुल,
1: और आयरन और अन्य पोषक तत्वों का बहुत अच्छा ही
0: स्रोत
1: स्रोत
0: होता
1: है,
0: है,
1: हाँ, तो
0: बिल्कुल सही कहा
1: अगर
0: आपने,
1: गर्मी में जौन बा स्वाद और सेहत दोनों का आनंद लेवे के बाद,
0: हाँ,
1: तो घर पर बना ताजा जामुन का शरबत एक बेहतरीन विकल्प है,
0: बिल्कुल सही कहा थी मैंने,
1: तो जौन बटे देखा ये तो हो गए, तो अब हम सोचा थे कि अपने चलत चलत अपने बहनी रन के एक ही और निक के संगीत सुना दिया जाए तीसरी कसम से, तो गायिका आशा भोसले जी सुनावत हैं,
0: चला सुन लिया जाए।

0: जमुना
1: बहुत
0: बहनी
1: कैसा लगी?
0: बहुत नीक रही, एकदम मन खुश हो गया, हाथ पैर एकदम रुकत ना
1: हम देखत रहे कि तुहार हाथ पैर नाचत रहा। हाँ तो चला एक ठो जौन बाटे ये संदेश सुन लिया जाए।
0: चला सुन लिया जाए।
2: जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजे।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
2: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमार व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।
1: हाँ देखा चंपा।
0: हाँ
1: कि देखा संदेश गवा और बहनी भैया रे सुने हुई और उनके जौन अच्छा लगे ऊपर जौन बा अमल
0: करें
1: और संदेश भेजें। जे संदेश ना भेज सकत जे ईमेल ना भेज सकत
0: व्हाट्सएप से भेज सकल।
1: हाँ भेज सकत है। और देखा चंपा यह समय अगर कहा जाए तो दू दशा महीना बटे है ना, कभी पानी बरसता कभी पानी नहीं बरसता, कभी बहुत गर्मी बा कभी हाँ, हाँ। पानी के कारण उमस बा थोड़ा सा पानी बरसता, तो एमे जौन बा बहनी भैया रन के अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहे की जरूरत बा।
0: बिल्कुल।
1: और खाना पीना जौन बा एकदम ताजा सुपाच्य खाएं।
0: हाँ, ज्यादा तेल मसाला ना खाएं,
1: तेल मसाला ना खाएं, हरी साग सब्जी खाएं और तो जैसे पानी वाली चीजन पर ज्यादा जोर दें, कहे से कि अगर जौन बा बासी तेवासी खाई है तो उन्हें सबके नुकसान करे।
0: हाँ? बिल्कुल।
1: तो इसलिए जौन बटे भैया बहनी अरे अपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान
0: दें।
1: और देखा घड़ी सारा करता है विदा ले बिना, तो बहनी अरे से राम राम किया जाए।
0: राम राम बहनी अरे।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
2: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
1: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit.

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी

0: चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बाताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

0: पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 202

104.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: दंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
3: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
3: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
3: इसे तराशा जाता है और
2: हाँ,
3: ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
3: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
3: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
3: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
3: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
3: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे

0: असत हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं।
2: श्रोता, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
2: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
3: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
5: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
3: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
5: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
6: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
5: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता।

0: तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
3: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
4: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
3: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
3: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
3: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
3: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
8: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
9: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
8: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
9: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
10: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ
11: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
10: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे?

0: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
0: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
3: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
4: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
8: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
9: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलड़ू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम सब अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वह

0: बहुत जल्दी है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
1: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
2: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
1: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
1: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
0: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
1: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
1: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
0: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
1: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
2: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
1: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
1: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
0: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
1: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
1: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
0: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
1: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम

0: के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। 4 बजे दूसरी सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमारे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक, बहुत
0: बता जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजुरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस

0: सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
1: जी
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी।
0: इसमें। जी जी जी
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी
0: जी
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
1: अच्छा।
0: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर
0: जी।
1: तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
1: बाहर
0: से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बहला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहाँ पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता
1: बिल्कुल
0: है उसमें।
1: और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी
0: एक, जी जी जी
1: तो
0: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त
1: जी,
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी
1: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
0: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
1: जी,
0: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों का बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर

0: गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे,
1: क्या
0: मतलब
1: बात है
0: नाम
1: सर
0: का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
1: जी।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो, जिसको बोलते हैं ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको 2 बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
0: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला,
1: जी
0: गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इंकाउंटर हुआ था जिसमें 2 नक्सली मारे गए थे, उसमें
1: अच्छा
0: भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
1: जी,
0: जी
1: और
0: जी
1: 2 बार आपको मिला ये,
0: दो बार गैलेंट्री
1: और
0: मिला।
1: उसके
0: जी जी
1: अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं 2-4 देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज़्यादा हैं।
0: अब

0: गया उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है
0: जी। जी, और दो बार आपको मिला है,
1: दो बार गैलेंट्री मिला।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली। लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ। उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने

0: कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी
0: जी
1: जी हाँ। लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज़ को हम याद करते
0: अच्छा,
1: हैं जी
0: तो
1: हाँ
0: ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
1: जी
0: जी, तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं?
1: जी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में
0: जी।
1: जी जी जी
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी मेन तो आप सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना
0: जी
1: देने वाला, आज भी के मेरा जो मानना है आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन
0: जी
1: ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
0: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें
1: हाँ जो
0: इन्फॉर्मेशन
1: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, वो
0: जी मिल जाए।
1: टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है,
0: जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है जो, वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसका फॉर्म, मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं
1: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो
0: जी।
1: आप
0: तो ग्रेजुएशन कम
1: आगे।
0: से कम इसका क्राइटेरिया है
1: हाँ ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
0: जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम। आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश
0: जी
1: की सेवा करते हैं, अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी
0: जी
1: देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा
1: जी
0: देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये, जैतपुर नई दिल्ली से। जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है कैसे किया जाता है।
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही
1: हाँ
0: आपने
1: हाँ
0: रिलेटेड चीज़ें
1: फोर्स से ही मैंने की। जी जी
0: जी
1: जी
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर

0: कभी कोर्स क्या है सर ये,
1: हाँ
0: इसके बारे
1: हाँ
0: में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी।
0: अच्छा
1: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो
1: वहाँ
0: फॉर्मल
1: टेक्निक
0: ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे
1: जी।
0: एसएसबी में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज़्यादा हार्श और ज़्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं खाना है,
0: अच्छा
1: और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं। वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है, आपको कैसे चलना है,
0: ओके
1: कैसे किससे बात करना है, कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है,
0: अच्छा
1: चलने से
0: सर,
1: लेके हर चीज़। और
0: अच्छा
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल से कैसे
0: अच्छा
1: लड़ना है,
0: यानी कि
1: आतंकवादी से
0: पूरा
1: कैसे लड़ना है,
0: जी
1: उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी।
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी जी जी
0: तो
1: जंगल में ही
0: आपने
1: हम
0: जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना होता है।
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है, ब्रश भी
0: अच्छा
1: करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है
0: तो
1: जी।
0: एक एक लीटर पानी में
1: 1 लीटर पानी में
0: और वो भी 72 घंटे?
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको
0: अच्छा
1: एकदम।
0: तो
1: हाँ
0: कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर ये?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है
0: 1 महीना?
1: जी जी जी जी जी
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज़। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है।
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते
0: अच्छा
1: हैं
0: यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से
1: जी
0: हमेशा
1: जी
0: भरे
1: जी
0: रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन
1: जोश से
0: सर इसको
1: भरे।
0: थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल,
1: जी जी जी हाँ, तो हो जाता है
0: तो
1: उसमें।
0: कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा,
0: अच्छा
1: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे
1: हाँ
0: रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है,
0: अच्छा
1: अचानक अचानक सब चीज़ होता है। आप
0: पहले से
1: खा
0: नहीं बताते हैं?
1: नहीं खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके एक तरह से ड्रिल
1: हाँ
0: ड्रिल,
1: ड्रिल ड्रिल हाँ,
0: अच्छा
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप
1: हाँ,
0: असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी
1: अगर
0: जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस
0: जी
1: अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक
1: हाँ
0: भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो
1: कमजोर
0: पूरी
1: पड़,
0: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी,
1: हाँ, तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है ट्रेनिंग
0: मोटिवेटेड
1: का।
0: रखने।
1: हाँ ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा एक टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में
0: जी
1: ही उनको ढाला जाता
0: सर,
1: है।
0: अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाय चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी
0: जी
1: पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी। हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
0: जी
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
0: जी
1: जी
0: आपके
1: जी
0: आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं, रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डरों पर
0: अच्छा
1: करना है जी, उसके उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी
1: हाँ
0: कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीज़ें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें वो भी आपने किया हुआ है?
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना
0: जी जी
1: उसमें एक्सपर्ट

0: होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है
1: जी
0: जी।
1: सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
1: जी
0: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा
1: तो
0: आएगा।
1: आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया,
0: मैंने
1: मतलब?
0: तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही
1: अच्छा
0: किए
1: सर,
0: जी
1: यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं,
0: जी
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए।
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हम

0: हमेशा रोशन
1: रोशन रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
0: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं। सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएं अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते RJ सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहें रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं कैसे हैं? नमस्कार, शिप्रा श्रीवास्तव की ओर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम की चाय की चुस्की और साथ में कुछ नाश्ता। और आइए ये सफर सुहाना करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

स्व से ऊपर उठकर अपने देश के लिए सोचना और देश के लिए कुछ करना, ये पहचान है सच्चे हिंदुस्तानी की। आपका आनंद जहाँ भी हो उससे बढ़कर अगर देश की तरक्की में आपका हाथ है, आपका सहयोग है, आपका प्रयास है, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी संस्था से आप जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा जो मूल भाव होता है वो होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवत्। और इस भावना को शक्ति देता हुआ आइए सुनते हैं एक और गीत। मौसम बदल रहा है, आपके सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मौसम का आनंद भी उठाइए और इसके साथ ही लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा।

0: ये था आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम का सफर। आज जिन फिल्मों के गीत आपने सुने वो थी राजे सत्ते पे सत्ता, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: तूफानों से उसे पतवार कहते हैं, जो खेल बदल दे परभर में उसे ही खिलाड़ी दमदार कहते हैं। नमस्कार आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ सुधांशु, लेकर आया हूँ देश के युवाओं की अपनी धड़कन युवाणी।
1: वाह सुधांशु वाह, मतलब मुझे तो अभी ऐसी वाली वाइब आ रही है। शुरुआत ही इतनी प्यारी शायरी से हुई है, तो आज का हमारा सेगमेंट सुपर हिट होना तो तय है। वैसे रेडियो के सेट उस पार जितने भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं, सबसे पहले सुधांशु ने तो आपसे नमस्कार कर लिया, मतलब पूजा ना करे तो शाम अधूरी सी रहेगी ना। तो ऑफकोर्स आप सभी को मेरा यानी पूजा यादव का बहुत बहुत प्यारा नमस्कार।
0: भाई पूजा, आज स्टूडियो में पैर रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी रेडियो स्टेशन में नहीं बल्कि सीधे ओलंपिक या क्रिकेट वर्ल्ड कप के कमेंट्री बॉक्स में आ गया हूँ। इतनी जबरदस्त खेल वाली वाइब।
1: वैसे ऐसी वाइब होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख कुछ कहती है सुधांशु।
0: हाँ,
1: मैं चाहती हूँ कि वो तुम बताओ।
0: आज यानी 2 जुलाई को पूरी दुनिया मना रही है विश्व खेल पत्रकार दिवस। ये दिन उन जाबाजों के नाम है

0: मैं नहीं बल्कि सीधे ओलंपिक या क्रिकेट वर्ल्ड कप के कमेंट्री बॉक्स में आ गया हूँ। इतनी जबरदस्त खेल वाली वाइब।
1: वैसे ऐसी वाइब होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख कुछ कहती है सुधांशु।
0: हाँ,
1: मैं चाहती हूँ कि वो तुम बताओ।
0: आज यानी 2 जुलाई को पूरी दुनिया मना रही है विश्व खेल पत्रकार दिवस। ये दिन उन जाबाजों के नाम है जो मैदान पर मैच खत्म होने के बाद भी जागते हैं, ताकि अगली सुबह हमारे पास खेल की हर छोटी बड़ी खबर, खिलाड़ियों के जज्बात और वो रोमांचक तस्वीर पहुंच सके।
1: बिल्कुल सही कहा। जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो पूरा देश झूमता है, लेकिन उस खिलाड़ी के संघर्ष को, उसके पसीने की हर बूंद की कहानी को हम तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ ये खेल पत्रकार ही करते हैं।
0: इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि किरदार को शिद्दत से निभाइए अपनी कहानी में, किरदार को शिद्दत से निभाइए अपनी कहानी में, पन्ने गवाह बनते हैं हर एक की जवानी में।

0: तो भाई पूजा, चर्चा की शुरुआत तो हो ही गई है, लेकिन हमारे दोस्तों को जरा इस दिन के इतिहास का वो गोल्डन फैक्ट तो कम से कम बता दो भाई कि आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई।
1: बिल्कुल, फैक्ट्स के बिना तो हमारा युवानी का कार्यक्रम ही अधूरा लगता है। तो दोस्तों, बात है साल 1924 की, जब पेरिस ओलंपिक के दौरान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी AIPS की स्थापना हुई थी। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने की शुरुआत की गई।
0: क्या बात है, यानी इस संगठन की शुरुआत को आज पूरे 102 साल हो गए हैं दोस्तों। यानी कि आप मान लीजिए वर्ष 1924 से 2026, जरा सोचिए दोस्तों, तब से लेकर आज तक खेल पत्रकारिता का अंदाज कितना बदल गया है। पहले जहां लोग रेडियो पर कान लगाकर बैठते थे या सुबह के अखबार का इंतजार करते थे, वही आज सोशल मीडिया और डिजिटल दौर के इस समकालीन संदर्भ में पल पल का अपडेट सीधा हमारे स्मार्टफोन दे देते हैं।
1: बिल्कुल, अब तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन खेल पत्रकारों का जज्बा आज भी वही है। चलो, इस बात पर हमारे दोस्तों के लिए बेहद मज़ेदार और अनोखे फैक्ट्स हम शेयर करते हैं।
0: हाँ,
1: तो फैक्ट्स नंबर पहला, ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि बहुत रिसर्च करके हम लोगों ने लाया है।
0: बिल्कुल।
1: तो सवाल ये कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला स्पोर्ट्स आर्टिकल कब और कहाँ छपा था? आजकल तो हर एक सेकेंड पे आर्टिकल्स में मिल जाते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन ये
0: हाँ
1: सवाल कितना ट्रिकी है कि पहला स्पोर्ट्स आर्टिकल कब छपा था? तो इसका जवाब है, साल 1733 में लंदन की एक लोकल अखबार में एक क्रिकेट मैच की रिपोर्ट छपी थी। वो खेल पत्रकारिता का बिल्कुल शुरुआती दौर था, जहां सिर्फ हार जीत की खबरें लिखी होती थी। कोई रंग बिरंगे ग्राफिक्स जैसे आज के दौर में हमें देखने को मिलते हैं, वो उस वक्त नहीं थे।
0: ओहो, यानी कि 1733 यानी तब से लेकर आज तक ये सिलसिला कितना खूबसूरत हो चुका है। चलो, एक दिलचस्प फैक्ट दोस्तों मेरी तरफ से, वो ये है कि खेल पत्रकार सिर्फ मैच की रिपोर्टिंग नहीं करते, कई बार वो खिलाड़ियों के अंधविश्वास को भी कवर करते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का हमेशा पहले बायां पैर बांधना, या फिर रोनाल्डो का मैदान पर हमेशा दायां पैर पहले रखना। इन दिलचस्प कहानियों को खोज कर निकाल कर भी वो जो खेल पत्रकार हैं हमारे सामने ला के रखते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब हमारा ध्यान तो स्पोर्ट्स पर रहता है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: जो जर्नलिस्ट होते हैं
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: हर एक की पॉइंट को नोटिस करते हैं।
0: हाँ
1: आई मीन,
0: रिपोर्ट
1: जस्ट
0: करते हैं।
1: इमेजिन, किसने ये सोचा होगा कि सचिन तेंदुलकर जो है पहला पैड किस पैर का बांधते हैं, या रोनाल्डो पहला पैर मैदान पे कौन सा रखते हैं?
0: हाँ
1: मतलब ये यकीनन बहुत मज़ेदार है, और मुझे लगता है ये सब सुधांशु ही ला सकता है हमारे लिए। तो ये भी एक चीज़ है कि आज के दौर में खेल पत्रकार होना जितना ग्लैमरस शायद हमें लग रहा है, हकीकत में ये उतना ही चैलेंजिंग है। अब सोचने वाली बात तो है ही है।
0: हाँ
1: समकालीन संदर्भ में

0: देखे तो आज का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिर्फ स्कोर नहीं बनाता, बल्कि वो खेल के पीछे की राजनीति, खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ और खेल के संघों के बड़े बड़े मुद्दों पर बेबाकी से लिखते भी हैं।
1: बिल्कुल, और इसके लिए गजब का हौसला चाहिए। पहली बात
0: बिल्कुल
1: तो 24 घंटे की लाइव कवरेज, लगातार यात्राएं और बिना किसी छुट्टी के मैदान पर डटे रहना। इनके इसी हौसले पर एक शेर याद आता है
0: अर्ज है।
1: कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
0: क्या बात है।
1: हमारे खेल पत्रकार इसी उम्मीद को जिंदा रखते हैं, तभी तो वो हमें ऐसी कहानियां दे पाते हैं जो पूरे देश में प्रेरणा की लहर दौड़ा देती है।
0: तो चलते चलते दुनिया भर के उन सभी खेल पत्रकारों को जो धूप छांव बारिश की परवाह किए बिना खेल की दुनिया की सारी खबरें सारी बातें हम तक लाते हैं, उन्हें बहुत बहुत सैल्यूट है उन्हें।
1: दोस्तों, हम आपको गीत सुनवाएं पर इस शेर के साथ, कि लकीरें अपने हाथों की बदलना हमको आता है, लकीरें अपने हाथों की बदलना हमको आता है, वो कोई और होंगे जिनका मुकद्दर हार जाता है।

0: सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शो में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स शामिल करते हैं, तो आज हमने शामिल किया है कविता पाठ अमित कुमार शर्मा की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं ये कविता।
1: सुंदर पुष्प खिले उपवन में मधुर गीतों से तान मिली है, नव कलियों ने रूप लिया मौसम को जैसे जान मिली है। बसंत की सतरंगों ने देखो पृथक पृथक कर श्रृंगार किया है, धरा की गोद में नवरत्नों ने आंगन को अब तैयार किया है। फागुन की सुरभि बसंत से चलकर चौबारों तक आई है, मन में उमंग भरकर स्वागत करने किनारों तक आई है। उंगलियों पर रह गई होलिका खत में उतार कर भेजी है, पतझड़ खत्म हो अब भरे नैनों से भाव लिख कर भेजी है। ऋतु राज स्वयं द्वारे द्वारे चलकर मनोहर संदेश दिए हैं, फागुन गीतों से चबूतरों पर एकत्रित हो प्रवेश किए हैं। मन की अभिलाषा है अब की रजनी से सब भय छूटेगा, हृदय में व्याकुल प्रश्नों का उत्तर वह हक से तो पूछेगा। प्रबल बनेगी आकांक्षा मेरी भौरों ने पुष्पों से बात कही, खुशबू कैसे मिलती है रसों में कलियों ने एक रात कही। सुगंध रस विद्वान है जब तलक श्रोण करते हो तुम, पुनः जन्म मिला जैसे हृदय को भ्रमर कर चलते हो तुम। कई मास बीत गए हृदय व्याकुल हो उठा है, घर लौट आओ अब फागुन भी अब आ चुका है। क्रांति वीर हो साजन इस राष्ट्र के गौरव सम्मान हो तुम, दुश्मन के संग कई फागुन बीते हैं ताने कमान हो तुम। रंगों से मिलकर केसरिया इस भूमि पर सदा लहराते हो, खुशियों से पूर्ण होता है हर त्योहार आप ही सजाते हो। कुछ ख्याल करो नव वधु का वचन निभाने आओ ना, सुना सुना है दिल का कोना अब की मुस्कान सजाओ ना। ताने सुन सुन कर सखियों की मन हताश होकर बैठा है, कुछ भी मुझको भाता नहीं हृदय उदास होकर बैठा है। ढोलक डमडम कर इन गीतों को सब होठों से फेर रहे, खत लिखा है किसी ने जैसे अपने शब्दों में कुछ हेर रहे। गीतों को स्वर देकर सब अंतर की बातों को कह डाला है, इशारों में परदेशियों को गांव लौटने की जिद मत डाला है। अर्धरात्रि पूर्व होलिका

0: धनकर आशीष सभी पाते हैं, आध्यात्म की सार्थकता को मिलकर के सब अपनाते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को पावन और पवित्र बनाते हैं, त्योहारों में सब एकत्रित होकर सबको गले से लगाते हैं, रंगों का त्योहार निराला सभी दुर्गुणों को मिटा कर जाता है, मानवता प्रेम संस्कार का सभी को शिक्षा देकर जाता है, सीख मिलती है हम सबको जब रंगों को मिलते देखते हैं, आपस में एकता बनी रहे हमेशा एक होकर तब जीते हैं, इस पावन भूमि पर प्रेम भाव की गंगा सदा से बहती है, रंगों से जीवन को रंगने का सदा उचित उपदेश देती है, आओ हम सब मिलकर इस होली को मंगलमय बनाते हैं, भूलकर सारे शिकवे गिले को आज हाथ मिलाते हैं, खुशियों से भर जाए जीवन सब रंगों का ऐसा भाव मिले, खुशियों से भर जाए जीवन सब रंगों का ऐसा भाव मिले, अंधकार मिट जाए हृदय से सब प्रेम आदर्श की नाव मिले, भांग मिष्ठानों से भर होली का चलो अब आनंद उठाते हैं, गीतों से यह शुरू हुआ है अब आंगन में चलो मौज उड़ाते हैं, आशीर्वाद मिले बड़े बुजुर्गों का यह रीति अपनी बनी रहे, आशीर्वाद मिले बड़े बुजुर्गों का यह रीति अपनी बनी रहे, राष्ट्र धर्म सदा ऊंचा रहे हमारा यह अपनी जीत बनी रहे, राष्ट्र धर्म सदा ऊंचा रहे हमारा यह अपनी जीत बनी रहे।
1: तो अभी आपने सुना ये कविता पाठ अमित कुमार शर्मा की आवाज़ में, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वैसे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए।

0: इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में कई एक्टर्स आए, उन्होंने काम किया, मेहनत की, शोहरत कमाई, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मिटते। एक ऐसा ही नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल का,
1: जिन्हें दुनिया प्यार से धर्म पाजी और बॉलीवुड का पहला ही मैन कहती है। 6 दशकों में अधिक लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले धर्मेंद्र जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि भारतीय सिनेमा का एक पूरा पूरा अध्याय थे।
0: बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव के एक सिख परिवार में हुआ था और उनके फादर एक स्कूल हेडमास्टर थे।
1: बिल्कुल, पंजाब की मिट्टी में पले बड़े धर्मेंद्र जी का झुकाव हमेशा से फिल्मों की तरफ था। अपनी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया उनकी जिंदगी में जब उन्होंने फिल्म फेयर के टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि उसे जीता भी। इसके बाद पंजाब का ये गबरू जवान अपनी आँखों में चमकते सितारे बनाने का सपना लिए माया नगरी मुंबई पहुंच गया।

0: दोस्तों, धर्मेंद्र जी ने करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। 1960 के दशक में के मध्य तक वे रोमांटिक हीरो के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुके थे, लेकिन 1966 को फिल्म फूल और पत्थर ने उनके करियर की दिशा तय कर दी थी। दोस्तों, आगे बात करेंगे, पर आइए सुनते हैं एक छोटा सा संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
2: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
4: धर्मेंद्र जी के दमदार अभिनय को देखकर दर्शकों ने उन्हें बॉलीवुड का पहला ही मैन घोषित कर दिया। धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी खासियत कि वो हर जॉनर में फिट बैठते हैं, यानी कि एक्शन और क्लासिक फिल्म का कॉम्बिनेशन। एक्शन फिल्म आप ले सकते हैं फूल और पत्थर, हुकूमत, लोहा, क्लासिक फिल्म जैसे कि सत्यकाम, अनुपमा जैसी संजीदा और आर्ट फिल्म, कमाल की कॉमेडी टाइमिंग, आई मीन चुपके चुपके शोले आज किसे नहीं याद होगी। उनकी फिल्मों में उनका अभिनय कभी भी ओवर द टॉप नहीं लगता। उनकी नेचुरल एक्टिंग, पर्दे पर सहजता और उनकी सादगी ही उनकी USP रही।
5: तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रेरणापुंज श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। आपको पता है दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम में प्रश्नावली का भी सेगमेंट लेके आते हैं। तो जैसा कि हमारा कल का प्रश्न था,
4: कल का सवाल था, नेम द इंडियन फिल्म दैट वोन बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट BAFTA अवार्ड्स। द आंसर इज बॉन्ग।
5: दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सवाल ये है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। आप हमें अपना उत्तर आप हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। आईडी है yuvvaniald@gmail.com और आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें हमारा फ़ोन नंबर है 8004926250।
4: नंबर एक बार फिर से 8004926250। वैसे सुधांशु, आज हमने बहुत सारी बात की, हमने विश्व खेल पत्रकार दिवस पर बात की, हमने आज हमारे प्रेरणापुंज धर्मेंद्र पाजी पर बात की और बहुत सारी गाने भी सुंदर सुंदर हमने बजाए हैं और हमने सवाल भी पूछ लिया। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जितने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो इसका जवाब हमारे नंबर पर ज़रूर भेजेंगे।
5: बिल्कुल। तो दोस्तों, चलते चलते आइए सुनते हैं अपने कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमें अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है yuvvanie@gmail.com पर। तो इसी के साथ हमें यानी सुधांशु को
1: और मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी यूजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और

0: सीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे श्रीनगर में 6:05 हुए हैं। इस समय आपको जानकारी देने का आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की, तो पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10:30 से आप सुनेंगे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2026 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 6:30 पर होगा ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे मेरी खेती मेरी बात में किसान चर्चा। प्रतिभागी होंगे ज्ञान सिंह और हिंजलाल और लहरी लाल जी यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत। 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम होगा जिसमें आज के कवि होंगे अभिषेक केसरवानी और प्रीता वाजपेयी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर सुनेगा अनिल कुमार के स्वर में भजन और गीत। सबलेस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और फिल्म संगीत का आनंद उठाइएगा 10:00। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। कल सुबह 6:35 मिनट पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर रघुनाथ सिंह से बातचीत, पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 मिनट पर सुनवाएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का 397वां भाग सुनवाएंगे सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनवाएंगे उमाडी का ख्याल गायन। दिन में 12:15 पर सुनिएगा दर्शन सिंह का क्लेरिनेट वादन और रात 10:30 पर सुनवाएंगे पंडित उमाशंकर मिश्र का सितार वादन।

आपके अपने संदेशों और पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर होगा। सुना न भूलिएगा ये कार्यक्रम सुबह 8:45 पर, और वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम से जुड़िएगा 10:05 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सुनवाएंगे मीनाक्षी दास के स्वर में भजन और गीत, और शाम 7:45 पर कलाकार होंगे राजेश कुमार। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमात्री होगा 10:30 पर, कलाकार होंगे प्रशांत मिश्र, संगम लाल यादव और साथी और उर्मिला श्रीवास्तव। लोकगीत हम आपको पंचायत घर कार्यक्रम में भी सुनवाएंगे 6:30 पर, कलाकार होंगे संगम लाल यादव और साथी। युवाओं का कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस होगा 11:30 पर, और युवाणी सुन सकेंगे हमारे युवा श्रोता शाम 5:15 पर। आपके फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीत हेलो फरमाइश के साथ आप तक पहुंचेंगे दिन में 12:30 पर। 1:15 होगा महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, बहनें सुनेंगी जायका अंक में नारियल बर्फी और नारियल की चटनी की रेसिपी, और निखार में जानेंगी घुंघराले बालों की सही देखभाल के बारे में जानकारी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 2:30 पर। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा, कल सुनाएंगे डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव की वार्ता उपनिवत्सु आचार संहिता। 8:30 पर अक्षय भट्ट कार्यक्रम होगा, जिसमें कल सुनाएंगे डॉक्टर राकेश मणि पांडे की वार्ता भारतीय संस्कृति में वृद्धों का सम्मान। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम रात 9:30 पर। 10:00 सुनिएगा दादाजी की तीर्थ यात्रा, देवयानी का लिखा ये नाटक। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है समूह स्वरों में देशभक्ति रचना।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मन्त्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्रमहासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मूकश्मीरस्य भगवती नगर आधारशिबिरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन 2000 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमन्त्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सुत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।

0: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
0: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं संजातम्।
0: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
1: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गतसायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्रीरूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति, तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विकपटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखाङ्कितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्तिशृङ्खलावरोधैः, व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधानविषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
0: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज

0: पंचो राम राम कहे दुर्गा भैया।
1: हाँ मोहन भैया,
0: हम कहे भाई देखा कल से हल्का हल्का जब से बदरी छाए बना, हम कहे देखा थे राम जतन भैया हरे लेके भाई फरुआ कुदार धाने के मेड़े पहुंच गया है भाई।
1: बिल्कुल पहुंच गया है भैया। और देखा एक बार तनी के थोड़ा मानसून कमजोर बात है, ठीक बा। तो भाई देखा जेके पास साधन बा, साधन बा, तो भाई ओ तनी के दाई जोरान तो राबे करी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन हम ई कहब और अपने पंच भैया रे के हम सब यही सब कहब कि तनी के मानसून कमजोर बा। हालांकि मौसम विभाग कहे बा कि भाई 5-4 दिन और जिस तरह से घेरे आए बारिश हुई ऐसी संभावना जताए बा, लेकिन नजर रखे रहे और जहां भाई देखा पानी पर्याप्त उपलब्ध बा, भाई जिसे कहे संसाधन अपन बांटे, तो हुआ तो ठीक बा भाई। उनके ऊपर समय से अपन पाई कह दे बेहद तैयार हो चुका बा
0: दुर्गा भैया है का ना कि अब देखा भाई जो ना अपन धान के नर्सरी बहुत तैयार हो आए बा, अगर विलंब हो तो जो नुकर भाई लगावे के बाटे ओकर
1: समय समय बाब के लगावे
0: जब चरेर हो जाए तो भाई ओन ढंग से फिर वो भाई पकड़त नहीं जौन है।
1: यही तो कहा जात बा कि भाई संसाधन
0: एक बात जौन कहा कि भाई देखा जो संसाधन बा भाई जेके पास भाई पानी की व्यवस्था बा तभी वो देरी न करे जौन है। और भाई तमाम तरह के देखा प्रजाति यहाँ कुछ भाई जल्दी वाली यहाँ कुछ देर से वाली यहाँ, तो जहाँ पे जैसे उपलब्धता बाटे वो अपन काम
1: एक बात बताओ भैया कि मान लिया कि जेके पास संसाधन बा वो तो भाई कर

0: भाई अपन बेहन डाले हैं तैयार होकर लगभग कहीं जैसे जी के पास ना ही बस संसाधन, वो तनिक इंतजार में आए कि भाई देखा पानी गिरे तो फिर लगाई।
1: अच्छा
0: तो
1: एक
0: मैं
1: बात
0: देखा है सबसे बड़ी चीज बा कि नमी बार बार सिंचाई के लिए ना परेशान हो, तनिक नजर बनाए रखते हैं, हो सकता है कि भाई 2-3 दिन में जैसा मौसम विभाग कहा था बारिश हुई। और दूसरी चीज बा कि जे जैसे नर्सरी नहीं डाले तो भाई उनके लिए यही भाई सलाह हम सब यही देवे कि जौन जल्दी से पके वाली किस्म है वह पे ज्यादा ध्यान दें।
1: दुर्गा भैया एक बात अपने जो विशेषक भैया रे कहा था इस समय कि जैसे मानसून कमजोर बा तो सिर्फ धान के ही खेती पे नहीं रहे बल्कि और भी फसल यहाँ ही जे माँ भाई पानी को उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं न।
0: बिल्कुल बिल्कुल मोहन भैया कही गए हम समझते भाई ठीक भाई कि जहाँ भाई देखा भाई मानसून पे भाई अगर पूरी तरह निर्भरता बा और मानसून ठीक बा तो चल जाते हैं, और जब जहाँ भाई पानी नहीं बा तनिक संकट बा जैसे आपके दिखात बाटे तो भाई ठीक बा कि हम दूसर फसल जैसे अरहर बा उड़द बा मूंग बाटे
1: बाजरा है
0: तिल बा मक्का बा बाजरा बा जैसे बताए कि ए पे भी हम ध्यान दे सके थी एक कम पानी में भी
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक उत्पादन दी थी। तो कुल मिला के वैकल्पिक जो फसल कहा जाते ए पे विचार करे के चाहिए।
1: अच्छा एक बात हम दुर्गा भैया कहब कि जैसे देखा जब अपन संसाधन के बात आवत है ना तो हम कही भाई सरकार के तरफ से समय देखा भाई सिंचाई के लिए तो कितनी बढ़िया एक योजना बा प्रधानमंत्री कुसुम योजना हाँ, लेकिन जब योजना के बात आवत हो तो किसान के जागरूकता के बात आवत हो तो ओके लिए भी तैयारी जरूरी बा
0: जरूरी बा
1: भाई ओके लिए आवश्यकता का बात है कि भाई आपके किसान के जो पंजीकरण होत फार्मा रजिस्ट्री भैया जो हाँ अगर कृषि विभाग में अगर आपके फार्मा रजिस्ट्री भाई अगर नहीं ना जौना है तो जो तमाम तरह के योजना के जो लाभ मिले वाला बा सब्सिडी मिले वाला बा चाहे भाई धान के विसार में हो खाद पानी में हो वो नहीं मिल सके जो
0: बिल्कुल भैया ये बिना देखा कि शुरुआत से ही कहा जात बा कि किसान पंजीकरण देखा जरूरी बा। अब चाहे खरीदी केंद्र पे चाहे उसका उपयोग आवे और चाहे भाई अनुदान पे जौन मोहन भैया बताएं कि तरह तरह की जितनी योजनाएं बा तो आज ओमें सीधे तौर पे किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे एकरे लिए जरूरी बा कि पंजीकरण हो जरूरी
1: बिल्कुल,
0: बा।
1: बिल्कुल।
0: और भैया यह भी ना तो सबसे बड़ी जरूरी बा कि भाई देखा बुवाई समय आए और धान रोपाई के समय बा खाद भी जरूरत बा लेकिन खाद तभी मिली जब पंजीकरण हुई।
1: ये भैया एक बात और कहब हम कहे भाई देखा दलहन तिलहन के भाई उत्पादन के लिए भी सरकार जो ना है इस समय बहुत जोर दे बाटे हाँ और के लिए मुफ्त में भाई देखा बिजार बिसार भी देती
0: है हाँ?
1: लेकिन बात वही आवा था कि अगर आपका रजिस्ट्री नहीं ना तो कैसे सरकार जाने कि आप किसान हा?
0: हाँ
1: हाँ अब एक के लिए देखा कृषि विभाग की ओर से भाई ब्लॉक स्तर पे पंचायत स्तर पे शिविर लगाए कि भाई किसान के पंजीकरण भाई उनके आधार कार्ड से एक बड़ी सरल प्रक्रिया में भाई कृषि विभाग के अधिकारी जाता है अब मुश्किल से भाई 5 मिनट नहीं लागत जो ना है आपके जितना रकबा बाटे सब इंकित कर देता है
0: जौन सामान्य बा आधार और मोबाइल नंबर मांगत हैं और जन सुविधा केंद्र पे बहुत आसानी। एक बात और भैया
1: बताओ भैया बताओ
0: इसमें कहाँ खेत बा कौन घाटा संख्या बा अगर उहू के शामिल कर लेता तो एकदम फर्स्ट सरकार के पता बा और आपों के पता बा कि ऊ कहूँ गड़बड़ाई ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भविष्य के लिए ठीक बात है।
1: अच्छा एक यो महत्वपूर्ण भैया जब यो पता लग जाता है ना कि कौन सा घाटा कहाँ बा तो कितना उपजाऊ बा
0: हाँ।
1: यो भी विवरण आपके सब मौजूद हो जाता है तो सरकार उन्हीं तरह से अपने किसान भाई के लिए भी मदद के लिए आगे आवत है जाना है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन जरूरत है बात के बाद कि हम सब केहू जागरूक बनी और जितनी भी कृषि विभाग की योजना है सुविधा मिलत बाटे और जौन ओके सबसे महत्वपूर्ण पहलू बाटे कि पहले किसान के रूप में पंजीकरण करेगा अगर पंजीकरण करेगा तो फार्मा रजिस्ट्री के जरिए भाई उसका पंजीकरण आवश्यक
0: बा बिल्कुल अनिवार्य बात है और अपने फायदे के लिए बात है भैया अगर लगाए अगर तनिक भी जागरूक रह गया तो कहीं इधर उधर भटके के ना जरूरत
1: बिल्कुल बिल्कुल एक बात और है भैया हम कहीं देखा हम सभी भाई देखा रतिया मगर लेटा रही आसमान की तरफ देखी जो ना है तो तमाम भाई देखा उपग्रह जो ना है घूमत दिखा थी तारा चलत दिखा थी जो ना है तो हम कही भाई देखा आज विश्व यूफो दिवस बाटे तो भाई यह दिवस के प्रासंगिकता यही बाटे कि उद्देश्य यही बा कि जितना भी खगोल

0: घटना है, नए तरह के जो भी चीज़ है, ओके जानकारी लोगन के पहुंचावा जाए जौन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मोहन भैया की जो एक यही कहे का मतलब बा कि जौन शब्द बा यूफो, यही बा कि अज्ञात उड़े वाली वस्तु के बारे में जानकारी
0: जानकारी बिल्कुल।
1: आज भी देखा कि सारे वैज्ञानिक भैया रे जितना भी ब्रह्मांड के रहस्य बा ओका देखा धीरे धीरे सुलझावे के कोशिश करता है, जो के बारे में का जानकारी बा एका दे के हर समय प्रयास करता है भाई। आज कहे के बाद 2 तारीख आता है और वही 1947 से भैया
0: मतलब लंबे समय से
1: एक रहस्यमय वस्तु मिली रही, तब से इस दिन से अपने सभी सबके जागरूक करे के लिए
0: अच्छा, अच्छा,
1: मनावा जाए
0: बिल्कुल जन सामान्य के लिए बिल्कुल भैया। तो हम कही भाई देखा बातचीत होत रही, चर्चा होत रही, मतलब कही देखा आज अपने पंचायत में भाई किसान चर्चा भी सुना जाई, भाई ज्ञान सिंह पटेल और हिंचवार से राकेश मौर्य की बातचीत बाटे वो सुना जाए, मतलब उससे पहले हम कही भाई गीत गौनाई से अपने पंच भाई का स्वागत किया जाए। तो भाई लहरी लाल जी यादव संघातिन गांव विकास गीत बा अब सुना जाए।
1: सुनवा दो।

0: हाँ दुर्गा भैया, हमका ही देखा लहरीलाल जी यादव संघातन के गाई तो देखा भाई विकास की तरह बहुत बढ़िया रहा। मतलब बात हम कही भाई, देखा खेती किसानी हमेशा भाई एक दूसरे के अनुभव से अगर कीन जाए तो निश्चय रूप से भाई खेती के दुगना लाभ होते हैं।
1: लाभ
0: हाँ
1: होते कि
0: भाई,
1: भाई
0: अपने प्रगतिशील किसान भाई कौन से नई विधि कही के भाई खेती किसानी करता है, कौन तो तरीका अपनाया है और क्या तरह से ओका आगे लेके चलता है, ये अगर अपने दूसरे भी किसान भाई के जानत हैं तो उन्हों इस तरह से अनुसरण करते हैं और अपने खेती बारे में प्रयोग
1: बिल्कुल
0: करते
1: भैया
0: हैं।
1: मान लें, क्योंकि छोट खेत जोन बा छोट जोता है, वही छोटे जोत में का प्रयोग कई के
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अपन 4 पैसा के आमदनी बढ़ाई सकत हैं, ई बड़ा जरूरी बा।
0: बिल्कुल। तो भाई देखा ज्ञान सिंह पटेल और हिंसराज सिंह भैया राकेश कुमार मौर्य के बातचीत बटे और सुना जाए भैया।
1: सुनवाई दो
2: किसान भाई, खेती किसानी में लगा बाटे ना। आज देखा किसान चर्चा का दिन आए है। ये किसान चर्चा में हमारे जौन प्रगतिशील किसान भैया हरे हैं, वो आवत हैं, अपने खेती किसानी का अनुभव बांटत हैं, कौने तरीका से खेती करत बाटन, जौने से और किसान भाई भी अपन का कहत हैं सीख ले के बढ़िया खेती कर सकत हैं। तो इस सिलसिले में आज देखा दो किसान भाई आए बटन, एक ज्ञान सिंह पटेल भैया और एक जौन बाटे हिंसलाल पटेल भैया। भैया ज्ञान सिंह पटेल बाब, आपका कहाँ घर बा, कहाँ का रहाई वाला है आप जौन बा?
3: भैया हमार ग्राम बनपुरवा, पोस्ट चिल्ला गोहानी और तहसील 12 के हम निवासी हैं।
2: अच्छा, तो भैया यहाँ कितना खेत बा आपके पास जौन बा?
3: हमारे पास भैया 24 बीघा जमीन है।
2: अच्छा, जौने में खेती होता भैया?
3: हाँ, 24 बीघा जो है हम खेती करवाते हैं।
2: अच्छा अच्छा
3: हाँ
2: अच्छा अब भैया हिंसलाल पटेल आप घर कहाँ बाटे हैं?
4: चिल्ला गोहानी बनपुरवा।
2: अच्छा, माने गौहानी बनपुरवा आपको घर बाटे है। तो आपके पास कितना खेत बा, कौने कितना रकबा में खेती करत भैया?
4: 7 बीघा बा, 7 बीघा मान लीजिए खेत है।
2: 7 बीघा खेत बा।
4: हाँ,
2: तो हमें कितना काका खेती करत है?
4: 1 बीघा लौकी है,
2: हाँ
4: 1 बीघा तरोई बोए है,
2: हाँ
4: 1 बीघा मूली।
2: अच्छा, और धान कितना लगा हुआ भैया?
4: धान लगाओ अलग 10 बीघा पड़े।
2: मैंने जब हमें 7 बीघा खेती है, 10 बीघा हम कितना धान लगे हुए भैया कैसे?
4: नहीं देना ऊपर ले आई।
2: अच्छा, और दूसरे के भी
4: दूसरे
2: काका
4: का
2: थे लगा हुआ था,
4: हाँ
2: माने बटाव पर ले लेता है,
4: हाँ
2: उनका जो
4: हाँ
2: पैसा देता है।
4: पैसा लेते
2: तो 10 बीघा अलग से भी मेहनत का
4: हाँ
2: भाई
4: हाँ
2: कमाई लेते,
4: हाँ
2: वो अच्छी बात है जोन बाटे। तो ओका लगा हुआ, ओकर तैयारी चलत बा है।
4: हाँ चला तो वहाँ।
2: अच्छा, तो भैया हो का कहा थे दोनों किसान भाई, ज्ञान सिंह पटेल भैया हिंसलाल भैया। सबसे पहले ज्ञान सिंह पटेल भैया बतावा कि आपके पास तो लंबी खेती का अनुभव बाटे, 24 बीघा खेत भी बाटे है, तो यहाँ घरी जोन बा खेती में का का लेत बाटा, कितना बीघा हम बतावा भैया?
3: भैया हो यहाँ समय गर्मी के मौसम चलते ही बटे।
2: गर्मी का भाई, अब तो बरसात शुरू हो
3: हाँ,
2: गई
3: अब
2: बा।
3: बरसात भी चालू हो गई बा, तो हम बेहन जो है डलवा दिए हैं। हमारी बेहन तैयार हो गई है, लगभग 4-6 दिन में जो है धाने के बिया हमारे जो है खेते में लागे लागे। सबसे पहले हम धान के खेत तैयार करवाओ।
2: तो कैसे तैयार करवाया बताओ?
3: धान के खेत हम झूरे में भैया उसको जुतवा दिए थे, पहले पलाऊ करवाए। अब पलाऊ करवाए के बाद हमें जो है 10 बीघा में बढ़िया गोबर की खाद, 10-12 ट्रैक्टर गोबर की खाद व्यवस्था करके जो है और उसमें छिटवा दिए। छिटवाने के पश्चात जो है ओका हम जो है फिर 9 फरवा चलवाए दिन, तो समतलीकरण हो गए, पूरी खाद जो है मिल गई। तो इस प्रकार से पूरी पूरी खेत की तैयारी जो है करके हम छोड़ दिए।
2: मतलब 10 बीघा

0: में खाली धान लगा हुआ है?
1: 10 बीघा मैया धान लगवाई थी, और वह जो शेष खेत हमारे पास बचा है उसको हम जो है 4-5 बीघा हम बजरी बोवाई थी। तब बजरी
0: अच्छा
1: वाला
0: अच्छा
1: खेत भी जोता होता के रेडी रखे हैं, क्योंकि मौसम के मिजाज देखा जाते 2-4 साल से कि पानी बरसे लागत है तो निकलबा नहीं करत।
0: हाँ, बात सही कह रहे
1: पंद्रह
0: हैं।
1: दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो किसान भाई जो है बढ़िया से जोताई नहीं कराई पौते, एक वजह से खेती में उनका दिक्कत। मान लीजिए धान जैसे हम बोवत है तो धान के तो ठीक है, पानी अगर ज़्यादा हो तो हम लेवाई कराए ले तो हमार धान मजदूर बुलाई के हाँ बेहन उखड़वाई के लगवाई सकी थी। लेकिन अब जैसे बजरी में पानी ज़्यादा बरसे इलाक तो फिर बजरी की बुवाई कायदे से ना हो पाए। तो और जो उन शेष खेत हमारे पास बचा था, हम साग सब्जी की खेती भी करवाई थी। 2 बीघा हम मूरी बोवा दी है
0: अच्छा
1: अपने
0: अच्छा
1: खेती में।
0: अच्छा
1: हमारी मूरी दुई पत्ती जो है हो चुकी है, अब कतई दिखाई पड़ रही है कि कतौ कतौ जो है तीसरी पत्ती जो है लेने लगी है, और दवा के हम छिड़काव भी करवाए दे आए। और 1 बीघा हम जो है लौकी भी बोवाए है, और 1 बीघा खुरथी बोवाए है।
0: कुर्थी का होत भैया?
1: खुरथी वह है बरसेम जे का बोलत हैं,
0: ग्वारफली
1: ग्वार
0: भी?
1: फली
0: हाँ, कहूँ बरसेम भी
1: कहूँ
0: बोला।
1: बरसेम बोलत हैं, कहूँ ग्वार फली बोलते हैं, कतो कतो खुरथी बोलते। तो हमारे एरिया में खुरथी होकर ग्वार फली के
0: अच्छा
1: बोला
0: अच्छा
1: करती हैं।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: ग्वार फली जो है बढ़िया पैसा देती है, तो ग्वार फली जो है इसको भी 1 बीघा करवा दिए हैं। और 2 बीघा भैया हम तरोई भी जो है अपने खेते में बोआए हैं, क्योंकि गर्मी में सब हम रेडी करवाए रहे खेत तैयार, तैयारी बेहतरीन करवाई के। जब हमारा खेत बना है तो जैसे बरसात भाई तो इसे बोवाई दिन साग सब्जी वाली फसल। और खास फसल हमारे मूली होत है, और मूली के हम बेहतरीन ढंग से जो है तैयारी करके जो है बोवाई थी, और मूली सबसे बढ़िया पैसा भी देती है।
0: बात सही कहते हैं ज्ञान सिंह भैया। हम कहीं से देखे में आओ तो सब जगह मूली होत ना, पहले होत रही मुना, अब जो न बाटा ही है कौनो सीजन में ना ही होत बा। आप तो मान लो बरसात में, बरसात में तो और भी कठिन होत है,
1: जी
0: और सबसे अच्छा पैसा बरसात वाली मूली देत है। तो हम मूली के बारे में थोड़ा विशेष रूप से आपसे जानना चाहब, जो है कुछ और किसान भाई भी सीख ले सके। तो मूली खेत के तैयारी से लेके बुवाई तक का कुछ बतावा जो बा, कैसे खेत तैयारी की है, कब शुरू की है एक जो बा?
1: भैया हम 1 जून में खेत जुताई दिन है।
0: हाँ
1: हाँ लगता है जून जो है हम पहले अपने खेत को जुताई दिन, और जुताई के पश्चात जो है ओका पलेवा कीन
0: अच्छा,
1: ओका हम
0: माने
1: पले
0: जोताए रहा वैसे धान कटे?
1: हाँ मतलब कि गर्मी में जोता दिए थे जिसमें हमको
0: नमी रही हो तभी तो जुताए होगा ना,
1: नहीं नहीं झूरे जुताए थे। जब
0: झूरे
1: पलाव
0: जुताए होता
1: कराते
0: है।
1: हाँ पलाव कराते हैं तो झूरे खेत जुतवाते हैं, जिससे एकदम से खेत बढ़िया बन जाए।
0: जो में कीड़ा मकोड़ा रहे, गर्मी की धूप लगे
1: हाँ
0: ज्यादा
1: गर्मी
0: से।
1: की धूप लगे, बढ़िया हवा खा जाए खेत। ओके बाद जब नौफरवा से जुताई दी थी तो समतल तरीके से हो जाए, तो ओका पलेवा करावे। पलेवा कराए कि जब खेत हमार पक गया कायदे से, तब जो है हम ओमे जो है फिर सोका जुतवाए। और जुतवाए दिन तो ओमे पाटा ओटा मरवाए के जो है बेहतरीन खेत बनाए ले।
0: अच्छा, खाद नहीं डाला कौनो?
1: नहीं इसमें जो है किसी प्रकार के देसी खाद जो है जब डाल देते हैं, तो जब बहुत देसी खाद हो जाता तो जड़ी में करे कीड़ा लगे थे।
0: हाँ,
1: तो
0: बात सही
1: ऐसे
0: कह।
1: हम पचे गोबर के खाद जौन मूली वाला खेत हो तो उसमें गोबर के खाद बहुत कम फेंकवा चाहिए थी।
0: या तो बहुत पहले जाइए तो डलवाई
1: हाँ
0: दिए।
1: बहुत पहले रहा था तो ठीक रहे, लेकिन अगर हाल हाल में अगर गोबर की खाद आप फेंकोबा तो
0: तब तो
1: जड़ी में कीड़ा
0: नुकसान है।
1: लगे ही।
0: सही
1: तो
0: कहते हैं भैया।
1: ओके खातिर जो है जैसे खेत बन गए, जब खेत बनावे लगा एक बार फिर से पलेवा किए तो पिंडा मेथिलीन जो दवा होती है उसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे खर पतवार कम आवे। तो ओका हम जो है छोड़ दे थे कुछ दिनों के लिए, खेत उसे छोड़ दे थी। तो जब छोड़ देवा करी थे तो घास जोन बटे ओकर खर पतवार जोन बटे झुराई जाते हैं, और जब झुराए गए तो जुतवाए। जुतवाने के पश्चात जो है नौफरवा से एक दुबही जुतवाए लें, ओके बाद जो है बिया छीट के, और छीटे के पश्चात एक बिदहनी करवाई के, अब पांटा जो है बैल से पांटा मरवाई देते हैं, जिससे जो है खेत के जो हेंगा होता है वो सारे जगह जो है पांटा जब लग जाता है तो बैठ जाते, तो जो मूली की अखुआ निकलता है वो सीधा निकलता है। तो मूली जब टेढ़ी होगी तो उपारेंगे तो टूटेगी, और जब बैल से पांटा मारा रहता है तो मूली कभी जो है टूटेगी नहीं। अच्छा। और उसी में जो है जड़ उड़ के कीड़ा के लिए, अब तो बाजार में विभिन्न प्रकार की दवा भी आई है जड़ों के लिए, तो जड़ के लिए दवा हम डाल देते हैं। हाँ।

0: की।
1: हाँ, बोवत के बाद एक बार जड़ के दवा डाल के और तब जो है मूली को बोवाइए, और फिर उसको जो है जब पहली गुणाई दे तो दवा के छिड़काव करें।
0: गुड़ाई भी करत है।
1: हाँ, गुड़ाई करवा देते हैं,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: गुड़ाई करवाई दे तो ओके दवा के छिड़काव कर दे, तो उसमें जो है जड़ के भी छिड़काव और पत्ती के भी छिड़काव, क्योंकि पत्ती को भी हमको बचाना है मूली में। अगर पत्ती बची रहेगी तभी बाजार में सही दाम उसको वो मिल पाएगा। अगर पत्ती और जड़ दोनों सही प्रकार से नहीं रहेगी तो आप अच्छा दाम न पाई पाएंगे।
0: तो आप जोन बाटा ही बात है, गुड़ाई वाला दवाई डाल, गुड़ाई करवा चुका है सब।
1: हाँ, एक बार जो है उसकी जो पतली पतली घासें हैं, हल्का हल्का खुरपी एक बीघे में मरा गई है, और एक बीघा अब जो है उसमें खुरपी नहीं मराई पाएगा।
0: तो इस समय का स्थिति बढ़िया बा मूली
1: हाँ, मूली बहुत अच्छी भैया,
0: कई पत्ती को होगी भी।
1: अब एक एक बीघा तो तीसरी पत्ती निकल आई है, और
0: अच्छा
1: एक बीघा जौन बा अब दुई पत्ती बटे, तो एक बीघा जौन तीन पत्ती बा ओका हम गुणवायु हो चुका आई। हाँ, तो वो मूली जो है हमारी ग्रोथ कर रही है, अब ये 45 दिन में अब वो मूली हमें निकले लगे।
0: अच्छा
1: यह समय
0: निकले,
1: मूली के रेट भी अच्छा है।
0: दाम हाँ बरसात में बढ़िया मिलता है, सब नहीं उपजाई
1: हाँ,
0: पाते।
1: नहीं, सब तो नहीं
0: तो यही
1: उपजा।
0: अनुभव का पहली बार बोए, अगर पहले भी बोत
1: नहीं
0: रहे।
1: भैया, हम मूली बराबर जो है बराबर मूली बोते रहे, हम आषाढ़ वाली मूली और जून से जब मूली के पकड़ते हैं मई जून से, हाँ, तो यही मई जून में तो पैसा है, मई जून जुलाई
0: सही बात।
1: अगस्त, ये
0: हाँ
1: 4 महीना अगर आप मूली बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो साल भरे के खेती का पैसा आप पाई जाब
0: एक
1: मत।
0: बताओ, जहाँ मूली खेती करत है वहाँ का खेत का स्थिति, जैसे माने कोनो खेत में पानी लग जाए तो कोनो पानी नहीं लागत, ये का
1: भैया,
0: स्थिति
1: हमारा
0: रहता
1: जो खेत है जहाँ हम मूली बोवाते हैं 3-4 बीघे, तो वो जो है उसमें पानी नहीं टिकता है।
0: हाँ तभी ठीक हो तो
1: अगर
0: एकदम।
1: पानी टिक जाए तो मूली बढ़िया हमार बढ़िया हो ही न पाए। तो उस मूली को अगर समतल में बोएंगे तो मान लीजिए गर्मी में बढ़िया होत है, लेकिन अगर पानी बरस दे तो आषाढ़ में सब खराब हो जाए। आषाढ़ वाली जो मूली है उसको थोड़ा खेत जो है ऊंचा ढाली के हो, मतलब पानी दे तो
0: निकल जाए,
1: निकल जाए,
0: माने लागे न
1: मतलब
0: पानी
1: पानी
0: वाला।
1: न लगे तो आपकी मूली बची रहेगी।
0: तो ये तो रही तो मूली के बात है, एकरे अलावा नुआ तोरई की खेती का बता।
1: तरोई भैया 2 बीघा तरोई भी हम बोआए हैं, और तरोई भी जो है हम बहुत पहले से बोआते हैं, पहली फसल तरोई न हुआ करते हैं,
0: तो कर
1: क्यों
0: का स्थिति भैया?
1: ओकर स्थिति है कि वो तीन तीन चार चार इतनी इतनी आ गई बटे गई ले लागिया।
0: मैंने गवा फूटे शुरू
1: हाँ, गवा
0: कर
1: फूटना कहीं कहीं एक एक एक
0: दी।
1: एक बीता डेढ़ डेढ़ बीता गई चल चुकी है।
0: तो मैं तो खाद उद डाले होगा बोए से
1: हाँ,
0: पहले
1: हमें
0: भैया,
1: ओहमे जो
0: ओकर
1: है
0: का तैयारी रही भैया?
1: ओकर खेत जोताने के पश्चात ओहमे बढ़िया सड़ी गोबर के खाद फेंकवा करके अब ट्रैक्टर से जोतवाई के जो है हिंगवाई के, और उसके बाद जो है घोड़े से खींच के दूध ढाई ढाई मीटर पे बीच के गिराए दिन, और
0: अच्छा
1: गिराए
0: अच्छा
1: के पश्चात इतना दूरी एक कहती 2.5 मीटर, फिर जो है 2.5 मीटर जब दूरी रहे तो दोनों के दूरी बराबर न हो चाहिए, एक तरफ 2.5 मीटर रहे एक तरफ 2 मीटर रहे,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: होत कहा कि वो का हम बैल से जोतवाई दी थी। अब जैसे अब आई गई बा तो किसान के एक सहेजे है जिके पास बैल बटे कि भैया हमार तनी तरोई जोत दे है
0: मतलब
1: एक दो
0: इतना
1: बही,
0: जगह रखा था कि बैल हमें चल सके,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नुकसान न हो।
1: नुकसान न हो, तो का हम एक दो बही खेत अपन जोताई देवे, और जोताई के पश्चात जो है उस पर जैसे DAP पेड़ पौधा पे लगावे के बाद, तो जब जोताई जाए तो खुरपी से ओ पे DAP लगवाई देव, अब बस काम खत्म।
0: तो यहाँ समय तो गवा फूटत बाटे, तो यहाँ समय कौन खाद देवा, देसी खाद वगैरह भी?
1: नहीं, अब देसी नहीं, बस दो ही खाद देते हैं, एक बार DAP लगा देते तो छोड़ देते हैं, अब जब पानी बढ़िया से बरसे तो एक आध नहीं यूरिया के झापक मार देवे जैसे
0: अच्छा
1: जो है बढ़िया से चल दे फूल फल आवे लगे।
0: हाँ, तो कब तक फलत आवे लगे
1: अभी
0: हमारे?
1: मान लीजिए कि अब यह है कि 20 उस दिन में उसमें फल आना चालू हो जाएगा।
0: अच्छा बाजार जाए लाए शुरू हो
1: हाँ,
0: जाए,
1: बाजार जाओ, मूली और ये
0: एक
1: दोनों,
0: साथ ही हो।
1: हाँ, एक मान लीजिए 4-6-8 दिन 10 दिन।
0: अच्छा बताओ, मूली जैसे तो कुछ लोग तो बारिश कहा थे भाई डुड़ोही पे बोवा जाए, मेड़ी बने के तो ज्यादा बढ़िया होत है। तो आप लंबे खेती करत थे ना, बड़ा मतो बहना थे जोन?
1: भैया, हमरे कहती बलुई मिट्टी बा, हम
0: अच्छा
1: लोग अगर मेड़बंदी कर दे थी तो मूली के जड़ खाए लेती।
0: ये बात है।
1: हाँ, और जैसे मिट्टी वजन हो तनी पानी क्षमता ज्यादा हो ओकर, हाँ, लेके तो ओहमे मेड़बंदी से जो खेती करत है कुला बनाए के, तो करे हिया जो है मूली बहुत अच्छी होत है।
0: ज़्यादा अच्छी।
1: हाँ।

0: वो तो तरोई को खेती मेड़बंदी से करा कर रथिन।
1: हाँ एक बात और, जैसे बरसात का खेती ज्यादातर लोग बतावत मचान विधि से अच्छा होता, आपके यहाँ ये कोनो बात नहीं ना?
0: भैया हमारे यहाँ मचान विधि से नहीं होते, हमारे कुछ अगल बगल में लोग हैं ना, जैसे लौकी नेनुआ ये दोनों फसल जो है, जैसे
1: करेला बरसात
0: हाँ
1: वाला है।
0: करेला लौकी नेनुआ ये जो है मतलब 5 बिस्सा 8 बिस्सा बांस ले लेन, हमें गाड़ की डोरी जो है डोरी चारों तरफ से बिंध देते हैं और
1: अच्छा
0: नीचे
1: अच्छा
0: जो है बुवाई के और उसी में गड़ाई कर देते हैं और वो चढ़ करके फरता है और
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया फरत है। लेकिन थोड़े से ही होता है कि
1: मेहनत
0: भाई
1: होता
0: ओकरे
1: है।
0: लिए बांस से बल्ली की व्यवस्था करी
1: कुछ
0: डोरी
1: लोग
0: की
1: तो
0: व्यवस्था
1: तार भी
0: करी।
1: लगा देते हैं लोहे के
0: हाँ
1: जैसे।
0: कुछ लोग तो पतला वाला जो ये स्टीलेटर वाला तार आता है लोकल वाला उसको जो है खींच करके बांध देते हैं, उसको खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे डोरी रहेगी तो मान लीजिए जैसे गवा चढ़ा है तो उसमें कहाँ गांठ बांधे कहाँ नहीं गांठ बांधे हैं, और डोरी भी क्या होती है जैसे डोरी बाटे तो कतो कतो से दरे दरे से काट के अपन लपेट के हटाई ले।
1: हाँ बात सही कहते हैं। वो जोन बतावा था ग्वारफली भी ले बाटे,
0: हाँ
1: ओकर का
0: ग्वारफली भी,
1: स्थिति बा?
0: ग्वारफली भी जो है भैया जाम आई है छोटी छोटी है, अभी तो 90 दिन के फसल होते हैं, अभी है कि अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बरसात हो जाते हैं तो ये बकुलिया जावा करते हैं।
1: हाँ ये बात है,
0: हाँ
1: खराब हो
0: लेकिन
1: जाएगा
0: अबा
1: थोड़ा।
0: तो ठीक हमका दिखा दिया टे, अब की बार जो है पिछले बार बोए थे तो बकुलिया गए थे तो बहुत अच्छा फायदा नहीं दे पाए थे, लेकिन अब की बार तो बकुलिया नकुलिया नहीं बा सही चल रही है अभी।
1: तो
0: हाँ
1: मतलब यह मुख्य जोन में तीन सब्जी खेती की है
0: हाँ
1: बतावा,
0: तीन तीन मेन सब्जी
1: तो
0: है।
1: बढ़िया बात है। एक अनुभव बतावा का फायदा बा हमें, आपका नजर आवा तो फायदा ले चुका है,
0: भैया हो
1: मूली में तो फायदा हमें नजर आवत बा भाई।
0: जो है अभी कहा कि जो ग्वार फली है ये भी बहुत बढ़िया पैसा देती है,
1: हाँ, दाम अच्छा
0: इसमें
1: मिलत
0: इसमें
1: एकर।
0: लागत भी नहीं है, इसमें लागत का मतलब बीया ही भर आपको बोना है और एक आध बार यूरिया उरिया छेड़ दिया, बाकी डीएपी ओपी की जरूरत नहीं है, बहुत खाद वाद की जरूरत नहीं, जितने बढ़िया कम मतलब बहुत मजबूत खेत रहेगा तो रोग ज़्यादा लगेगा
1: सही
0: बकुलिया जाएगी, और
1: कहा।
0: जितने कमजोर खेत है उतने बढ़िया ग्वार फली अच्छा फरत है।
1: अच्छा।
0: इसका जो रेट होता है अन्य सब्जियों से बहुत अच्छा होता है क्योंकि 200 रुपया धारा से चालू होता है, तो लास्ट लपेट तक 175 तक आते आते जो है सारी जो है ग्वार फली की तुड़ाई हो जाती है और पैसा अच्छा देती है।
1: तो एका कैसे बेचा था, बाजार ले जाए तो खुद या कि ऐसे
0: भैया
1: दे था व्यापारी के
0: हम
1: दे था?
0: बाजार ले जाते हैं, हमारी निजी आढ़स भी है, जसरा में मैं आढ़स भी खोला हूँ। हाँ
1: हाँ, तो वहाँ तो
0: तो
1: बिक जात हो
0: हाँ
1: भैया तो।
0: वहीं बाजार में आढ़स पे ले गए तो वहाँ पर जो है व्यापारी लोग आते हैं दूर दूर से,
1: या
0: तो
1: वैसे खाए वाले ले जाते
0: खाए
1: हैं या
0: वाले ले थे
1: व्यापारी?
0: ज़्यादातर व्यापारी लोग ले थे, और जैसे मान लो वैसे वो लोग बागान क्योंकि किलो 2 किलो की जरूरत 4 किलो की पड़ी तो वो ले लें,
1: तो उससे ज़्यादा फायदा मिल
0: फायदा मिल
1: जाता
0: जाता हमको।
1: भैया। हिंचलाल पटेल भैया, अब आप बतावा कि आप जो सब्जी के भैया भी खेती के, आप वो सब्जी खेती के है
0: हाँ
1: तो आप कुछ बतावा कौन कौन सब्जी खेती की है भैया?
0: हमें 1 बीघा लौकी बोए है
1: लौकी का स्थिति भैया
0: ठीक बा,
1: ठीक का मतलब का स्थिति बा, कैसे तैयारी किया, कब बोया होगा जोन बाटे है बताओ भैया,
0: जून में बोवा हम
1: खेत कैसे तैयारी के है रहा होकर?
0: जताई दे, नौ फरवा जताई कि बस बोवाई दे रहे हम
1: ऐसे सीधा ही लौकी तो,
0: सीधा
1: ऐसे
0: सीधा
1: तो कहाँ लौकी कैसे बोया भाई, सीधा ऐसे छींटते हैं
0: नहीं पे खुरपी से बोवा।
1: खुरपी से बोआ,
0: हाँ
1: मन नमी उमी रहे तभी तो जामे, कि कैसे जामे लौकी?
0: सिंचाई कई कई बोल रहे हैं
1: सिंचाई मतलब खिया खेत फिर जोताए के नमी रही तब बोए, हमें खाद
0: नमी
1: उतना कुछ डाल रहे है
0: कुछ नहीं,
1: तब ओकरे बाद का की है
0: अब
1: भैया?
0: खाद धई दे थई खाद धरत है
1: जामे आए ओकर खाद पेड़े पेड़े धरत
0: पेड़
1: है,
0: पेड़। हाँ
1: कौन खाद धरत है भैया?
0: डीएपी
1: डीएपी ज्यादा धाई तो जरी जाए भैया, वो
0: ना ही 1 किलो धई सकी थे
1: 1 किलो धाई
0: एक
1: चक
0: पेड़
1: तो
0: धई सकी थे
1: जरी जाए हो।
0: ना जरे वो का हिसाब हो तो धरे कि ना
1: का हिसाब बाटे?
0: लंबी दूरी से खुदाई कई के
1: अच्छा खुदाई के कि नीचे दे था
0: नीचे
1: वो
0: दे थे का
1: पेड़ छोड़ के जवन
0: पेड़
1: बा?
0: छोड़ के 1 बीता
1: अच्छा
0: पेड़ छोड़ के
1: तो यहाँ समय लौकी का स्थिति पर गवा हुआ फूटा था का
0: नहीं अब
1: स्थिति,
0: गवाना फूटे थे कि बीता पेड़ हो गया
1: कब
0: है,
1: तक फूटे शुरू हो जाए भैया?
0: अब फूटे चालू हो जाए करीब 10 रोज बाद।
1: अच्छा। मैं खरपतवार वगैरह भैया
0: कुछ नहीं बात
1: कुछ नहीं
0: सफाई एकदम
1: सर,
0: निराई
1: सब
0: के
1: सफाई निराई
0: सब।
1: उराई करे है,
0: हाँ
1: एकरे अलावा काले है
0: फुर्ती वही ग्वाल फली
1: और
0: और तरोई बा 1 बीघा
1: तरोई का स्थिति भैया?
0: ठीक भैया
1: हाँ
0: ठीक बा
1: ठीक, मैं मतलब का स्थिति बा, गवा वाल फुटत बा के तनी बड़ी हो गई है,
0: नहीं बा
1: पेड़
0: गवाल
1: कैसे बा, रोगान दुकान तो
0: रोगान
1: नहीं?
0: नहीं बा गवाल नहीं थे बा। हाँ
1: अच्छा। और धानक खेती करत है भैया?
0: धानक खेती कर भैया।

0: धान कितना करता है?
1: धान 10 बीघा। हाँ
0: 10 बीघा है। अच्छा, तो ओकर धान का बेहन डाल चुका है?
1: बेहन डाल चुका है, बेहन तैयार हो गया,
0: बेहन तैयार। बेहन कोनो रोग दोख
1: कुछ
0: बेरामी?
1: कुछ नहीं रोग बा।
0: अच्छा, तो धान में संकर प्रजाति ले है,
1: नहीं हाइब्रिड किया है।
0: हाइब्रिड वही संकर प्रजाति जो
1: हाँ
0: बाटे है। तो 10 बीघा में कितना नर्सरी कितना डाले रहे?
1: 35 किलो डाले गया।
0: 35 किलो
1: हाँ
0: बीघा पीछे,
1: नहीं पूरा 10 बीघा।
0: 10 बीघा भरे
1: हाँ
0: ना सब? एक
1: हाँ
0: कई धान लगाओ तो अलग अलग
1: बस एक ही धान
0: सब खेते में पूरा?
1: पूरा
0: तो जौन धान 10 बीघा में लगेबो ओकर का तैयारी बे, खेत तैयारी का चलत बो ओकर? भाई
1: खेत।
0: बाबू लगावे लाए समय हो गए तो कब मतलब ओकर खेत तैयारी कैसे किए है ओकर?
1: अब रागी नहीं पाए हैं, अब सीधा वो में
0: जुताई
1: उठा
0: नहीं करवाए रहे
1: नहीं,
0: काहे?
1: मौका ही नहीं मिल पाए।
0: मौका नहीं मिल पाया। जैसे काफी किसान भाई हैं हरी खाद में ढैंचा सन नहीं ये सब बुवाई के जोतावत तब धान लगावत,
1: नहीं हम नहीं लगाए
0: तो का डाले
1: उसमें,
0: बिना खादे के लगे हुए धान?
1: नहीं यही मुर्गी वाली खाद गिराओ,
0: कथा के
1: मुर्गी।
0: मुर्गी का
1: हाँ
0: खाद
1: हाँ
0: हर साल ही डालती है?
1: हर साल डाली थे
0: तो
1: मैंने।
0: बढ़िया लागत है, ऐसे फायदा रहा
1: हाँ
0: था,
1: फायदा रहा
0: धान
1: थे,
0: मजबूत होते?
1: मजबूत होते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो खाली मुर्गी खाद, एक
1: बस
0: बार DAP वगैरह
1: कुछ
0: भैया
1: नहीं यूरिया,
0: DAP फास्फोरस
1: कुछ नहीं
0: इसी
1: सीधा यूरिया।
0: सीधा यूरिया? तब जब लगाई लगान लाई लेते हो तबे डालत हो
1: हाँ
0: पहली पहली सिंचाई के समय में?
1: हाँ हाँ
0: अच्छा, तो धान जब लगेबो ओकर सिंचाई का व्यवस्था भैया
1: समरसेबल अपने पास है।
0: अपने पास समरसेबुल
1: हाँ
0: बाटे है, और जोताई के लिए ट्रैक्टर से खेती करत हो
1: ट्रैक्टर से। हाँ
0: तो गोबर खाद नहीं डलता भैया?
1: गोबर खाद थोड़ा बहुत डाल
0: धान में तो
1: देते
0: डाला
1: थे,
0: जाता जौन बा,
1: डाला जाता। 4-5 मवेशी हैं।
0: 4-5 जानवर हैं का
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ
0: भैंस हैं गाय हैं?
1: भाई सही गाय हैं।
0: भैंस गाय दोनों हैं?
1: हाँ दोनों
0: कई ठी
1: हैं,
0: भैंस कई ठी गाय?
1: 3 भाई सही,
0: हाँ
1: 2 गाय हैं।
0: लागत हैं
1: हाँ 8 भैंस लागत है, 2 बनी हैं।
0: 2 ठी बनी हैं, एक भैंस लागत है। गाय
1: गाय अच्छी लागत गया,
0: कितना दूध हो जात है?
1: दूध हो जाता है करीब 10 लीटर तक।
0: तो पूरा खाई जात है कि
1: नहीं
0: बेचत?
1: खाई नहीं है।
0: कुल बेचत है मतलब कि
1: हाँ डेयरी पर
0: डेयरी में दे देता, उसे नगद पैसा मिल जाता, वो
1: नगद
0: चूनी
1: पैसा
0: चोकर
1: मिलता,
0: के भी तो चाहे ना
1: चूनी
0: सब?
1: चोकर। हाँ
0: अच्छा, और जोन बाटे है का लेबे नया कुछ खेती? लौकी हो गया का कहा थे ये ग्वारफली ले है, तरोई ले है, और बाग बागवानी कुछ
1: और
0: पेड़
1: मूली
0: पौधे
1: ले आई।
0: मूरी ले है?
1: हाँ
0: मूरी का स्थिति में
1: मूली ठीक हुआ।
0: जमाव उमाव हो गए बे
1: हाँ वही
0: कोनो
1: कुछ
0: रोग बिरामी?
1: नहीं,
0: दवा ववा छिड़के है
1: दवा
0: कुछ?
1: छिड़के है।
0: अच्छा, इत रही भैया हो धान का खेती मतलब कि अपन भी बोवत है दूसरे के भी लेके
1: दूसरे
0: बो
1: के। हाँ
0: दूसरे को लेके
1: हाँ
0: बोवत है? बोवत का ओकर लगावत है कुछ? अब तो बोए वाला सिस्टम बाना है जो
1: नाही
0: बा
1: वाला
0: पूरा सब
1: सिस्टम है।
0: लगाऊ
1: हाँ
0: करत
1: सब लाइन लगा
0: तो धान बढ़िया हो जात है? एकर
1: बढ़िया
0: पहले
1: हो
0: भी
1: जाता।
0: लगावत हो बा?
1: हाँ
0: अरे धान का पहले का ले रहा है में गेहूँ ले रहा है क्या खाली रहा?
1: गेहूँ रहा।
0: गेहूँ रहा
1: हाँ
0: तो गेहूँ बढ़िया हो गया
1: गेहूँ
0: रहा?
1: बढ़िया हो गया रहा,
0: अच्छा, पूरा 10 बीघा?
1: पूरा 10 बीघा।
0: अच्छा, अरे गर्मी वाला जैसे उड़द मूंग ये सब नहीं ले रहा
1: नहीं
0: है?
1: नहीं ले रहे,
0: अच्छा, गोबे नहीं करते लेबे नहीं करते
1: लेबे नहीं कर, गोरू सब चल ले थी।
0: गोरु चल लेते? हाँ ये तो बात बा भाई, तो जब धान ना चरिए गोरु
1: धान कितना चढ़ी,
0: मतलब देखभाल करत होगा ओका?
1: देखभाल करी थोका।
0: अच्छा, तो भैया हो ज्ञान सिंह पटेल भैया आप बतावा 10 बीघा धान आपो लेत बाटे ओकर का तैयारी बा आपको भैया?
2: भैया हम खेत वो तैयार करके एकदम तैयारी हमारा सही है, हमारा जो बिया है वो तैयार हो गया है,
0: मतलब खेत तैयारी में हरी खाद वगैरह का
2: हरी
0: प्रयोग?
2: खाद हम पूरे खेत में जो है जोता करके बढ़िया से उसमें जो है हम सनई बोवाई दिए थे।
0: अच्छा
2: हाँ
0: अच्छा
2: सनई बोवाई को जुतवाऊ दे है
0: तो सड़ावत है
2: आप
0: वो?
2: सड़त या अब यह 4-6 दिन बाद जब एकदम रेडी हो जाए लेवाई तुरंत करवाई के अब बस हमें हम हरी खाद यही सनई जो है और उसको जब इतनी इतनी थी उसी जुतवा दिए हैं,
0: पूरा सड़ जाए तो बढ़िया खाद हो
2: वो
0: जाए।
2: बढ़िया खाद हो जाए तो बढ़िया काम जैविक के काम करत हो। हाँ इतनी बढ़िया खेत खाद के काम करत है कि फिर और खाद डाले के जरूरत ना बा, लेकिन आदमी अब किसान भाई है तो डल ही जे हरी खाद के प्रयोग करत तो खाद कम डालत है,
0: बात
2: आ
0: सही
2: जे
0: कहा।
2: हरी खादे नहीं इस्तेमाल करत आ गोबर के खाद नहीं इस्तेमाल करे तो ओका DAP पोटास
0: हाँ वो सब डलाई के पड़े तो
2: यूरिया की जरूरत पड़े, लेकिन हमका
0: पहला
2: पजन का बहुत जरूरत नहीं पड़त।
0: रासायनिक खाद पे ज्यादा निर्भरता ठीक भी नहीं हो, खेत भी खराब हो तो भाई पैसा भी ज्यादा
2: जी
0: लागत। जरूरत बाग भारी खाद गोबर खाद आजकल देखो केचुआ का खाद भी लोग डालत बाटे
2: हाँ
0: ना
2: वो भी
0: खेती में।
2: बढ़िया अच्छी खाद होती कंपोस्ट खाद।
0: अब आपकी यहाँ सिंचाई का सुविधा भैया?
2: हम भैया स्वयं के जो है ट्यूबवेल लगवाए हैं
0: अपन खुद
2: चार,
0: का भी
2: हाँ 4-3 के बोर है, हम
0: तो
2: अपना भी सींचते हैं
0: अच्छा
2: और
0: दूसरे
2: किसान भाई के भी जो है सिंचाई।

0: करी थी।
1: इसलिए चलिए तो उसे पैसा भी मिल जाता,
0: उसे पैसा मिल जाता जो है,
1: दूसरे को सुविधा भी मिल जाता।
0: जी जी
1: बहुत निक बात भैया। ज्ञान सिंह पटेल भैया और हिंसलाल भैया, आप सब आया है, अपने अपने खेती के अनुभव बांटा है, हमारा और भी किसान भाई सीख ले हैं। आप सबके आवे खातिर, जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दुर्गा भैया, हम कहीं देखा ज्ञान सिंह भाई पटेल और हिंसलाल भी कितनी बढ़िया बात बताएं कि तरह से खेती विसानी करता है अपन, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे खाद पानी की व्यवस्था हो, चार पैसा के मुनाफा भी कमाता है।
3: बिल्कुल, और खासकर नगदी खेती पे ज़्यादा जोर देता।
2: बिल्कुल, तो भाई अपन किसान भाई तरह के अगर अनुभव लेके अगर खेती बाड़ी करी है तो निश्चय रूप से भाई वो भाई मुनाफा कम ही जाऊँ। तो हम कहीं भाई देखा खेती बाड़ी तो ऐसा नाटे कि भाई कहीं प्रकृति कहूँ अनुभव कुछ वैज्ञानिक तौर तरीका अगर रहा है तो भाई एक तो मुनाफा है ही बाटे जौना।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन जरूरी यही बाटे कि जागरूकता जौना है
3: रहा और समय के साथ चले।
2: बिल्कुल,
3: तकनीक जौन भैया आए बाटे या कही साथ कि आप देखा कि पहले और अब में बहुत अंतर आए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: अब आएगा बस तकनीक, और तकनीक के समझब बहुत जरूरी बा। वैज्ञानिक भैया हरे जितना भी चीज जैसन बतावे, कहे से कि भैया देखा अब नई नई प्रजाति आवती है, ठीक बा, क्यों जल्दी पके वाली यहाँ, क्यों ठीक ठीक बा,
2: बिल्कुल
3: ज्यादा उपज दे वाली यहाँ, तो वही हिसाब से जौन वैज्ञानिक तरीका बा वो अपनावे की जरूरत बा।
2: बिल्कुल,
3: और सबसे बड़ी चीज है एक बात आवत है भैया कि हम खेती में आज जौन बदलाव आए बा वो आते फिर हम लौटत है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती।
2: बिल्कुल, काहे नहीं भैया, देखा जरूरत है बात के बाद कि पोषण जो बात आवत है ना कि भाई स्वस्थ पोषण तभी हुए जब हमारे शरीर के खान पान अच्छा हुए, और खान पान कहाँ से सुधरे जब हमारे जो भाई जहाँ से अन्न उपजात बाटे, जब हम वहाँ स्वस्थ करब तब भाई हमारे शरीर के खान पान सही हो जाए।
3: अन्न उपजी, अन्न अच्छा गुणवत्ता वाला तभी हुए जब माटी के भी सेहत ठीक
2: ठीक रहे। बिल्कुल, देखा जब माटी के सेहत की जब यह बात आवत है तो हम तो कई भाई देखा माटी के सेहत के सुधारे के लिए जौना है भाई सरकार भी किस ढंग से प्रयास करत बाटे जौना है भाई। देखा मिट्टी के जांच के लिए भाई तरह तरह के देखा प्रयोगशाला जगह जगह पे हैं, चाहे कृषि रक्षा केंद्र में हो, चाहे भाई जिला मुख्यालय पे हो, और ओके लिए विभाग से आदमी भी बिल्कुल तो अभियान भी चलावेगा कि भाई नमूना ले लेके भाई इकट्ठा कर पूरा खेत बचाओ जो अभियान चला। मूल यही बाटे भैया,
3: मूल यही बाटे, और हर बार हम लोग तो देखा भैया कि विशेषज्ञ भैया अरे आया यही बतावा थी कि भाई देखा खेत खाली बा तो माटी के जांच कराए ले।
2: बिल्कुल,
3: माटी के जांच कराए से सबसे बड़ा फायदा ये बा कि माटी में कौन पोषक तत्व के कमी बा ये पता चल जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: भाई, आज देखा भाई 16-17 जो पोषक तत्व हैं ऐसे तो ही पता चल जाए। अब पता चला नहीं जो नाइट्रोजन की जरूरत बा हम नाइट्रोजन देते, ठीक बा।
2: तो बिल्कुल,
3: और सबसे बड़ी जरूरी ये बात है कि भाई पता चल जाए उही हिसाब से आप संतुलित खाद के प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो संतुलित खाद प्रयोग हुई वही हिसाब से, ऐसा नहीं कि भाई देखा रसायन पूरी तरह मुक्त हो जाए, धीरे धीरे धीरे धीरे हम जैविक खेती की तरफ बढ़वाए।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन उतने उपयोग हुई जितनी जरूरत बात।
2: बिल्कुल, कहा मतलब ही भाई के कहा थे कि भाई दाल में नमक के जैसा, तब वह तरह से जब प्रयोग शुरू हुए तो निश्चय रूप से भाई चाहे खान पान हो पोषण की बात हो यही बात तब सही रहे भैया कि अब देखा कृषि विविधीकरण, कृषि विविधीकरण में के महत्वपूर्ण है कि पशुपालन हम लोग भी अपनावा जाए पूरी तरह से। भाई कहते हैं कि जेके दुआरे चार गोरू बंधा है तो कहते हैं कि भी लंबरदार किसान है भैया ना, तो भाई एक प्रगतिशील किसान के पहचान ये है कि भाई उसके बाग बगीचे बाटे चार ठी गोरू चौवा हैं, तो भाई उसे हरी खाद के भी उत्पादन बाटे और अपन कम खर्चा में अच्छा उत्पादन लेत बा। जोत वही बाटे भैया, जोत उतना ही बाटे, बस तकनीक के इस्तेमाल और तौर तरीका बदलक बाटे उत्पादन बढ़ाक भैया।
3: देखा कहा जात रहा ना भाई खेती बाड़ी, खेती के साथ साथ बाड़ी तो गोरू बछरुआ भी रहा है और सब एक दूसरे से जुड़ा यह भी ना है कि भाई दूध घी माठा तो भाई मिलते ही बाटे, और साथे साथे जौन भाई हम खाद के बात करी थी जौन भाई गोबर के खाद,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो भाई एक अमृता माटी के लिए, ठीक बा। और सबसे बड़ी चीज बा जब गोबर के खाद डाली थी तो उपज जौन आवत है वो बहुत गुणवत्ता वाला रहा था, और दूसरे सबसे चीज हमार लागत कम हो जाती।
2: बिल्कुल,
3: जेकर एकमात्र उद्देश्य बा कि हम अपन कैसे भाई हमार जेब गरुआ है, हम मुनाफा कमाई।
2: बिल्कुल भाई,
3: के लिए जरूरी बा कि लागत कैसे कम हो।

0: भाई देखा प्रधानमंत्री के भी क्या उद्देश्य है कि किसान का आय दुगनी होए। तो भाई दुगनी तभी हो जो तरीका बतावा था, जब
1: हाँ
0: ऑनलाइन पर भाई चल ही सब जने तब भी काम भाई
1: भाई,
0: अच्छा होए।
1: हर चीज एक दूसरे से जुड़ी बा, माटी के जांच बा, फसल चक्र अपनावा, रसायन के कम से कम उपयोग करा, जैविक खेती की तरफ बढ़ा, सिंचाई के नई नई तकनीक आई गई बा, ड्रिप सिंचाई के उपयोग
0: बिल्कुल
1: करा कि भाई बूंद बूंद पानी मिले, पता भरभराए के पानी चला जात बाटे कहूँ और बहत
0: हाँ,
1: बाटे
0: तो
1: तो।
0: भाई फायदा कम नुकसान ज्यादा हुई। दुर्गा भाई एक बात कहब, हम कई देखा अपने कार्यक्रम के जरिए भाई, चाहे प्रगतिशील किसान हों, कृषि वैज्ञानिक भैया हों, भाई किसान के हित के लिहाज से हर एक कार्यक्रम अच्छा बनाने के प्रयास किया जाता है। लेकिन आवश्यकता है बात के बाटे कि अपन किसान भाई भी किस तरह के अपने कार्यक्रम में जानकारी और चाहता है, उन्हों के भी विचार लिया जाए जो ना है।
1: बिल्कुल भाई, अगर सुझाव आई तो हमहू सब जानब कि अपने कार्यक्रम के और कितना बढ़िया बेहतर बनाई सके थी।
0: बिल्कुल, तो भाई एक महत्वपूर्ण नंबर बाटे भाई, 8004-92-6250,
1: ए भैया एक बार फिर से बता दे।
0: 8004-92-6250। तो भाई यह नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए हम तो भाई घरे घरे देखा भाई बड़कवा फोन होइन के बाटे, तो
1: हाँ
0: भाई उसे व्हाट्सएप के जरिए और अपने आकाशवाणी प्रयागराज के जो फेसबुक पेज हो भैया, वहाँ पे जाए के अपन जानकारी साझा कर सकते हैं, किस तरह के सुधार चाहत हैं और का
1: और
0: जानकारी,
1: तनिक
0: और
1: अगर अच्छा लागे तो वह बताई
0: वह
1: सकत
0: बताओ
1: हैं
0: भैया कि किस
1: तो
0: तरह का हम
1: हमहू
0: लोग
1: तनिक,
0: प्रोग्राम
1: हमहू सब तनिक उत्साहित
0: उत्साहवर्धन हुए।
1: रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कहे भाई देखा बात बत कही हो तब कार्यक्रम किनारे लग गया तो पता रही लागे जो ना है, अब किसान भाई से लेकर बहुत बड़े समय विदा जो ना है, तब पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। जिस प्रकार सभी नदियों का गंतव्य एक है, उसी तरह विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता है। आइए सांप्रदायिक एकता का प्रण लें।

हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात 10:30 से आप सुनेंगे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2026 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

गजलों का प्रोग्राम कहकशा सुनना न भूलिएगा रात 9:30 पर, और 10 बजे और 8 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का।

आपकी सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर हर सुबह हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 6:45 पर। कल आपको सुनाएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार।

आपकी सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर हर सुबह हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 6:45 पर। कल आपको सुनाएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा और रोजगार

0: देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं। पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
2: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी राम जी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बनेगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
3: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोअर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
4: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा

0: कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गाँव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
4: मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं काव्य कौमुदी और इसके अंतर्गत हम आपको सुनाते हैं कविता पाठ। तो आइए सुनते हैं अभिषेक केसरवानी से उनका कविता पाठ।
5: मैं पड़ा रहा हूँ मैं छूकर मुक्त दूषण कीजिए। मैं पड़ा रहा हूँ मैं छूकर मुक्त दूषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण, राम जी रघु कुल के भूषण, देह भूषण कीजिए। मैं पड़ा रहा हूँ मैं छूकर मुक्त दूषण कीजिए। तुम

रस छू के मुझको स्वर्ण भूषण कीजिए, आप पारस छू के मुझको स्वर्ण भूषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण देह भूषण कीजिए, मैं पड़ा रहूं मैं छूकर मुक्त दूषण कीजिए। राम से रमणी अयोध्या राम सुंदर नाम है, राम से रमणी अयोध्या राम सुंदर नाम है। हाँ हूँ मैं लंकेश पर मुझ को विभीषण कीजिए, हाँ हूँ मैं लंकेश पर मुझ को विभीषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण देह भूषण कीजिए, मैं पड़ा राम।

में छूकर मुक्त दूषण कीजिए। सृष्टि के अभिनय पटल पर कर्म कर करता बना, सृष्टि के अभिनय पटल पर कर्म कर करता बना, पर क्रिया उलझा रही मुझ को विशेषण कीजिए, पर क्रिया उलझा रही मुझ को विशेषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण देह भूषण कीजिए, मैं पड़ा राहों में छूकर मुक्त दूषण कीजिए। सूर्य की शोभा तुम्हारी

कर जग राम रटते, दिव्य पोषण कीजिए। छोड़ कर जग राम रटते, दिव्य पोषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण, देह भूषण कीजिए। मैं पड़ा रहूं मैं छू कर, मुक्त दूषण कीजिए। मिथ्या जग भारी तिमिर में, माया चहु दिग से तो तुम। मिथ्या जग भारी तिमिर में, माया चहु दिग से तो तुम। नाथ मेरे शोक वन में, प्रीत प्रेषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण, देह भूषण कीजिए। मैं पड़ा रहूं मैं छू कर, मुक्त दूषण कीजिए। मिथ्या जग भारी तिमिर में, माया चहु दिग से तो तुम। मिथ्या जग भारी तिमिर में, माया चहु दिग से तो तुम। नाथ मेरे शोक वन में, प्रीत प्रेषण कीजिए। नाथ मेरे शोक वन में, प्रीत प्रेषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण, देह भूषण कीजिए। मैं पड़ा रहूं मैं छू कर, मुक्त दूषण कीजिए। चक्षु चिंतन चेतनाए, चारु जुग चारो चरण। चक्षु चिंतन चेतनाए, चारु जुग चारो चरण। भाव रस डूबे रहे प्रभु, नाथ पोषण कीजिए। भाव रस डूबे रहे प्रभु, नाथ पोषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण, देह भूषण कीजिए। मैं पड़ा रहूं मैं छू कर, मुक्त दूषण कीजिए। कुल की मर्यादा रही जो, सर्व उत्तम तुम रहे। कुल की

उत्तम प्रकृति से संश्लेषण कीजिए, कर कृपा उत्तम प्रकृति से संश्लेषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण, देह भूषण कीजिए। मैं पड़ा राहों में छूकर, मुक्त दूषण कीजिए। अंतिम पंक्तियां एक निवेदन के साथ। चाहे मैं सोना बनूं, पत्थर करवी टुकड़ा सही, चाहे मैं

0: शोभवन पाऊं हृदय की पद्म भूषण कीजिए। राम जी रघु कुल के भूषण देह भूषण कीजिए। मैं पड़ा रहूं मैं छूकर मुक्त दूषण कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ, कवि थे अभिषेक केसरवानी, और अब आपको सुनवा रहे हैं प्रीता बाजपेयी से उनका काव्य पाठ।
2: जैसा कि सभी के संज्ञान में है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं कुछ मुक्तकों से अपनी काव्य यात्रा शुरू करती हूँ।

जाना है। मित्रों, मैं एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ जिसका संदर्भ आपको बताना चाहूंगी। इसमें एक महिला है जिसका बचपन तो महानगरी में बीता है, लेकिन विवाह के बाद वो शहर आ गई है, महानगरी में रहती है, और फिर उसका गांव जाना नहीं हुआ। वो अपने बचपन में बिताए हुए ग्रामीण जीवन की तुलना आज के इस भाग दौड़ के जीवन से करती है। आप गीत का मुखड़ा सुने। मनवा शहर में अब ना लागे मुकुल चल रे सांवरिया, मनवा शहर में अब ना लागे मुकुल चल रे सांवरिया,

पे सांवरिया और बंद देखें। याद आ रही पीपल बरगद की वो छैया न्यारी, याद आ रही पीपल बरगद की वो छैया न्यारी,

सांवरिया। और देखिए वो क्या क्या याद करती है, यहाँ सवेरे से पानी की बूंद बूंद को तरसें, यहाँ सवेरे से पानी की बूंद बूंद को तरसें।

आप सुन रहे थे प्रीता वाजपेयी से उनका काव्य पाठ। इसके साथ ही काव्य कौमुदी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अनिल कुमार। आइए इनके स्वर में पहले सुनते हैं ये भक्ति रचना।

आप सुन रहे थे मीराबाई की भक्ति रचना अनिल कुमार के स्वर में, और अब आपको सुनवा रहे हैं कबीर दास की भक्ति रचना अनिल कुमार के स्वर में।

आप सुन रहे थे अनिल कुमार के स्वर में भजन। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ शिप्रा श्रीवास्तव।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साथिया फिल्म से, गुलजार की रचना है, सोनू निगम की आवाज़। श्रोताओं, ये सॉन्ग जो है विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया है, दोनों लीड एक्टर्स हैं। और सिचुएशन की बात अगर करें इस गाने की, तो इस गाने में बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है इस फिल्म की, आदित्य और सुहानी की। जी हाँ, कैरेक्टर्स हैं, विवेक ओबेरॉय ने आदित्य का रोल अदा किया है और रानी मुखर्जी ने सुहानी का। तो शादी के बाद जब आदित्य और सुहानी का एक नया रोमांटिक शुरू होता है, तो ये सॉन्ग आता है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो जाते हैं कि जो गाने में दिखाया गया है, ये रानी मुखर्जी की खूबसूरती और उसको नेचर से कंपैरिजन की बात की गई है। गाने में दिखाया गया है कि कैसे छोटी छोटी सी बातें, हंसी मजाक और मध्यम मध्यम सी हंसी उनका प्यार और गहरा कर देती है। और जो इस गाने के दृश्य हैं बड़े ही रोमांटिक, बड़े ही खूबसूरत से हैं। और बारिश, भाग, पीली धूप, फूल और मुंबई की गलियाँ, ये सब दोनों रोमांस को बहुत ही मजबूत करती हैं और बहुत ही प्यारी सी ये गीत है और इसका पिक्चराइजेशन। आइए सुनते हैं।

रोमांस का रंग प्रेम के संग भी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा नगमा रोमांटिक सॉन्ग फिल्म साथिया से। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो आपको सुनाएगा एक सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, अगर लाइफ में सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है तो कैसा मुकाम आता है। सुनवा रहे हैं आपको मन को अतिभावी गीत लंदन ड्रीम्स से। शंकर भाधीवन की आवाज़ है, प्रसून जोशी की बोल। बहुत ही खूबसूरत बोल गीत लिखते हैं प्रसून जोशी जी। और इस फिल्म में सलमान खान और अजय देवगन बचपन के दोस्त हैं। दोनों का सपना है लंदन में बड़ा रॉक स्टार बनना। और ये गाना जो है ना, इसकी सिचुएशन आपको बता दें अगर, तो जब मनु और अर्जुन का बॉन्ड लंदन ड्रीम्स फाइनली हिट हो जाता है तो लंदन में उनके कॉन्सर्ट हाउस फुल जाने लगते हैं, तब ये गाना आता है। उनकी सक्सेस, फेम और रॉकस्टार लाइफ को सेलिब्रेट करता है ये गाना। स्टेज पर परफॉर्मेंस चेयरिंग क्राउड, लंदन की सड़कें, बैक स्टेज मस्ती और दोस्ती वाली बॉन्डिंग। मन्नू है लीड सिंगर और अर्जुन है गिटार पर। दोनों का ड्रीम पूरा होने की खुशी सॉन्ग में बिल्कुल साफ दिखाई देती है।

कहते हैं सफलता का जन्म निष्ठुरता के गर्भ से होता है, और ये सफलता जब मिलती है तो आदमी भाव विभोर हो जाता है, नाचता है, गाता है, झूमता है। तो इसी की कहानी थी ये जो गीत आपने सुना इसमें। और अब जिस गाने से आपको जोड़ रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म कल हो ना हो से, शंकर महादेवन, सोनू निगम, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने। जैसा कि आप जानते हैं जावेद अख्तर की कलम भी बहुत ही सशक्त है। शंकर एहसान लॉय ने इसका संगीत तैयार किया था। ये गाना शादी का सीक्वेंस है। रोहित यानी सैफ अली खान और नैना यानी प्रीति जिंटा की शादी। अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो अमन यानी शाहरुख खान को नैना से प्यार हो जाता है, पर वो दिल का पेशेंट है, इसलिए वो चाहता है कि नैना और रोहित एक हो जाएं। पूरा गाना शादी की मस्ती, दर्द और कुर्बानी के परफेक्ट मिक्स को दिखाता है। और कहते हैं कि प्यार में अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर ना मिले तो इसके लिए कुर्बानी ही सच्चा प्यार है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यही सच्चा प्यार है। जब गीत स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो संगीत सेरेमनी दिखाई जाती है, लड़कियां नाच रही हैं, नैना दुल्हन बनी है, और मिडिल सॉन्ग में अमन शादी के हर रस्म में नैना के साथ रहता है। मेहंदी, हल्दी और उसके चेहरे पर हंसी और आँखों में अजब सा दर्द है। और जब विदाई वाला सीन आता है तो सबसे इमोशनल पार्ट बन जाता है, जब अमन दूर से देखता है, रोता है, पर हंसकर विदा करता है।

श्रोताओं, गाने में ध्यान दीजिएगा कि इसमें 5 सिंगर्स हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर का इमोशन अलग अलग है। सोनू ने रोहित का प्यार दिखाया है, तो शंकर ने अमन का दर्द और साता ने नैना की खुशी और उदासी।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। कुछ और गानों और बातों के साथ हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में। इस छोटे से संदेश की बात।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जिसमें 200

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। कुछ और गानों और बातों के साथ हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में इस छोटे से संदेश की बात।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। और अब हम आपको दिखा रहे हैं नजारे समुद्र के किनारे के। शाम का समय, हवा में उड़ता जूही का साड़ी का पल्ला और ऋषि का दीवाना अंदाज। पूरे 90s वाला रोमांटिक अंदाज, स्लो मोशन क्लोजअप्स और समुंदर की लहरें।

गीत रहित इंदौरी की कलम से अनुमलक का संगीत, यानी बिल्कुल एकदम फास्ट बीट वाली म्यूजिक। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ऋषि कपूर और जूही चावला हस्बैंड वाइफ हैं, पर जूही को अपने पति अरबाज खान से बहुत डर लगता है क्योंकि वो है अब्यूसिव। ऋषि कपूर जो एक डॉक्टर है, जूही को उस टॉक्सिक शादी से निकालने में हेल्प करता है और इसी फ्रेम में दोनों में हो जाता है धीरे धीरे प्यार। जब जूही और ऋषि को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तब ये गाना आता है, उनके पहले इजहार मोहब्बत का मोमेंट है ये सॉन्ग।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। ये गाना इस फिल्म की जान है। इसके दो वर्जन हैं और दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि सुरेंद्र साहनी एक सीधा साधा बोरिंग सरकारी बाबू है। उसने तानी से शादी की है पर तानी उसे प्यार नहीं करती। सुरेंद्र अपना लुक बदल लेता है और राज बन जाता है और डांस क्लास वाला कूल बंदा ताकि तानी उससे प्यार करने लगे। जब राज रूप में सुरेंद्र तानी के साथ डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तब तानी को पहली बार उसमें राज अपना रब नज़र आता है। वो समझ जाती है कि राज उसका सोलमेट है पर असल में वो सुरेंद्र है। गोल्डन आवर, गोल्डन टेंपल, अमृतसर का बैकग्राउंड है। तानी डांस करते करते शाहरुख खान को देखती है और उसकी आंखों में जब रब दिखता है तो ये प्यारा मोमेंट इतना खूबसूरत सा सॉन्ग बना देता है।

ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि एहसास है। जब कोई तुम्हें इतना खूबसूरत लगने लगे कि उसमें रब दिखे, तो वही सच्चा प्यार है। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। शुरुआत कर रहे हैं अनुपमा देश पांडे के स्वर में इस भक्ति रचना से।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं कतील शिफाही की गजल तलत अजीज की आवाज में। ये गीत है, आइए सुनते हैं।

इसके साथ ही सबरस कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग

0: सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल

0: जुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का

0: Stadium in Inglewood tonight. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. Earlier, Belgium advanced to the round of 16, beating Senegal 3-2 this morning. Co-hosts US also progressed to the round of 16, beating Bosnia and Herzegovina 2-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगे। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपने हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नक्लो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज़, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ़ुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज़ पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आज़ाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे ज़खीरे का ऐलान करने और ताउन को फ़रोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज़, अद्विया

0: शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों मुमालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज़ और इक्तिसादी तहफ्फुज़ समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हम मनसब सनाए तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतेहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दो चार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की सेहत की

0: निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैनुल अक्वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ एआई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहर जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाबता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अलग सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुँचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर स्वराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से स्वराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नक्लो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम

सामीन को शिप्रा श्रीवास्तव का आदाब। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी, जो बेटी की नजरों में थी इज्जत मांगी। नशे में जो चेहरा खो दिया था मैंने, आज वही चेहरा वही सूरत मांगी। कहता है आईना तू बाप है या साया, बेटी की हंसी में तेरा घर बसा था या माया। जाम ने छीन ली वो मुस्कान उसकी, अब आईने से भी नजरें चुराता है साया। डैडी कहकर उसने थामा था हाथ मेरा, डैडी कहकर थामा था उसने हाथ मेरा। मैं बहक गया तो दिया विश्वास उसका। आईना मुझसे हिसाब मांगता है अब, आईना मुझसे हिसाब मांगता है अब। काश लौटा दूं मैं वो पहली सी सूरत उसका।

ये गज़ल आपने सुनी फिल्म डैडी से, तलत अजीज़ और साथियों की आवाज़ से, सूरज सनीम के बोल और राजेश रोशन की मौसिकी। अगली गज़ल पेश है फिल्म गमन फिल्म से, गुलकार छाया गांगुली, मतलब कुछ इस तरह, काली पीली टैक्सी, बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर, स्ट्रीट लाइट का पीला उजाला और ड्राइवर की नम आँखें। शहर बड़ा है पर वो बिल्कुल अकेला, ये गज़ल उसकी तहनाई का, तन्हाई का हम सफ़र है। मुंबई की सड़कें सो गई हैं अब, मेरी टैक्सी के पहिए जागते हैं रात भर। रेडियो पर कोई गज़ल बजती है धीमी सी और आपकी याद आ रही ही है रात भर। गांव की मिट्टी की वो सूंधी खुशबू, आपके हाथों की मेहंदी का रंग, चूल्हे पर चाय की वो सरगम, नींद से ज़्यादा हसीन था वो ढंग। यहाँ बिल्डिंगों के जंगल में आपके घूंघट सा कोई साया नहीं, मीटर डाउन है पर दिल की धड़कनें आपके नाम पर चलती रहीं रात भर। सवारियां उतरती चढ़ती रहीं, मैं हर चेहरे में आपको ढूंढता रहा, शहर के शोर में भी सन्नाटा था, बस आपकी चूड़ियों की खनक सुनता रहा। सुबह होने को है, घर दूर नहीं, पर दिल के फासले सौ सौ कोस के हैं। काश कोई कहते

सोचो, रात का सन्नाटा है, तुम बालकनी में खड़े हो, ठंडी हवा चल रही है और अचानक किसी की याद आ जाती है। पहली नज़र, पहली मुस्कान, पहला नमस्ते। दिल में एक लहर सी उठती है, ना चीख ना शोर, एक मीठा सा दर्द, वही एहसास। ये अगली गज़ल। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, जैसे चांद ने दरिया को छुआ हो अभी। नाम लब पर आया नहीं तेरा, पर सांस ने तेरा जिक्र किया हो अभी। आंखों ने चुपके से कह दिया हाल दिल, आंखों ने चुपके से कह दिया हाल दिल, लफ्ज तो होठों तक आए ही नहीं। तुम जो मुस्कुराया एक पल को, तू जो मुस्कुराया एक पल को, जिंदगी ने गजल सी सुनाई अभी। ये कैसी कसक है, ये कैसा सुकून, दर्द में भी एक मिठास सी घुली है अभी। गुलाम अली की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गज़ल।

गजलों का प्रोग्राम कहकशा आप सुन रहे हैं शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। पुरानी हवेलियां, उदास शाम, पालकी उठाने वाले और एक शायर की बेबसी, भूपिंदर सिंह की दर्द भरी आवाज में जो कशिश है वो लफ्जों पर हूबहू है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, वो चौखट, वो दीवार, वो बरसात याद आएगी। हमने तो चुप रहकर मोहब्बत की थी, हमारी वो खामोशी भी तुझको याद आएगी। पालकी उठाने की शहर सूना हो जाएगा, पालकी उठते ही शहर सूना हो जाएगा, महफिल में शायर का अफसाना हो जाएगा। तू चली जाएगी पर जाते जाते एक अधूरी गजल सा बहाना हो जाएगा। न शिकवा किया न शिकायत की हमने, बस तेरे नाम से दोस्ती कर ली हमने। करोगे याद तो बाजार की वो शाम और एक मोहब्बत याद आएगी।

गज़लों की महफिल अब यहीं तक, दीजिए इजाज़त कहकशां प्रोग्राम से शिप्रा श्रीवास्तव को आदाब। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में, कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं कन्यादान फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज की रचना से, संगीत शंकर जयकिशन का।

अगली पेशकश है गजनी फिल्म से जावेद अली और सोनू निगम की आवाजों में प्रसून जोशी की रचना, ए आर रहमान का संगीत है।

काला पत्थर। इस फिल्म से आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में दो गीत। संगीत राजेश रोशन का था और गीत साहिल लुधियानवी का। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है एक विलन फिल्म से। मोहम्मद इरफान की आवाज़ है, मिथुन का संगीत, उन्हीं का गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा गीत। संगीत है राजेश रोशन का।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: as well. So, yeah, we're in a good spot and hopefully we can perform out there today.
1: Go well this evening.
0: Thank you.
1: So the news from the toss, South Africa have won it. They're having a ball.
2: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. नाउ द थिंग दैट नासिर हुसैन वॉज कॉन्स्टेंटली अल्यूडिंग टू एट टॉस ख्याति वॉज ई 2023 एंड 2025 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 20 ओवर्स एंड 50 ओवर्स एडिशंस व्हेन इंग्लैंड वर नॉक्ड आउट बाय साउथ अफ्रीका इन दिस वेरी स्टेज.
3: इज डेफिनेटली दे आर नोन टू अपसेटिंग एनी टूर्नामेंट एनी टीम and their form is yet to come in. I mean, especially if you talk about Wolwart, she's yet to give her best. I guess, I mean, they can do anything and any team can do anything in T20 cricket. But yes, having said that, this England team, English team, it looks very balanced at the moment. And they're giving their best. Their batters are contributing really well. Their bowlers are contributing really well. They look to be a very balanced side. So let's see who plays well today.
4: जी, और कंसिस्टेंसी जो है वो इंग्लैंड की इस पूरे टूर्नामेंट में एक मजबूत पक्ष उसका रहा है. और ऐसे में जिशान, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला कितना कांटे का, कितना नज़दीकी हो सकता है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा था.
5: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छा मैच होएगा. और ख़ासकर हमारे रमन साहब ने साफ साफ कहा है इस बात को, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था. तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि ये अच्छा मैच होने वाला है. ख़ासकर जहाँ तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो प्रीवियस और जो पास्ट चीज़ें रही हैं उनके आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए. फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, ख़ासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं. एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका पेस बॉलर्स की खासकर. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. अच्छे बैट्समैन, जो बैट्सवुमेन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो ख़ासकर जो पेस बॉलर्स पेस बॉलिंग जो कर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम की, तो मुझे वो एक जो एक वॉर जो नज़र आना है, वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
2: सो बैटल विद इन द वॉर टू लुक अहेड टू. नाउ राजा, वी सीन विद इंग्लैंड द वे दे आर फंक्शनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. चार्ली डीन वॉज कैप्टनिंग इन द गेम्स इन बिटवीन व्हेन सिव अब्रंट वॉज इंजर्ड. एवरी individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
6: I think that's the hallmark of a good team, Mega. And any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get a first ball, I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa. And everything that is past, you know, you've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20-over format and the 50-over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side. I think England will have the edge in this game.
4: Khyati, home condition aur gharelu support bhi hoga England ke paksh mein, to ye unke liye positive ho sakta hai ya unke upar pressure aa sakta hai iski wajah se?
3: Abhi tak to jaisa dekhne ko mil raha hai is tournament mein, unko support hi mil raha hai and they are very well aware of the conditions, and jis tarike se wo khel rahe hain unko pata hai ki kis tarike se hame kab hame gear second gear lagana hai, kaise kab defensive hona hai. So I think they are getting good support from the crowd as well, and as well as they're well aware of about the conditions.
2: जीशान, खास करके टॉप ऑर्डर ने काफ़ी अतिशी बल्लेबाजी की है अब तक. टॉप थ्री का जो स्कोरिंग रेट रहा है 8.8 का अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक.
5: हाँ बिल्कुल, देखें उनके पास में जो जो उनके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें, तो हॉज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप के सीरीज़ में, तो एक वो ज़रूर से नजर

0: बताना होएगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करती हैं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है। जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं, और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है। उनके पास ज़रूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। मोरल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ासकर जो वुमेंस क्रिकेट के टीम होती है उसको एक बहुत ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की। वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग करनी है उन्हें। शुरू के 6 ओवर के जो मैचेस होंगे, उस 6 ओवर के मैचेस में उनको ज़रूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर। अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फ़ायदेमंद होएगा।
1: और आज बैटिंग ही तो रही है इंग्लैंड की, जिसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप के 5ों मैच जीतने में सफल रही है। दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मिला जुला प्रदर्शन रहा है, किसी में किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया, किसी और मैच में किसी और खिलाड़ी ने बढ़िया किया, तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने भी जीते। मनोवैज्ञानिक रूप से इस मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर स्थिति में होगी?
2: इंग्लैंड होगी, क्योंकि ओवरऑल कमांडिंग परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड के ज़्यादा बेहतर रहे। अगर आप पिछले मैच भी देखें जो बांग्लादेश के साथ था, साउथ अफ्रीका का, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं लग रहा था कि आसानी से जीत लेंगे वो मैच, लड़खड़ा गई थी टीम, और वहाँ से उठ के आना, जीतना अच्छी बात है, बट आई थिंक इंग्लैंड के पास है जो वॉट एवर एज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज विथ इंग्लैंड, और ख़ास करके क्योंकि इस पिच पे आज मैच हो चुका है ऑलरेडी, और जब आप और क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज विल कम इन टू प्ले एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली गिवन देम दैट चांस। अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए हर चीज़ सही बैठ रहा है और आज वो मैच इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है।
3: One of the players contributing to that edge is Dani Vyad-Todge, and we've seen in her case took a paternity break, and in fact didn't play a whole lot of games in the build-up. The games that she played, she struggled, but brought her A game to the World Cup.
4: Kathy. Yeah, I mean, she's a very good batter and she always give a very good start to the team, and she has given, she has proved in this tournament as well. But if you see that there are other batters also, because she knows that we have deep batting lineup, so that is the reason she is able to give those starts to the team. And if you lay a good foundation, definitely, they can find a very good score in this match.
1: जिशान, इतिहास का किसी मैच में कितना बड़ा योगदान रहता है? क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसमें भी साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, तो वो क्या साइकोलॉजिकल एज होगा उनके पास इस मैच में? इंग्लैंड की टीम प्रेशर में होगी?
0: ज़रूर, थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि हम 2020 और 50 दोनों में साउथ अफ्रीका से अगर हारे हुए हैं तो ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, आजकल जो क्रिकेट जो हो गया, इतना प्रोफेशनल हो गया है और इतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं जो भी क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो खासकर होते हैं, उनको वो पीछे की सारी चीज़ें जो है ना, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। आजकल जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो सपोर्ट स्टाफ इस तरह से उनको तैयार करता है ग्राउंड में जाने के पहले कि उनको वो पुरानी सारी चीज़ें, वो अपनी फैमिली और वो सारी चीज़ों को भूल करके ग्राउंड के अंदर में जाते हैं, तो वो जो मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि वो एक प्रेशर थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे ख़ासकर अभी जो इनके परफॉर्मेंस मैं देखता चला आ रहा हूँ इंग्लैंड की टीम का, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पुरानी जो बातें हैं, वो चीज़ें कहीं थोड़ी होंगी 1-2%, लेकिन उन चीज़ों का कोई असर यहाँ नहीं होएगा। और इंग्लैंड नो डाउट, मुझे जहाँ तक यकीन है कि इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस आज करेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन पहले से कर देना इस मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकता कभी भी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये समझता हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक मैच होते हैं T20 के, और आखिरी वक्त में आखिरी बॉल पे भी कुछ डिसीजन बदल जाते हैं। जहाँ तक इस मैच की बात है, साउथ अफ्रीका और उनकी बात अगर आपस में करें आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के

0: सपोर्ट में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ग्राउंड उनका है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उनके हैं, उनकी फैमिली के लोग होंगे आसपास में, उनके फ्रेंड्स होंगे सारे, तो वो जो एक सपोर्ट होता है बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और परफॉर्मेंस भी जो उनका है वो परफॉर्मेंस ये शो कर रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो है आज के दिन में बेहतर नज़र आ रही है बनिस्बत के साउथ अफ्रीका के। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट आखिरी बॉल तक, और वो भी T20 है तो वो आखिरी बॉल तक होता है, तो हमें वो इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन बेहतर तरीके से इस मैच को लेकर के जाता है।
1: और श्रोता किस टीम के समर्थन में है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। रिमाइंड यू, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आर नंबर 011-2342-1084 and 85। लेट्स लिसन इन टू द फर्स्ट कॉलर। नमस्कार। जी रवि, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए और आपकी टिप्पणी के लिए। वेल आवर लिसनर देयर सर्टेनली नॉट प्लेइंग इट सेफ, नॉट प्लेइंग इट विद अ स्ट्रेट बैट, इज एम्फेटिकली डिक्लेयर दैट साउथ अफ्रीका विल विन इट कर्टसी आया बोंगा खाका। एंड वेल साउथ अफ्रीका डू हैव अ ग्रेट बोलिंग अटैक, पर्टिकुलरली द पेस अटैक, 25 विकेट्स दैट द पेसर्स हैव पिक्ड अप इज द हाईएस्ट थस फार इन द टूर्नामेंट राजा।
2: But you have to look at the teams that they played. I think apart from India, the kind of competition that they would have gotten, picking up wickets against Bangladesh, I'm not watering down their efforts, but all that doesn't matter because you're up against a superior team. You're up against the home team now. Whatever you've done in the past has brought you here, but you've got to perform at your best now, Megha. And that can happen only when they bowl on the spot today and keep the English batters quiet, earn some wickets early on with the new ball, and that is when all the effort that they've put in so far in the tournament will bear fruit. They'll have to